चली है, दिल की हालत संभल चली है, अब जुनून हद से बढ़ चला है, अब तबीयत बेहाल चली है।

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: तो बजे हैं। संध्या संक्षिप्त समाचार आपसे गीता, नमस्कार आपको।
1: नमस्कार नीतू शाह, सभी को हमारा नमस्कार। 2 साल बाद अब 30 से ज्यादा अफ्रीकी देशों के राष्ट्र अध्यक्ष और सरकार प्रमुख इस सोमवार से केन्या की राजधानी नैरोबी में आयोजित होने वाले अफ्रीका फॉरवर्ड समिट 2026 में एकत्र होंगे। प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम भी इसमें शामिल होंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री विशेष रूप से 12 मई के कार्यक्रम में भाग लेंगे, जब सभी नेता विभिन्न गोलमेज बैठकों में हिस्सा लेंगे। दवाओं के भंडारण पर पब्लिक अकाउंट कमिटी PAC की विशेष रिपोर्ट ने संसदीय समिति के भीतर तनाव पैदा कर दिया है। राष्ट्रसभा के स्पीकर को भेजे गए एक पत्र में PAC के 5 सदस्यों ने समिति के अध्यक्ष अदगियन जुवाल पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपनी सार्वजनिक टिप्पणियों में रिपोर्ट का राजनीतिक उपयोग किया है, जबकि उन्होंने दस्तावेज के निष्कर्षों और सिफारिशों के प्रति अपना समर्थन भी दोहराया है। आने वाले 13 से 15 मई तक आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड मॉरिशस विश्वविद्यालय में इंडेंचर्ड लेबर रूट पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। ये चौथा संस्करण विभिन्न देशों से आए शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों को एक मंच पर एकत्र करेगा। और विदेशक खबरों में हंटा वायरस से प्रभावित क्रूज जहाज से रविवार को यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के समूह उतरे और उन्हें उनके संबंधित देशों में वापस भेजा गया। ये प्रक्रिया वैश्विक स्वास्थ्य अधिकारियों की देखरेख में चल रही है और आज भी जारी रहने की उम्मीद है। और अब मौसम संबंधी जानकारियाँ। बादलों के झुंड मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। आज सुबह और दोपहर बाद को पूर्व दक्षिण और ऊंचे इलाकों पर बादल घिरे रहेंगे और बारिश होगी। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 23 से 25 और साहेली इलाकों पर 28 से 30, न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 18 से 20 और साहेली इलाकों पर 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज रात बादल घिरे रहेंगे, ऊंचे इलाकों पर हल्की बारिश होगी। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से करीब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। लगुनों के परे समुद्र खराब रहेगा, दक्षिण में 2.5 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय 6:29 पर और शाम 5:43 पर सूरज ढल जाएगा। ये थी अब तक की खबरें। पूरा समाचार बुलेटिन आप सुबह 6:30 सुन सकेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार और शुभ दिन।
2: Your news on NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv. Right.
3: 819 kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: भोर की बेला ताजगी भरी शुरुआत। भोर की बेला ताजगी भरी शुरुआत।
1: सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। सुबह सवेरे के 6:04 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। आप हमारे साथ

0: चारिणी सभा की तरफ से और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे आचार्य खेड़ी जी। तो चलिए जागृति आपके लिए,
1: आइए सुनिए मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जागृति।
2: ओम इदं विष्णु विचक्रमे त्रिधा निदधे पदं समूढमस्य पांसुडे। ओम शांति शांति शांति। जागृति कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मेरा सप्रेम नमस्ते। आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम अथर्वेदीय सामनस्य सूक्त का सार प्रस्तुत करेंगे। यह सूक्त अथर्वेद के तृतीय कांड का 30वां सूक्त है। इस सूक्त में कुल 7 मंत्र हैं। मंत्र के ऋषि अथर्वा हैं एवं देवता चंद्रमा सामनस्य प्रजापति हैं। इस सूक्त के माध्यम से परमात्मा पारिवारिक एवं सामाजिक एकता का उपदेश देते हैं तथा पारिवारिक मूल्यों पर प्रकाश डाला गया है। संगठन व एकता से ही घर एवं समाज उन्नत होता है। एकता शक्ति का प्रतीक होता है। इस सूक्त के अंतर्गत संगठन की शक्ति बढ़ाने के उपाय का वर्णन किया गया है। यह एकता की भावना सर्वप्रथम मनुष्य मात्र के अंतःकरण में उत्पन्न होता है। एकता की भावना मात्र दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए। इसलिए सूक्त के प्रथम मंत्र में ही कहा गया सहृदयम सामनस्यम, अर्थात हमारा हृदय प्रेम से पूर्ण हो, हम सभी प्राणियों के प्रति प्रेम भावना रखें तथा हमारा मन पवित्र विचारों से युक्त हो। यदि हृदय में किसी के प्रति नकारात्मक विचार हो तो एकता संभव नहीं है। अतः मंत्र आदेश दे रहा है अविद्वेषाम, निर्वैरता द्वेष भाव से हम दूर रहें। अतः आंतरिक सुधार अति आवश्यक है। हम मन से हृदय से द्वेष भाव का त्याग करते हुए एक दूसरे से प्रीति करें। यहाँ वेद मंत्र में गाय से उपमा ली गई है। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े से स्नेह करती हैं, उसी प्रकार हम परस्पर प्रेम का भाव प्रकट करें। गाय के लिए अग्न्या शब्द का प्रयोग हुआ है। न मारने योग्य होने से गाय को अग्न्या कहा गया है। अर्थात यहाँ वेद हमें अहिंसा का उपदेश दे रहा है। हिंसा से घर एवं समाज बिखर जाता है, परंतु अहिंसा से जुड़े रहते हैं। इस वैदिक सूक्त में पहले पारिवारिक सामनस्य का उपदेश दिया गया है। एक घर में व एक परिवार में हमें किस प्रकार एक दूसरे से व्यवहार करने चाहिए, तो वेद कहता है अनुव्रता पितु पुत्रो, पुत्र अथवा संतान अपने पिता के अनुकूल कर्म करने वाला हो। पुत्र वही हैं जो कुल को पवित्र करें, जो दुख से परिवार की रक्षा करें। वेद संतानों के लिए यह कह रहा है कि वे अपने धार्मिक पिता के अनुयायी बने, सत्कर्मों के करने वाले बने तथा मात्रा भवतु सम्मना, माता के प्रति शुभ विचारों से परिपूर्ण मन वाला हो। धार्मिक पिता तब गौरवान होता है जब उसका संतान उसके अनुसार धर्म के मार्ग पर चले तथा वे हमेशा अपने माता के प्रति मन से सम्मान दें। गलत मार्ग पर चलने वाला संतान महापापी होता है। माता पिता को दुख देने वाला कभी भी पुत्र नहीं कहलाता है। पुत्र तो अपने माता पिता को नरक व दुख से रक्षा करने वाला है। घर में पति पत्नी का व्यवहार कैसा हो तो सूक्त में आया जायापत्ये मधुमतिम वाचम वदतु शांतिवान। पत्नी पति से माधुर्यपूर्ण वाणी का प्रयोग करें जो शांतिदायक हो। पति पत्नी कभी आपस में झगड़ा न करें, क्योंकि जिस घर में पति पत्नी

0: के बीच में झगड़ा होता हो वहाँ श्री का वास नहीं हो पाता है। अतः वेद का यह कथन है कि दंपति हमेशा घर में मीठी वाणी का प्रयोग करें, कभी भी कटु शब्द का प्रयोग न करें, क्योंकि जिस प्रकार की भाषा पति पत्नी प्रयोग करते हैं उसका प्रभाव उनके बच्चों पर पड़ता है। अतः घर के बड़ों को चाहिए कि शांति एवं मिठास से युक्त वाणी का प्रयोग करें। माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षन माँ स्वसा श्मतुहु स्वसा समंजतः सव्रक्तः भूत्वा वाचम वदतु भद्रया। परिवार में भाई और बहनों के बीच में भी एकता हो, वे एक दूसरे से कभी द्वेष न करें। वैदिक विचारधारा में परिवार वही है जहां हमेशा स्नेह एवं आपसी एकता हो। भाई भाई व बहन बहन अथवा भाई बहन के बीच में कभी मन मुटाव न हो, वे हमेशा एक मत एवं एक कर्म करने वाले हो। परस्पर वे हमेशा कल्याण करने वाली वाणी बोलें। वाणी ही मित्र एवं शत्रु बनाता है, इसलिए वेद आदेश दे रहा है कि भाई बहन आपस में भद्र भाषा का प्रयोग करें, तभी घर में शांति बनी रहती है और सभी प्रकार के दुखों से घर की रक्षा होती है। पारिवारिक शांति के लिए यह भी आवश्यक है कि घर में वैदिक विचारधारा वाले विद्वान का आगमन हो। वे देवतुल्य विद्वान जब घर पर आते हैं तब वे एकता का उपदेश एवं प्रेम का संदेश सुनाते हैं। विद्वान पुरुष कभी भी परिवार में फूट नहीं डालता है। वेद का ज्ञाता विद्वान तो सब को प्रेम के रस में एक रस करने वाला होता है। मंथरा एवं शकुनी जैसे नकारात्मक विचार वाले लोगों को हमेशा अपने घर से दूर रखना चाहिए, तभी गृहस्थ में एकता एवं शांति बनी रहती है। घर से ही समाज का निर्माण होता है। सर्वप्रथम एकता का पाठ घर से प्रारंभ होता है, इसके बाद बाहर समाज में। घर में सुसंस्कार एवं सुशिक्षा प्राप्त करके ही हम समाज में एकता बना पाएंगे। हमारा सामाजिक जीवन कैसा हो तो सूक्त में कहा गया जाया स्वंतः, हम वृद्धों का आदर करें, अर्थात वेद अनुयायी पुरुष विद्यावृद्ध धनवृद्ध एवं आयु वृद्धों का आदर करके उत्तम गुणों की प्राप्ति करें। जो अनुभव इन वृद्धों के पास होता है उनका पूर्ण लाभ हमें उठानी चाहिए। वृद्धों की सेवा से आयु विद्या यश एवं बल की वृद्धि होती है तथा उत्तम गुणों की प्राप्ति होती है। नीतिकारों का भी कहना है कि सभा वही शोभनीय है जहां वृद्धों का वास हो। आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ होना चाहिए। पुरुषार्थपूर्वक सभी लोग मिलकर उद्योग करें, अलग अलग होकर धन अर्जन न करें, मिलकर के धन को इकट्ठा करें। सहकारिता अर्थात कोऑपरेटिव के लिए वेद आदेश दे रहा है तथा सभी लोग आपस में मनोहर बोलते हुए एक साथ मिलकर प्रगति करें। एक मन वाला एक विचार वाला होकर मेहनत करें। कर्म के साथ साथ हमारा खान पान भी एक हो। हमारा पीने का जो शाला है वो एक स्थान में हो तथा अन्न का भाग साथ साथ हो। इससे आपसी प्रेम बढ़ता है और एकता बनी रहती है। हम संगठित होकर अग्नि की उपासना करें। अग्नि ईश्वर का प्रतीक है। हम मिलकर ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करें। हम यज्ञाग्नि की पूजा करें। यज्ञ भी संगठन की शिक्षा देती है। भोजन एवं उपासना करते समय भेदभाव नहीं होने चाहिए। उपासना एवं सहभोज हमें एक करता है। सामाजिक एकता का बहुत ही सुंदर उदाहरण वेद दे रहा है। जिस प्रकार पहिए कि सभी डंडे पहिए के बीच वाले काठ में चारों ओर से सटे होते हैं, तभी पहिया आगे बढ़ पाता है। उसी प्रकार समाज के सभी लोग मिल करके आगे बढ़ें। सातवें मंत्र में शब्द आया संबननेना, इसका अर्थ है उत्तम प्रकार की प्रेम पूर्वक सहायता करना। सामाजिक व पारिवारिक एकता में सेवा का भी एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हुए साथ साथ प्रगति वाले, एक मन वाले और एक भोजन वाले होवें। रोगी, वृद्ध, असहाय, सेवा करने योग्य पुरुषों की सेवा करनी चाहिए, तभी हम प्रगति कर पाएंगे। सेवा के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हमारे घर एवं समाज में कोई रोगी न बने। शरीर, मन, आत्मा एवं बुद्धि से सभी लोग स्वस्थ रहें, तभी हम देव तुल्य अथवा दिव्य गुणों से युक्त होंगे। स्वस्थ होने के लिए चित्त को प्रसन्न होना चाहिए, इसलिए सूक्त का अंतिम मंत्र में कहा गया सायं प्रातः सौ मनसो वो अस्तु। प्रातः और सायं चित्त की प्रसन्नता तुम्हारे लिए होवें, अर्थात प्रातः सायं हर क्षण हम प्रसन्न चित्त होकर सबसे प्रेम भाव से मिलें। हमारा नेतृत्व करने वाला वेद विद्वान हो, हमारा नेता हमें सही मार्ग पर चलाने वाला हो, ताकि हम अनेक प्रकार की सिद्धि प्राप्त कर पाएं। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए संगठन अति आवश्यक है। संगठन के बिना एक परिवार अथवा एक समाज उन्नत नहीं हो पाता है। सूक्त का यही सार है। ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही।
1: अभी आप सुन रहे थे मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जागृति।

चलिए श्रोताओं, वोट की बेला इस हिंदुस्तानी सपा को हम जारी रखेंगे। वैसे स्टूडियो की घड़ी में 6:17 हो चुकी है। आज की सुबह आपके लिए बेहद ही शुभ हो, सुहानी हो, हमारी यही कामना है। वैसे सुहानी सुबह जो है हमें ये संदेश देती है कि हर नया दिन एक नया अवसर है, इसलिए हमें बीते हुए दुखों को भूल कर नई आशा और विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए।

श्रोताओं, सुबह का ये वातावरण जो है मन को प्रसन्न करने वाला होता है और दिन भर उत्साह बनाए रखे। हम आपको यही सलाह देंगे कि अपने सुबह अच्छे विचारों और मुस्कान के साथ इसकी शुरुआत कीजिए। पूरा दिन यकीनन सुखद और सफल बन ही जाएगा। 6:24 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में, तो चलिए समय आप सुन रहे हैं चैन्य भावगीत। तो अगला भावगीत जो है वो है किशोर कुमार की आवाज़ में, फिल्म का नाम है ज़मीर।

चलिए श्रोताओं, नई रोशनी और नई खुशियाँ आपके जीवन में भरपूर हो, बस हमारी यही कामना है। कुछ ही घड़ी में 6:30 बजने वाले हैं, पूरा समाचार बुलेटिन आप सुन सकेंगे। वापस मिल रहे हैं 7 बजे सुबह का नजाना कार्यक्रम को लेकर। आप सभी को हम कहेंगे शुभ दिवस।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: सभी को हमारा नमस्कार। सुबह के ठीक 6:30 बजे हैं। पेश आज का पूरा समाचार बुलेटिन। सबसे पहले सुर्खियां। 2 साल बाद अब 30 से अधिक अफ्रीकी देशों के राष्ट्राध्यक्ष और सरकार प्रमुख इस सोमवार से केन्या की राजधानी नैरोबी में आयोजित होने वाले अफ्रीका फॉरवर्ड समिट 2026 में एकत्रित होंगे। प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम भी इसमें शामिल होंगे। दवाओं के भंडारण पर पब्लिक अकाउंट कमेटी PAC की विशेष रिपोर्ट ने संसदीय समिति के भीतर तनाव पैदा कर दिया है। राष्ट्रीय सभा की स्पीकर को भेजे गए एक पत्र में PAC के 5 सदस्यों ने समिति के अध्यक्ष अद्रियन जुवाल पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपनी सार्वजनिक टिप्पणियों में रिपोर्ट का राजनीतिक उपयोग किया है, जबकि उन्होंने दस्तावेज के निष्कर्षों और सिफारिशों के प्रति अपना समर्थन भी दोहराया है। और हंटा वायरस से प्रभावित क्रूज जहाज से रविवार को यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के समूह उतरे और उन्हें उनके संबंधित देशों में वापस भेजा गया। ये प्रक्रिया वैश्विक स्वास्थ्य अधिकारियों की देखरेख में चल रही है और आज भी जारी रहने की उम्मीद है। और अब समाचार विस्तार से। ये एक ऐसा आयोजन है जिसकी घोषणा केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो और उनके फ्रांसीसी समकक्ष इमानुएल माक्रों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के दौरान की थी। 2 साल बाद अब 30 से ज्यादा अफ्रीकी देशों के राष्ट्र अध्यक्ष और सरकार प्रमुख इस सोमवार से केन्या की राजधानी नैरोबी में आयोजित होने वाले अफ्रीका फॉरवर्ड समिट 2026 में एकत्रित होंगे। प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम भी इसमें शामिल होंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री विशेष रूप से 12 मई के कार्यक्रम में भाग लेंगे, जब सभी नेता विभिन्न गोलमेज बैठकों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान ठोस प्रतिबद्धताएं की जाएंगी ताकि समानता पर आधारित एक नई फ्रांस अफ्रीका साझेदारी को मजबूत रूप दिया जा सके। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आर्यन नावामागी कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे। प्रणव बिहारी अभी उदयी ज्यादा जानकारियां दे रहे हैं।
2: इस शिखर सम्मेलन का मूल उद्देश्य बातों को हकीकत में बदलना है। साल 2024 में जब विलियम रूटो और इमैनुएल माक्रों ने इस आयोजन की घोषणा की थी, तब उन्होंने नवाचार यानी कि इनोवेशन और विकास के लिए एक साझेदारी का वादा किया था। उनका लक्ष्य ऐसे ठोस परिणाम लाना है जो आर्थिक रूप से सफल हो और जमीनी स्तर पर लागू किया जा सके। पहला दिन व्यापारिक जगत यानी कि शुरुआत बिजनेस वर्ल्ड से होगी। नैरोबी यूनिवर्सिटी में 1500 से अधिक लोगों को जुटाने की उम्मीद की जा रही है, जिनमें अफ्रीका और फ्रांस के बड़े नेता, निवेशक, छोटे व्यापारी यानी कि SMEs तथा युवा ठेकेदार शामिल होंगे। इनका उद्देश्य मिलकर उद्योगों को बढ़ावा देने की नींव रखना है। दूसरा दिन यानी कि मंगलवार को केनियाटा कन्वेंशन सेंटर में राष्ट्र अध्यक्ष और सरकारों के प्रमुख कमान संभालेंगे। उनके साथ अफ्रीकी संघ, यूरोपीय संघ और बड़े वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि भी होंगे। भविष्य के लिए 7 अहम विषय चुने गए हैं, जिनमें ऊर्जा परिवर्तन यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन, वित्तीय सेवा, ब्लू इकोनॉमी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल है। ये भी माना जा रहा है कि इन क्षेत्रों में मॉरिशस को बड़ा फायदा मिल सकता है। पूरी दुनिया की नजरें अब अफ्रीका पर टिकी हुई है। ये सिलसिला यही नहीं रुकेगा। अगले जुलाई में US अफ्रीका बिजनेस समिट का आयोजन होगा, जिसकी मेजबानी मॉरिशस करेगा।
1: प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम कल रात नैरोबी पहुंचे। वे अफ्रीका फॉरवर्ड शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जो अफ्रीका और फ्रांस के बीच साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से एक रणनीति

0: नीतिक मंच हैं। जम्मू केन्याटा हवाई अड्डे पर पहुंचने पर केन्या के स्वास्थ्य मंत्री एडन डुआले ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। डॉ. नवीन राम गुलाम ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से भी संक्षिप्त मुलाकात की, जो स्वयं भी केन्या में मौजूद हैं। पुर्तगाली राजनयिक ने इस अवसर पर मॉरिशस की सराहना करते हुए उसे एक आदर्श और उत्कृष्ट देश बताया। दवाओं के भंडारण पर पब्लिक अकाउंट कमेटी पीएसी की विशेष रिपोर्ट ने संसदीय समिति के भीतर तनाव पैदा कर दिया है। राष्ट्रीय सभा के स्पीकर शिरीन ओमिरो डिसिफ्रा को भेजे गए एक पत्र में पीएसी के 5 सदस्यों ने समिति के अध्यक्ष अद्रियम जुवाल पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपनी सार्वजनिक टिप्पणियों में रिपोर्ट का राजनयिक उपयोग किया है, जबकि उन्होंने दस्तावेज के निष्कर्षों और सिफारिशों के प्रति अपना समर्थन भी दोहराया है। अपनी ओर से अद्रियम जुवाल ने याद दिलाया कि रिपोर्ट सर्वसम्मति से अपनाई गई थी और उन्होंने कहा कि सिफारिशों को लागू करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर देना उनका कर्तव्य है। अंजलि फुलचंद सिरतन अभ्युदय।
1: En tant que président du PRC, les mots de voix assurent moi qu'il y a une recommandation peut être appliquée.
2: Public Accounts Committee के अध्यक्ष होने की हैसियत से ये मेरा कर्तव्य बनता है ये सुनिश्चित करना कि किन किन सिफारिशों को लागू किया जा रहा है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो सभी मॉरिशन इससे संबंधित है। पूर्व में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट केवल दराजों में ही रही, इसीलिए इस रिपोर्ट से जुड़ी सभी जानकारियों को लोगों तक पहुंचाना बहुत ही आवश्यक है। ऐसी स्थिति में सरकार को भी इस स्थिति के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि चुनावी अभियान के अंतर्गत सरकार ने खुद स्टैंडिंग ऑर्डर्स में बदलाव लाने का वादा किया था, ताकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से जुड़ी सिफारिशें आम जनता तक पहुंच सके और इसे पढ़कर मॉरिशनों को पता चलेगा कि इसमें आखिरकार है क्या। अब जहां तक दवाइयों के भंडारण की कार्रवाई की बात है, तो अब तक कोई बदलाव नहीं लाया गया है। मैं आशा करता हूं कि इस सब पर जल्द से जल्द कदम उठाया जाएगा और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सिफारिशों पर भी गौर किया जाएगा।
0: क्या मॉरिशस में आखिरकार एक मीडिया एम्बिज ब्यूरो की स्थापना होनी चाहिए? ये सवाल इस सप्ताह फिर से उठाया गया जब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष और पूर्व डीपीपी वकील सत्यजीत बुलेल ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता सप्ताह के तहत मीडिया ट्रस्ट द्वारा पत्रकारों के लिए आयोजित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में इस विषय पर चर्चा की। वकील बुलेल ने 2013 में विधि विशेषज्ञ जोफ्रे रॉबर्टसन की प्रारंभिक रिपोर्ट मीडिया लॉ एंड एथिक्स इन मॉरिशस में की गई एक सिफारिश का उल्लेख किया। इस रिपोर्ट में एक स्वतंत्र मीडिया ओम्बिड्स पर्सन नियुक्त करने की वकालत की गई थी, जिसका कार्य जनता की शिकायतें प्राप्त करना, सुधार को प्रोत्साहित करना और पत्रकारिता में नैतिक आचरण को बढ़ावा देना होगा। इस संस्था की कल्पना मीडिया पर नियंत्रण के लिए नहीं, बल्कि उनकी विश्वसनीयता को मजबूत करने और साथ ही प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने के उद्देश्य से की गई थी। रॉबर्टसन रिपोर्ट के प्रकाशित होने के 13 साल बाद भी ये मॉरिशस में मीडिया के भविष्य को लेकर चर्चा और विचार विमर्श का केंद्र बनी हुई है। प्रेस की स्वतंत्रता, पत्रकारों की जिम्मेदारी, नैतिकता, मीडिया पेशेवरों की सुरक्षा और जनता के लिए सुलभ शिकायत निवारण व्यवस्था, इस रिपोर्ट की कई सिफारिशों का इस सप्ताह फिर से उल्लेख किया गया जब मीडिया ट्रस्ट द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शांतिपूर्ण भविष्य के लिए जिम्मेदार और स्वतंत्र मीडिया भविष्य पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। लेकिन आखिर ये रॉबर्टसन रिपोर्ट क्या है और आज भी इसका इतना महत्व क्यों बना हुआ है, इस पर एक विशेष रिपोर्ट पेश है संतना पोंसिनो और अभी उदय के साथ।
2: अप्रैल 2013 में प्रकाशित मीडिया लॉ एंड एथिक्स इन मॉरिशस की प्रारंभिक रिपोर्ट ब्रिटिश न्यायविद यानी जुरिस्ट जेफरी रॉबर्टसन द्वारा तैयार की गई थी। मानव अधिकार विशेषज्ञ रॉबर्टसन इसे तत्कालीन मॉरिशस सरकार के अनुरोध पर लिखा था। इसका मुख्य उद्देश्य मीडिया कानूनों की समीक्षा करना और प्रेस की स्वतंत्रता, पत्रकारिता यानी कि जर्नलिज्म की जिम्मेदारी और नागरिकों की सुरक्षा के बीच बेहतर संतुलन रखने के लिए सुधारों का सुझाव देना था। रॉबर्टसन ने माना कि मॉरिशस में प्रेस जीवंत और विविध है, परंतु उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ पुराने कानून आज के समय के हिसाब से सही नहीं है। रिपोर्ट में उन मुश्किलों का भी उल्लेख किया गया है जिनका सामना पत्रकारों को करना पड़ता है, जैसे कि लंबी और महंगी अदालती कार्रवाई का दर, विभिन्न दबाव और एक स्पष्ट कानूनी ढांचे की कमी। रिपोर्ट एक अहम सवाल उठाती है, जब दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले पत्रकार खुद व्यवस्था की कमियों के कारण असुरक्षित हो जाते हैं तो उनके लिए कौन बोलता है? ये रिपोर्ट केवल पत्रकारों के लिए नहीं है, इनमें उन नागरिकों की समस्याओं को भी उठाया गया है जिन्हें किसी समाचार या फिर लेख से नुकसान पहुंचता है। ऐसे नागरिकों के लिए न्याय पाना फिलहाल बहुत लंबा और खर्चीला काम है। रॉबर्टसन की सबसे प्रमुख सलाह एक स्वतंत्र मीडिया ओम्बड्स ब्यूरो बनाने की है। इनका काम जनता की शिकायतें सुनना, सुधार करवाना और समाचारों में नैतिकता को बढ़ावा देना होता है। इसे राजनीतिक नियंत्रण के बजाय एक स्व नियंत्रण यानी कि सेल्फ रेगुलेशन तंत्र के रूप में प्रस्तावित किया गया था। इस रिपोर्ट के प्रकाशन के 13 साल बाद भी इसकी कई मुख्य सिफारिशें अधूरी है। मीडिया ओम्बड्स पर्सन का गठन, कानूनी सुधार और सार्वजनिक सूचना तक बेहतर पहुंच जैसे मुद्दे आज भी केवल बहस का हिस्सा बने हुए हैं। यह दिखाता है कि साल 2013 में उठाए गए सवाल आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं।
0: सरकार ने प्लास्टिक प्रदूषण मुक्त द्वीप के लिए एक नेशनल स्ट्रेटेजी प्लान को मंजूरी दी है। इस योजना में सर्कुलर इकोनॉमी की ओर परिवर्तन, एकल उपयोग प्लास्टिक में कमी, रिसाइकलिंग को मजबूत करना और जागरूकता अभियान चलाने का प्रावधान है। मॉरिशस में प्लास्टिक प्रदूषण अब भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। कचरा सड़कों, नदियों और लगून में जमा हो रहा है, जिससे पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य दोनों को खतरा पहुंच रहा है। हर दिन बड़ी मात्रा में प्लास्टिक कचरा पहले से ही भरे हुए हैं मार्शिकोज लैंडफिल में पहुंचता है। रिसाइकल जैसी पहल लोगों को कचरे की छंटाई, संग्रह और रिसाइकलिंग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके बावजूद चुनौतियां अब भी काफ़ी बड़ी हैं। अधिक जानकारी के लिए सुनिए रिसाइकल की मैनेजर स्टेफानी जाके को। उन्होंने निर्मा नारायण रेड्डी से बात की। पूजा सुकालू का विवरण।
3: Ben, dernier chiffre qui nous gagnait depuis le ministère de l'Environnement peut montrer qu'il de moins en moins se récupère des déchets plastiques.
4: पर्यावरण मंत्रालय से जो हालिया आंकड़ा हमें प्राप्त हुआ है, इससे पता चलता है कि ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक कचरों को इकट्ठा किया जा रहा है, चाहे वो स्थानीय रिसाइकलिंग के लिए हो या निर्यात के लिए। जो प्लास्टिक कचरा हमारे टापू पर या मार्शिकोज में पाया जा रहा है, इनमें रिसाइकलिंग और नॉन रिसाइकलिंग प्लास्टिक दोनों हैं। प्राथमिक स्कूलों में चेतना अभियान चलाना, चौथे साल के लिए इस प्रोग्राम का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
3: Stella nous touche bande élèves de grade 5 et de grade 6 dans toute bande école primaire publique et semi publique de Maurice et nous essayons montrer bande enfants l'importance de faire le tri.
4: मॉरिशस के पब्लिक स्कूलों के ग्रेड 5 और ग्रेड 6 के छात्रों को हम इस परियोजना पर सचेत करा रहे हैं। छात्रों को कचरे का सही तरीके से छटाई करने के लिए प्रोत्साहित करना ही हमारा उद्देश्य है, विशेषकर प्लास्टिक कचरे को लेकर, ताकि ये हमारे पर्यावरण को दूषित न करे।
3: Pour éviter que bande déchets recyclables, surtout bande déchets plastiques, atterrissent dans la nature et dans le dépotoir de Manchicos.
0: जब से पेनाल्टी पॉइंट सिस्टम वाली प्रणाली शुरू हुई है, तब से आंकड़ों के अनुसार दर्ज किए गए कुल 6,700 अपराधों में से 17% मामले गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से जुड़े हैं। इसी कारण मंत्रिपरिषद ने पेनाल्टी पॉइंट सिस्टम के तहत सजा को और सख्त करने की मंजूरी दे दी है। मंत्री उस्मान महमूद ने बताया कि इस साल जनवरी में सिस्टम लागू होने के बाद से सुरक्षा के

0: हालात सामान्य रूप से स्थिर रहे हैं। इसके बावजूद इस विशेष उल्लंघन के लिए पेनल्टी पॉइंट्स को 5 से बढ़ाकर 10 कर दिया जाएगा। माधवी जगन्नाथ, करुणा लालू।
1: पेनल्टी पॉइंट सिस्टम लागू होने के बाद से अधिकारियों ने एक बढ़ती हुई समस्या पर ध्यान दिया है। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग, दर्ज की गई 6400 यातायात उल्लंघनों में से लगभग 17% मामले इसी से जुड़े हैं, जिसे सड़क दुर्घटनाओं और मौतों में वृद्धि का एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। कैबिनेट ने पेनल्टी पॉइंट सिस्टम के तहत दंड को और सख्त करने को मंजूरी दे दी है। 50-60% लोग गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का उपयोग करते हैं। मोटरसाइकिल, बस, लॉरी सब में देखा गया है। खुद की, अपने परिवार की और दूसरों की जान जोखिम में डालती हैं। रास्ते पर बहुत दुर्घटनाएं हो रही हैं, खासकर फोन के कारण। सरकार ने अच्छा फैसला लिया है, सोचता हूँ अच्छा फैसला है। चालकों से अपील करूँगा, खासकर बस ड्राइवरों से बहुत सावधान रहना चाहिए। कई लोगों की जानें हमारे हाथों में होता है, हमारी भारी जिम्मेदारी होती है। नई व्यवस्था के अनुसार वाहन चलाते समय मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर मिलने वाले पेनल्टी पॉइंट्स 5 से बढ़ाकर 10 कर दिए जाएंगे, जबकि पहले ये 3 से 6 अंकों के बीच था। परिवहन मंत्री उस्मान महमूद ने कहा, सभी जानते हैं कि जब ड्राइवर मोबाइल का उपयोग करता है तो खुद की और दूसरों की भी जान जोखिम में डालते हैं, इसलिए कैबिनेट ने अंक बढ़ाने का फैसला किया। अब ये 5 से शुरू होता है, 28 दिनों में अदायगी नहीं की गई तो 10 अंक हो जाएंगे और जुर्माना भी दुगना हो जाएगा। ये स्पष्ट करूंगा कि 33 उल्लंघनों के लिए जुर्माना नहीं बढ़ा है, केवल अंक बढ़े हैं। अतः गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन का उपयोग न करें। इस कदम का उद्देश्य जिम्मेदार ड्राइविंग को बढ़ावा देना है। ये उल्लेख्य है कि इस साल के जनवरी महीने से पेनल्टी पॉइंट्स प्रणाली लागू होने के बाद से सड़क सुरक्षा के आंकड़ों में सामान्य स्थिरता देखी गई है। सरकार अगले सप्ताह से रोड ट्रैफिक एक्ट में सुधार की प्रक्रिया शुरू करेगी, ताकि ये नया प्रावधान जल्द से जल्द लागू किया जा सके।
0: और विदेशी खबरों में, हंटा वायरस से प्रभावित क्रूज जहाज से रविवार को यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के सम्मुख उतरे और उन्हें उनके संबंधित देश में वापस भेजा गया। ये प्रक्रिया वैश्विक स्वास्थ्य अधिकारियों की देखरेख में चल रही है और आज भी जारी रहने की उम्मीद है। अधिकारियों ने बताया कि किसी भी यात्री में वायरस के लक्षण नहीं थे। अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि उनका आम जनता से कोई संपर्क नहीं होगा। और अब मौसम संबंधी जानकारियां। बादलों के झुंड मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। आज सुबह और दोपहर बाद को पूर्व, दक्षिण और ऊंचे इलाकों पर बादल घिरे रहेंगे और बारिश होगी। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 23 से 25 और साहिली इलाकों पर 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 18 से 20 और साहिली इलाकों पर 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात के दौरान ऊंचे इलाकों पर हल्की बारिश होगी। पूर्व, दक्षिण पूर्व की ओर से करीब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुँचेगी। लगुनों के परे समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण में 2.5 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। आज सुबह 6:29 पर सूरज निकला है। शाम 5:43 पर सूरज ढल जाएगा।

बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दो साल बाद अब 30 से ज्यादा अफ्रीकी देशों के राष्ट्राध्यक्ष और सरकार प्रमुख इस सोमवार से केन्या की राजधानी नैरोबी में आयोजित होने वाले अफ्रीका फॉरवर्ड समिट 2026 में एकत्रित होंगे। प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम भी इसमें शामिल होंगे। दवाओं के भंडारण पर पब्लिक अकाउंट

0: कमेटी पीएसी की विशेष रिपोर्ट में संसदीय समिति के भीतर तनाव पैदा कर दिया गया है। राष्ट्रीय सभा की स्पीकर को भेजे गए एक पत्र में पीएसी के 5 सदस्यों ने समिति के अध्यक्ष अद्रियन जुवाल पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपनी सार्वजनिक टिप्पणियों में रिपोर्ट का राजनीतिक उपयोग किया है, जबकि उन्होंने दस्तावेज के निष्कर्षों और सिफारिशों के प्रति अपना समर्थन भी दोहराया है। और विदेश में हंटा वायरस से प्रभावित क्रूज जहाज से रविवार को यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के समूह उतरे और उन्हें उनके संबंधित देशों में वापस भेजा गया। ये प्रक्रिया वैश्विक स्वास्थ्य अधिकारियों की देखरेख में चल रही है और आज भी जारी रहने की उम्मीद है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन पूरा हुआ। इसे आप तक पहुंचाने में हमें काडिया का सहयोग मिला है, उन्हें धन्यवाद देते हैं। आपको भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। कुछ ही देर में शोक समाचार सुन सकेंगे।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: नेहरू रोड गोकुला में 48 साल के 48-year-old के श्री संजय रिधा, जो भाई से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे उनकी पत्नी श्यामा रिधा के घर नेहरू रोड गोकुला से उठाकर पीतों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। रॉयल रोड मिडलैंड्स में 42 साल के 42-year-old के श्री संजीव पुरन, जो जिबुत राजीव से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 10:30 उनके भाई मनोज कुमार पुरन के घर रॉयल रोड मिडलैंड से उठाकर मारिजानी रोजबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10:30 AM। लुबिन लेन पिचित रिविया में 55 साल की 55-year-old की श्रीमती बिडवंती लुबिन, जो फिया से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके घर लुबिन लेन पिचित रिविया से उठाकर सैन जोर्ज पिचित रिविया का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM। शिवाला रोड मोतैन ब्लांश में 90 साल की 90-year-old की श्रीमती ग्वांती सावन, पैदाइश नाम की तारत और जो ग्वांती से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके बेटे सुधीर प्रदीप सावन के घर शिवाला रोड मोतैन ब्लांश से उठाकर पिछपा के मोतैन ब्लांश की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। रॉयल रोड लाल माटी में 72 साल के 72-year-old के श्री सच्चिदानंद रामास्वामी, जो सत्यानंद कॉन्ट्रैक्टर से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनकी पत्नी मनीता रामास्वामी के घर रॉयल रोड लाल माटी से उठाकर मेजिन कॉन्डोमास्क की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। मोसलमान वीआरएस ग्रांड पॉइंट पीमा में सेमोटें दुकान के पास 44 साल की 44-year-old की श्रीमती गायत्री दानी, पैदाइश नाम नंदू और जो अनुष्का से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुबह 10 बजे उनके पति राकेश डानी के घर मोसलमान वीआरएस ग्रांड पॉइंट पीमा से उठाकर पॉइंट बिश की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। जोली स्ट्रीट 400 में 49 साल की 49-year-old की श्रीमती सुविना द्वारका प्रसाद, पैदाशी नाम मंगुत्रोई और जो सुविना से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुबह 10:30 उनके घर जोली स्ट्रीट 400 से उठाकर दुफ्रय की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10:30 AM। इलोट कॉन्चाबल में 92 साल की 92-year-old की श्रीमती काइसिया, जो लीलो से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके बेटे आनंद शिवदीन के घर इलोत कौचाबल से उठाकर कौचाबल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। दुखी रोड घोंद रिथ्रेट में 28 साल की 28-year-old की कुमारी विदुषा रितु, पैदाइश नाम सी गुलाम और जो विदु से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके पति अशय रितु के घर दुखी रोड घोंद रिथ्रेट से उठाकर बुनाकई की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। जॉर्ज रैंकिंग स्ट्रीट घोंद पॉइंट पीमो में 82 साल की 82-year-old की श्रीमती सूर्यवती बिसेसर, पैदाइश नाम नित्या और जो रंभा से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज सुपहर बाद के 3 बजे उनके घर जॉर्ज रैंकिंग स्ट्रीट घोंद पॉइंट पीमो से उठाकर पॉइंट पीमो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
2: सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भरा नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रीमियर लीग टाइटल और रिलेगेशन वॉक के एक फैसले पर, शायद ये प्रीमियर लीग में वाओ का सबसे बड़ा फैसला था जो आर्सेनल को टाइटल दिला सकता है और वेस्ट हैम यूनाइटेड को रिलेगेशन। वेस्ट हैम 0 आर्सेनल 1 सेकंड हाफ के 83rd मिनट में जाकर थोसा ने एक डिफ्लेक्टेड शॉट पर गोल स्कोर किया। फिर इंजरी टाइम में वाओ का ड्रामा, कैलम विल्सन ने इक्वलाइज किया पर लंबे वार रिव्यू पर गोल डिसअलाउ नहीं दिया गया। आर्सेनल की जीत जिससे अब द गनर्स टाइटल के बहुत करीब हैं और अनलकी वेस्ट हैम यूनाइटेड रिलेगेशन के करीब। आर्सेनल एक मैच ज़्यादा खेलकर सिटी से, मैनचेस्टर सिटी से 5 अंक आगे हैं। गोल डिफरेंस भी +2 है आर्सेनल के हक में। मैनचेस्टर सिटी के लिए हैं 3 मैच। 13 मई को मैच होगा क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ, ये होम मैच है। फिर चेल्सी के यहाँ जाना है और सीजन का आखिरी मैच बोर्नमुथ वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। आर्सेनल के लिए 18 मई को बर्नले के खिलाफ होम मैच, फिर 24 मई को क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ खेलना है अवे मैच। इसके बाद चैंपियंस लीग का फाइनल 30 मई को। देखा जाए तो आर्सेनल के सामने 3 फाइनल है 2 ट्रॉफी जीतने के लिए। कल खेले गए बाकी 3 मैच ड्रॉ गए। बर्नले 2, अस्टन विला 2, क्रिस्टल पैलेस 2, एवर्टन 2, नॉटिंघम फॉरेस्ट और न्यूकासल यूनाइटेड के बीच मैच ड्रॉ 1-1। लीग टेबल में आर्सेनल के पास है अभी 79 अंक 79 points, मैनचेस्टर सिटी के पास है 74 अंक 74 points, यानी 5 अंकों का गैप। फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड आता है तीसरे स्थान पे, उसके पास है 65 अंक। मैनचेस्टर यूनाइटेड से 6 अंक पीछे आता है लिवरपूल जो टॉप 4 में है। बराबर अंक है अस्टन विला के पास जिसने कल अपना मैच ड्रॉ किया। अस्टन विला टॉप 5 पूरा करता है। टॉप 6 में है बोर्नमुथ और ब्राइटन उससे 2 अंक पीछे। एक और चैंपियंस लीग स्पॉट हो सकता है इंग्लैंड के लिए अगर अस्टन विला टॉप 4 में न आए और वो यूरोपा कप जीत जाए तो। नीचे नॉटिंघम फॉरेस्ट बच गया रिलेगेशन का आखिरी मनहूस टिकट। टोटनहम हॉटस्पर या वेस्ट हैम यूनाइटेड के बीच होगा। वेस्ट हैम अभी टोटनहम हॉटस्पर से 1 अंक पीछे हैं एक मैच ज्यादा खेलकर। आज लीड्स यूनाइटेड टोटनहम हॉटस्पर का स्वागत करेगा। इसके बाद चेल्सी वर्सेस टोटनहम, टोटनहम हॉटस्पर वर्सेस एवर्टन, जबकि वेस्ट हैम यूनाइटेड के लिए अवे मैच है न्यूकासल यूनाइटेड के खिलाफ और होम मैच लीड्स, यानी रिलेगेशन बैटल गोइंग टू द वायर। स्पेन में एल क्लासिको जीतकर बार्सिलोना ला लीगा का चैंपियन बना। बार्सिलोना 2 रियल मैड्रिड 0, रशोद का एक लाजवाब फ्री किक, फिर फेरान तोरेस का गोल फर्स्ट हाफ में ही। तीन मैच खेलने बाकी हैं पर बार्सा अपना 29वां टाइटल जीत चुका है। अन्य मैच मालोका एक, विलारियल एक, एथलेटिक बिलबाओ जीरो, वेलेंसिया एक, ओविएडो जीरो, रेताफे जीरो। स्कॉटिश प्रीमियरशिप में सेल्टिक की जीत 3-1 से रेंजर्स पर। सेल्टिक अब हाथ से केवल एक अंक पीछे हैं। जर्मनी में हैमबर्ग 3, फ्रीबर्ग 2, एफसी कोल्न 1, हाइडेनहैम 3, माइंस 05 1, यूनियन बर्लिन 3। इटली के सेरी आ में इंटर मिलान तो पहले से ही चैंपियन बन चुका है। कल के खेले गए मैचों में एसी मिलान 2, अटलांटा 3, पाओमा 2, एएस रोमा 3, फ्लोरेंटीना और जिनोवा के बीच मैच ड्रॉ 0-0, क्रिमोनेज़े 3, पिसा 0, वेरोना 0, कोमो 1। फ्रांस के लीग 1 में आंजे 1, स्ट्रासबूर 1, ओसेया 2, नीस 1, ले हावर 0, मार्सेई 1, मेट्स 0, लोरियन 4, मोनाको को हराया लिल ने 1-0 से। पारी सैन जर्मेन की जीत हुई ब्रेस्ट पर 1-0 से। रेन 2, पारी एफसी 1, टूलूज 2, लियों 0। अभी पारी सैन जर्मेन लंसे 6 अंक पीछे है, खेलने हैं 2 मैच। पारी सैन जर्मेन दोनों मैच हार कर भी चैंपियन बन सकता है क्योंकि उसका गोल डिफरेंस बेहतर है। इंडियन सुपर लीग में केरला ने मोहम्मदन को 3-1 से हराया। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने चेन्नई को 4-1 से। अभी ईस्ट बंगाल, मोहन बगान और जमशेदपुर तीनों के पास हैं 21 अंक। टेनिस, इटालियन ओपन में आज राउंड ऑफ 16 और राउंड ऑफ 32 के मैच खेले जाएंगे। लड़कों में होम फेवरेट है यानिक सिनर वर्सेस पोपेरिन। कोबोली चिराते के खिलाफ खेलेगा। लड़कियों में कोको गोफ, योविच, सियस्टिया, मुस्कोवा, श्वातेक, ओसाका। क्रिकेट, आईपीएल में मुंबई इंडियंस की हार की यात्रा जारी है। इस बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हराया। मुंबई की इनिंग्स में फिर से स्काई यानी सूर्य कुमार यादव फ्लॉप बना, डक आउट। रोहित शर्मा 22 रन, 22 रन, तिलक वर्मा 57 रन बनाकर अपनी टीम को एक इज्जतदार पारी पर ले गया। भुवनेश्वर 4 विकेट ले पाया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए विराट कोहली भी बिना रन बनाए पैवेलियन लौटा, डक आउट। पर क्रुणाल पांड्या ने 73 रन बनाकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को जितवाया। चेन्नई सुपर किंग्स की भी जीत हुई लखनऊ सुपर जायंट्स पर 5 विकेट से। आज पंजाब किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। और मॉरिशस में लोकल फुटबॉल में लाकियो वेव्स का डबल, इस बार एमएफए कप जीत पाए। फाइनल को 2 में आईएसपीएल डेमिल के खिलाफ था, स्कोर 1-1 रहा। पेनाल्टी पर 10-9 से लाकियो वेव्स की जीत हुई। तो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही, आपके ध्यान के लिए शुक्रिया। आगे दीजिए नमस्कार आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: स्टूडियो की घड़ी में 7:03 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से ये विज्ञप्ति सुनिए। कमाउसले और कथकुको के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है NSLD, NHDC, चर्च लेन, डसन स्ट्रीट, एवेन्यू अजालिया, हाई स्ट्रीट, बिलाओ स्ट्रीट और कमिलिया एवेन्यू के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि सोमवार 11 मई 2026 को सुबह 8:45 से लेकर दिन के 11 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमाप्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति सुन रहे थे, ये रेडियो मॉरिशस है। तो चलिए इस हिंदुस्तानी सभा को हम जारी रखेंगे।
2: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।

0: तो चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये रेडियो मॉरिशस है, मीडियम वेव 819 किलोहर्ट्ज पे हमारा प्रसारण हो रहा है। वेरी गुड मॉर्निंग, हमारा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। वैसे सुबह 6 बजे से इस समय तक आप लोगों का साथ रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सफ़र जो है हम जारी रखेंगे दिन के 11 बजे तक। सोमवार का दिन है आज और 11 मई 2026। तो चलिए आपके लाए हैं एक से बढ़कर एक प्रोग्राम। ये है सुबह का नज़ाना कार्यक्रम। सुबह की ताज़ी हवा, पक्षियों की मधुर ध्वनियाँ और सूरज की सुनहरी किरणें मन को यकीनन शांति और आनंद से भर देती है। यही समय होता है श्रोताओं जहाँ हम सकारात्मक सोच बनाए रखना चाहिए, साथ में अच्छे कार्यों की प्रेरणा भी ये समय जो है हमें देता है। तो चलिए इसी शुभ विचारों के साथ इस हिंदुस्तानी सभा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। तो आइए चिंतन डॉक्टर जमन जी की प्रस्तुति में हम सुन पाएंगे।
1: मूल्य, सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: जैसे मिट्टी का घड़ा एक बार टूट जाने पर फिर नहीं जुड़ सकता है, वैसे ही जब कुल में दुखदायी बैर बंध जाता है तो वह शांत नहीं होता।

0: झलकियां
1: झलकियां तो चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे रेडियो कार्यक्रमों की रूपरेखा। आज आप ये कौन कौन से प्रोग्राम लेकर आए हैं, तो इस समय आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम है सुबह का नज़ाना, चंद पुराने गाने आपके लिए।

0: आठ बजे भोजपुरी में समाचार पढ़े जाएंगे और समाचारों के उस पार आपके लिए आपकी राशि 8:50 पर हमारी धरोहर। ये कार्यक्रम किरण जानकी की प्रस्तुति में, साथ में आपके लिए एक भोजपुरी गीत। 9 बजे समाचार पढ़े जाएंगे, समाचारों के बाद आज की चर्चा कार्यक्रम नीतू शाह के साथ। दिन के 10 बजे फिर से आप समाचार सुन सकेंगे। भक्ति धारा ये कार्यक्रम होने वाला है 10:03 पर और इस कार्यक्रम के अंतर्गत मानस मंथन कार्यक्रम। ये कार्यक्रम जो है डॉक्टर वीरुण जी की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे। इसके बाद भक्ति धारा कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा चंद भक्ति गानों के साथ। आपके लिए समाचार दिन के 11 बजे शमे फरोजा, ये कार्यक्रम जो है उर्दू भाषा में आप सुन सकेंगे। सायदा के साथ श्रीमती दमिया जी लेकर आएगी मराठी भाषा में कार्यक्रम दिन के 12 बजे। 1 बजे जी हाँ, दिन के 1 बजे आरसी के साथ आप सुन सकेंगे तमिल भाषा में कार्यक्रम। गुजराती कार्यक्रम रंगारंग, ये कार्यक्रम रत्ना की प्रस्तुति में 1:45 पर। दोपहर के 2 बजे आप हक्का में कार्यक्रम हांगकांग के साथ सुन पाएंगे। रत्ना की प्रस्तुति में 2:30 बजे आपकी पसंद कार्यक्रम होने वाला है और दोपहर के 3 बजे आप समाचार सुनेंगे और इसके बाद आपकी पसंद कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा। शाम के 4 बजे आप क्षितिज कार्यक्रम सुन पाएंगे और 4:15 बजे आपके लिए तेलुगु भाषा में कार्यक्रम राजेंद्र के साथ। गिनीशा लेकर आएगी बच्चों के लिए एक विशेष कार्यक्रम 5:30 बजे और 6 बजे पूरा समाचार बुलेटिन आप सुन सकेंगे। इसके बाद चंद फिल्में गाने। 6:30 बजे कंटोनीज में कार्यक्रम जिन के साथ, ये कार्यक्रम जो है आप कंटोनीज भाषा में सुन पाएंगे। युवारासन लेकर आएंगे तमिल भाषा में कार्यक्रम रात्रि के 7 बजे। 7:30 बजे आप सुन सकेंगे तेलुगु भाषा में कार्यक्रम वंदना के साथ। नितिन मराठी भाषा लेकर आएंगे गीत गंगा 7:50 पर। 8:10 पर भजले प्रभु का नाम, ये कार्यक्रम मेरी तरफ से। और रात्रि के 8:40 पर महफिल शब उर्दू कार्यक्रम सायदा के साथ एक बार फिर से। और भोजपुरी तड़का प्रताप की प्रस्तुति में रात्रि के 9 बजे और रात्रि के 11 बजे सुनहरे पल चंद पुराने गाने विकास के साथ। और रात्रि के 12 बजे से लेकर कल सुबह के 6 बजे तक चंद प्यारे प्यारे गीत आपकी सेवा में।
1: झलकियां
2: झलकियां
1: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।

0: कभी कभी
1: श्रोताओं, प्यार वो खूबसूरत एहसास है जिसमें स्वार्थ नहीं बल्कि त्याग, समर्पण और विश्वास की भावना होती है। प्यार परिवार को, मित्रता को और रिश्तों को मजबूत बनाता है। तो चलिए, सुबह का नज़ाना कार्यक्रम आपके लिए चंद पुराने गाने, फिल्म तराना का ये सदाबहार गीत शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में।

तो चलिए श्रोताओं, जिंदगी हमें हर पल कुछ नया ज़रूर सिखाती है, कभी हंसना, कभी संभलना, तो कभी दूसरों को समझना भी, यही जीवन का अनुभव है। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो चलिए हमेशा की तरह साथ निभाने के लिए धन्यवाद। आपके फ़ोन कॉल्स के लिए, आपके प्यार भरे मैसेजेस के लिए हम कहेंगे बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आपके लिए एक सुहाना सफ़र रेडियो मॉरिशस पे, ये है सुबह का नज़ाना कार्यक्रम, चंद पुराने गाने आपके लिए, आपकी यादों को ताज़ा करने के लिए।

तो चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 7:33 हुए हैं। सुबह का नजाना कार्यक्रम आपके लिए एक से बढ़कर एक गाने। तो चलिए अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे और ये प्यारा सा गीत आप सुन पाएंगे किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: तो चलिए श्रोताओं, सदाबहार गानों का जो जादू है कभी पुराना नहीं होता, वे हर दौर में दिलों को छू जाता है। पुराने गीतों में छुपी सादगी और मिठास आज भी दिल को सुकून देती है, आप यकीनन मुझसे सहमत होंगे। तो चलिए, पुराने गीतों का एक खूबसूरत कारवा, इसे हम आगे बढ़ाएंगे। यह है सुबह का नज़ाना कार्यक्रम, आपके लिए ये कार्यक्रम 8 बजे तक जारी रखने वाली है।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

वैसे श्रोताओ, प्यार का हर लम्हा दिल की धड़कनों में एक मधुर एहसास बनकर बस जाता है। यकीनन आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुबह का ऐसा कार्यक्रम, गीतों को आप बेहद ही एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार भरे मैसेजेस के लिए। हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, बस नाम हर किसी का तो हम नहीं ले पाएंगे। तो चलिए, आपकी फरमाइश कुछ मेरी तरफ से, कुछ आप लोगों की तरफ से इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं।

श्रोताओ, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं दुआ से मिलते हैं, और कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं कुछ दुआ बन जाते हैं मिलने के बाद। तो चलिए सुबह का नज़ाना कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे धमाकेदार जोशीले अंदाज में। ये प्यारा सा नज़ाना आप सभी सुन

तो चलिए श्रोताओं, सोमवार का ये दिन आपके लिए बेहद ही मंगलमय हो। जो भी योजनाएं आप बना रहे हैं वो सफल हो। कुछ लोग जो है सुबह सवेरे 6 बजे से हमारा साथ दे रहे हैं। आपकी मीठी मीठी बातों के लिए धन्यवाद। आपकी प्लानिंग जो है, आप क्या करने वाले हैं, कुछ लोग जो है घर पर रहने वाले हैं, कुछ लोग जो है क्या क्या करने वाले हैं, हमारे साथ जो है बांट रहे हैं। आपके विचारों के लिए भी हम कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। और गीतों की का एक खूबसूरत कारवा, इसे हम आगे बढ़ा रही हैं। खेल खेल में आपको पता है ये फिल्म बहुत ही हिट हुई, और इस फिल्म के जो गाने भी हैं बहुत ही पसंद किए गए हैं। तो चलिए, वन ऑफ माय फेवरेट आपके लिए इस कार्यक्रम में।

श्रोताओ, कुछ ही घड़ी में 8 बजने वाले हैं। भोजपुरी में समाचार आप सुन सकेंगे और समाचारों के बाद हम वापस मिल रहे हैं सुबह का नजाना कार्यक्रम के दूसरे हिस्से को लेकर। आप सभी को हम कहेंगे शुभ दिवस।

भोजपुरी समाचार में आप सबको के स्वागत बा। एगो ऐसन आयोजन है जेकर घोषणा केन्या के राष्ट्रपति विलियम रुटो और उनकर फ्रांसीसी समकक्ष इमानुएल माक्रों संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वां सत्र के दौरान कर ले रलन। दू बरिस के बाद अब 30 से जस्ती अफ्रीकी देश के राष्ट्र अध्यक्ष आर सरकार प्रमुख ई सोमवार से केन्या के राजधानी नैरोबी में आयोजित हुई होला अफ्रीका फॉरवर्ड समिति

0: तो 2026 में एकत्रित होलहवन छ। प्रधानमन्त्री डाक्टर नवीन राम गुलाम भी एकरमे सामेल होलहवन। मॉरिशसके प्रधानमन्त्री विशेष रूपसे 12 मईके कार्यक्रममे भाग लियन, जब सब नेता लोग विभिन्न गोलमेज बैठकमे भाग लियन जा। ई दौरान ठोस प्रतिबद्धता करल जाय, जमे समानता पर आधारित गो नवा फ्रांस अफ्रीका साझेदारी के मजबूत रूप देवे जाय सकी। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम कल रात के नैरोबी पहुँचलन। उ अफ्रीका फॉरवर्ड शिखर सम्मेलन में भाग लेवत हवन, जोन अफ्रीका और फ्रांस के बीच साझेदारी के मजबूत करे के उद्देश्य से एगो रणनीतिक मंच है। जोमो केन्याता हवाई अड्डा पर पहुँचला पर केन्या के स्वास्थ्य मंत्री अडेन डुआले प्रधानमंत्री के स्वागत करलन। डॉक्टर नवीन राम गुलाम संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंटोनियो गुटेरेस से भी एगो छोटा मुलाकात करलन, जोन खुद केन्या में मौजूद हवन। पुर्तगाली राजनयिक ई अवसर पर मॉरिशस की सराहना करलन और बोलन कि एगो आदर्श और उत्कृष्ट देश है। अपन ओर से डॉक्टर नवीन राम गुलाम अंटोनियो गुटेरेस के संगे अपन मित्रता के याद दिलैलन और बोलन कि हमेशा उ मॉरिशस की मदद करे खातिर तैयार रहेला। अर्काल शिखर सम्मेलन से पहले स्ट्राथमो यूनिवर्सिटी में नागरिक समाज विचार विमर्श और बहस के पहले चरण के शुरुआत करल गल। एकर केंद्र में एगो मुख्य विचार रहल, आज अफ्रीका में लोकतांत्रिक विमर्श कौन प्रकार हुआ था और एकर पर सवाल उठावल गल। ई पहल फाउंडेशन फॉर डेमोक्रेसी इनोवेशन बगल से आयोजित करल गल। सोशल क्रिएशन एंड इनोवेशन पवियन में लगभग 50 संगठन से जुड़ल शोधकर्ता, कलाकार और परियोजना संचालक के संगे आनल गल, जमे उलोग अपन अनुभव और प्रस्ताव के आदान प्रदान करे सकियन सा। डॉक्टर नवीन राम गुलाम के देश में अनुपस्थित हुई के दौरान कल सांझ से आहया नावामागी कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद संभालत हवन। ई मॉरिशस के इतिहास में पहला हला है। जेंडर इक्वालिटी मंत्री से पहले भी ढेर महिला लोग अपन हमनी के संस्था के द्वार खोलले हवन सा। मागी देनीस मौशों के 1963 में लेजिस्लेटिव काउंसिल में नियुक्त करे होला पहला महिला बनावल गल रहल। आर राधा पुनुस्वामी 1975 में पहला महिला बनल रलन, जोन सांसद के रूप में निर्वाचित होल रलन आर एकर तुरंत बाद मंत्री पद संभलले रलन। एकर अलावा 2014 में माया हनुमान जी राष्ट्रीय सभा के पहला महिला स्पीकर बनल रलन और 2015 में अमीना गरीबफा के मॉरिशस के पहला महिला राष्ट्रपति बनल रलन। दवाई के भंडारण पर पब्लिक अकाउंट कमेटी के विशेष रिपोर्ट संसदीय समिति के अंदर तनाव पैदा कर दे लेबा। राष्ट्रीय सभा के स्पीकर शिरीन अमीरुद्दीन सिफरा के भेजल गल एगो पत्र में पीएसी के 5 गो सदस्य समिति के अध्यक्ष अधियन जुवाल पर आरोप लगेले हवन स कि वो अपन सार्वजनिक टिप्पणी में रिपोर्ट के राजनीतिक उपयोग कर लेबा, जबकि उ दस्तावेज के निष्कर्ष और सिफारिश के प्रति अपन समर्थन भी दोहराइले हवन। अपन ओर से अधियन जुवाल याद दिलैले हवन कि रिपोर्ट सर्वसम्मति से अपनावल गल रहल आर उबुलन की सिफारिश के लागू करे के तत्काल आवश्यकता पर जोर दे के उनकर कर्तव्य है। आर दूसर देश के खबर में फ्रांस के प्रधानमंत्री बोले हवन कि एमवी होंजेस के 5 गो यात्री के आवत सूचना ले पेरिस में क्वारंटाइन में रखल जाए। ई फ्रांसीसी नागरिक उ सब 90 से जस्ती पर्यटक में शामिल हवन सा, जे लोग के काल डच जहाज से घर वापस भेजल गल। ई जहाज काल फजीर से पहले कनारी टापू के तट पर लंगर लगेले रहल। ई जहाज पर यात्रा करे होला 3 गो यात्री के मौत हो गल बा, जेकर में से 2 गो के वायरस से संक्रमित हो के पुष्टि होल बा। एकरे संगे भोजपुरी में समाचार पूरा हो गल। आप लोग के ध्यान खातिर धन्यवाद और सबके के नमस्ते।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: अरब मरने की खबर सुना जा खौंद पैंतु पीमो में जोर्ज रैंकिंग स्ट्रीट खौंद पैंतु पीमो में 82 बरिस के काथोवें देशों के श्रीमती सूर्यावती बिसेसर पैदाश नाम नित्या अर्जुन

हार्दिक स्वागत कर रहे हैं और इस समय से लेकर 8:50 पर हम आपका साथ देने वाले हैं और आपके चैन प्यारे प्यारे गीत और इस दूसरे हिस्से में आपकी राशि इस कार्यक्रम को लेकर आएंगे कुछ ही घड़ी में। तो चलिए आपके लिए बहुत ही प्यारा सा गीत और बहुत सारे मैसेजेस हमें सुबह से प्राप्त हो रहे हैं, तो कुछ बर्थडे विशेज जो है हमें प्राप्त हुए हैं, तो कुछ बर्थडे विशेष जो है नाम पढ़ने वाले हैं कुछ ही घड़ी में। तो जुड़े रहे हमारे साथ, ये रेडियो मॉरिशस है, मीडियम वेव 819 किलोहर्ट्ज़ पे हमारा प्रसारण हो रहा है।

ये सप्ताह और आपका भविष्य। आज है सोमवार 11 मई 2026। आज सोमवार से लेकर 17 मई 2026 तक कैसा होने वाला है ये सप्ताह, आइए 12 राशियों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं।

साप्ताहिक राशिफल। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। एरीज, इस हफ्ते आपका ध्यान अपने काम और भविष्य को बेहतर बनाने पर हो रहेगा। जो लोग नौकरी या करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें कोई अच्छी खबर मिल सकती है। मेहनत का फायदा मिलेगा, लेकिन अपनी योजनाएं हर किसी को बताने से बचें। काम का दबाव रहेगा, लेकिन आप चीज़ें संभाल लेंगे। परिवार में छोटी बातों पर बहस हो सकती है। सेहत में थोड़ी सी सुधार लाने की कोशिश आप ज़रूर करें, क्योंकि शरीर दर्द की परेशानी हो सकती है। तो चलिए, आपके लिए मेष राशि एरीज। अब हम बढ़ेंगे वृषभ राशि की ओर। आपके लिए टॉरस, घर परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। कई जरूरी काम समय पर पूरे हो सकते हैं। किसी रिश्तेदार से मिलने या कहीं आने जाने का प्लान भी बन सकता है। पैसों के मामले में थोड़ा संभल कर चलना होगा। बड़ा निवेश फिलहाल टालना बेहतर रहेगा। नौकरी करने वालों को ऑफिस में तारीफ मिल सकती है। मानसिक थकान जो है महसूस हो सकती है। मानसिक थकान और शारीरिक थकान भी आप महसूस कर सकते हैं। तो चलिए, आपके लिए वृषभ राशि टॉरस।

और अब मिथुन राशि की ओर हम बढ़ेंगे। मिथुन राशि आपके लिए जेमिनी, अगर कहीं पैसा अटका हुआ है तो इस हफ्ते राहत मिल सकती है। काम ज़्यादा रहेगा लेकिन धीरे धीरे चीज़ें आपके कंट्रोल में आ सकती है। परिवार

सुधार के पुराने विवाद भी कम हो सकते हैं। बिजनेस में सुधार के संकेत है और आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर लग सकती है। मौसम की वजह से सर्दी, जुकाम या बदन दर्द परेशान कर सकता है, तो थोड़ा अपने जो स्वास्थ्य है इस पर आप ज़्यादा जो है ध्यान केंद्रित कीजिएगा। मिथुन राशि आपके लिए जेमिनी। कर्क वालों के लिए कैंसर, ये सप्ताह जो है आपके लिए अच्छा माना जा रहा है। घर में खुशी का माहौल रहेगा, घर की सजावट या खरीदारी पर पैसा खर्च हो सकता है, बिजनेस में नए ऑर्डर जो है आपको मिल सकते हैं और जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचे। काम का दबाव जो है ज़्यादा रहने से थकान महसूस कर पाएंगे। जी हाँ, काम का दबाव की वजह से आप जो है थोड़ा थकान जो है महसूस कर सकेंगे, तो आप अपने स्वास्थ्य पर ज़रूर जो है ध्यान दीजिएगा। तो आपके लिए कर्क राशि कैंसर। सिंह वालों के लिए अगर हम बात करें तो आपके लिए लियो, घर में रिश्तेदारों के आने से रौनक बनी रहेगी, कोई अटका काम किसी की मदद से पूरा हो सकता है, संतान को लेकर चल रही चिंता भी कम होगी, कामकाज में आपकी पहचान का फायदा मिलेगा, हालांकि नौकरी में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तनाव और थकान बढ़ सकती है, तो आपके लिए सिंह राशि लियो।

ये सप्ताह और आपका भविष्य हम बात करेंगे कन्या वालों के लिए। कन्या राशि व्यगो, घर में किसी की सफलता से खुशी का माहौल रहेगा। प्रॉपर्टी या कोर्ट से जुड़े मामलों में राहत मिलने की संभावना है। इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। ऑफिस में कुछ लोग परेशानी बढ़ा सकते हैं, इसलिए अपना काम खुद ध्यान से करें। मौसम बदलने की वजह से सेहत का ध्यान आप जरूर रखें। आपके लिए कन्या राशि व्यगो। तो चलिए तुला राशि तक पहुंच गए हैं। आपके लिए लिब्रा, ये सप्ताह भागदौड़ वाला रहेगा। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में धीरे धीरे समाधान निकल सकता है। नया काम शुरू करने के लिए समय जो है बहुत ही मजबूत नहीं माना जा रहा है। पुराने निवेश से फायदा मिल सकता है। खान पान बिगड़ने से गैस या एसिडिटी परेशान कर सकती है। तो आपके लिए तुला राशि लिब्रा। वृश्चिक राशि, आपके लिए स्कॉर्पियो, इस हफ्ते आपके कई काम समय पर पूरे हो सकते हैं। घर में बदलाव या मरम्मत का काम शुरू हो सकता है। युवाओं को मनचाही नौकरी या कारोबार का मौका मिल सकता है। खर्चों पर कंट्रोल रखना जरूरी रहेगा। ऑफिस में राजनीति से थोड़ा बचकर रहे, पेट से जुड़ी परेशानी हो सकती है। तो चलिए आपके लिए वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो।

धनु राशि आपके लिए सजिटेरियस घर परिवार की कोई पुरानी बात सुलझ सकती है। मेहमानों के आने से घर का माहौल अच्छा रहेगा। कामकाज में धीरे धीरे सफलता मिलेगी। युवाओं को करियर में नई शुरुआत का मौका मिल सकता है। तनाव का असर पाचन पर पड़ सकता है। तो आपके धनु राशि सजिटेरियस। ये सप्ताह और आपका भविष्य मकर राशि आपके लिए कैप्रिकॉर्न। रिश्तों में चल रही गलतफहमियां कम हो सकती है। मेहनत का फायदा

फायदा मिलेगा और कामों में अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। बिजनेस में नया ऑर्डर या बड़ा काम मिलने की संभावना है। ज़्यादा काम की वजह से थकान महसूस हो सकती है। तो चलिए आपके लिए कैप्रिकॉर्न, कुंभ राशि आपके लिए अक्वारियस, इस सप्ताह आत्मविश्वास बनाए रखना जरूरी रहेगा। सरकारी मामलों या जरूरी फैसलों में राहत मिल सकती है। बिजनेस में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। नौकरी करने वालों की नई जिम्मेदारी मिल सकती है। हल्की सर्दी जुकाम परेशान कर सकता है। तो आपके लिए कुंभ राशि अक्वारियस। अंतिम राशि आपके लिए मीन राशि पाइसेस, पिछले कुछ समय से चल रही परेशानी धीरे धीरे कम हो सकती है। परिवार के साथ जरूरी बातचीत होगी। कामकाज में आपकी मेहनत का असर दिखेगा। हालांकि खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट संभाल कर चलना जरूरी रहेगा और शरीर में कमजोरी और थकान महसूस हो सकती है। जी हाँ, आप जो है खर्च बहुत ही ज़्यादा कर सकते हैं ये इस हफ्ते में, इसलिए बचत जो है संभाल कर चलना ज़रूरी रहेगा। शरीर में कमज़ोरी और थकान महसूस हो सकती है। तो अंतिम राशि मीन राशि पाइसेस आपके लिए। ये सप्ताह और आपका भविष्य इस कार्यक्रम का समय पूरा हो चला।

तो चलिए श्रोताओं, सुबह सवेरे 6 बजे से आप लोगों का साथ, बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों का जन्मदिन है आज, चलिए कुछ नाम हम जोड़ना चाहेंगे इस कार्यक्रम में। आज है पूनम का जन्मदिन और ढेर सारी शुभकामनाएं जो है उनके पति जय की तरफ से। बेटा है अभिषेक, मौसी मीला है, न्यूगॉर्क की रहने वाली है आपकी मौसी मीला। साथ में है श्री शंकर परिवार, जोलिम परिवार और राम परिवार। तो ढेर सारी शुभकामनाएं पूनम को, आपकी लंबी उम्र की कामना हम करते हैं एमबीसी की पूरी टीम की तरफ से। और हमारे साथ इस समय प्रेमा सन्यासी जी है और आपके जन्मदिन पर शुभकामनाएं जो है भेज रही है आपके सभी बच्चों की तरफ से। आपके बच्चे हैं, आप हैं सिमी और मीला है, राजा है, राजेश है और दो दामाद भी है और दो बहुएं हैं और छोटे बच्चे हैं 9 और आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, नाती पोते हैं। तो सभी परिवारों की तरफ से, सभी रिश्तेदारों की तरफ से, जाने माने दोस्तों की तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको प्रेमा जी। आपकी लंबी उम्र की कामना हम करते हैं, जहाँ भी रहे आप स्वस्थ रहे और अपने परिवार के साथ खुशियाँ बांटे और अपना जन्मदिन ज़रूर बनाए। तो चलिए आपको हम कहेंगे हैप्पी बर्थडे। और साथ में इस समय जो है हमारे साथ में है बुआसन की रहने वाली आप हैं माला जी। माला जी जो है जितने भी लोग आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं उनकी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और शुभकामनाएं जो है भेज रही है हमारे साथ जो है आप हैं रिविया डेजांगी, रिविया डे क्रेओल की रहने वाली आप है साधना जी, जो हमारे साथ काफ़ी समय से जुड़ी हुई है। तो उनकी तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं जितने भी लोग आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं उनके समस्त परिवारों की तरफ से और उनकी तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे साथ इस समय जो है, जी हाँ, हमारे साथ इस समय एक्वारियो की रहने वाली आप है मून जी, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। तो टुडे जो है उन्होंने भेजा है हमें एक व्हाट्सएप मैसेज, आज जो है उनके पापा चांद का जन्मदिन है। तो समस्त परिवारों की तरफ

से ढेर सारी शुभकामनाएं। पत्नी है मोन, बेटा है अभिषेक, साथ में बेटा है अविनाश, बहू है नीलम, साथ में है बहू जिंगरी, उनकी बहू है वैसे उनकी नाती है निया, साथ में है निक्षु, और समस्त फोकियाचन परिवार की तरफ से शुभकामनाएं चांद जी को। तो चलिए उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं, वो हमेशा खुश रहे, अपनों के साथ जो है अपना जन्मदिन मनाए। एमबीसी की पूरी टीम की तरफ से, खास करके बेटी अविशा की तरफ से, अविशा ने हमें ये मैसेज जो है भेजा है। तो चलिए अविशा की तरफ से और आपके दामाद की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं चांद जी। तो ये प्यारा सा गीत है, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुबह से, आप लोगों के नाम ये प्यारा सा गीत है, जितने भी लोग आज अपना जन्मदिन मना रही हैं।

चलिए श्रोताओं, कुछ ही घड़ी में 8:50 होने को है और आप हमारी धरोहर किरण जानकी की प्रस्तुति में सुन पाएंगे, साथ ही साथ एक भोजपुरी गीत आपके नाम। तो चलिए, साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप सभी को हम कहेंगे शुभ दिवस।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ।

0: हमारी धरोहर।
1: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर बरिस 8 और 9 मई के दूसरा विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर टू के दौरान अपन जान गवावे होला लोग और सुलह यानी रिकन्सिलिएशन में योगदान देवे होला लोग के याद करे के दिन है। ये दिन दूसरा विश्व युद्ध में जोन मिलियन की संख्या में इंसान लोग के जान कर रहा उ लोग के श्रद्धांजलि देवे के दिन है। उ लोग के बलिदान के याद करे के भी दिन है। हमने की चाहिए होलोकोस्ट जैसन अमानवीय घटना के और नाजी द्वारा करा गए जनसंहार के कब्बू नहीं भुलाए के और ऐसा घटना फिर से कब्बू नहीं घटी ये बात के भी ख्याल रखे के। ये दिन के घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2004 में करा गया रहा। 8 मई 1945 के दूसरा विश्व युद्ध के जोन अलाइज रहल जोन ओकर साझेदार रहल नाजी के आत्मसमर्पण करके उ लोग ई युद्ध पर विराम दिले रहलन सा। आज के दौर में भी हमने कोविड महामारी जब गुजरल तो देख लीजा कि जब ई विश्व में नफरत बढ़ जाला और अभी देखते जा कि विश्व में और युद्ध चलता और ओकर कौन प्रभाव हुआ था तो हमने के चाहे ई सब बात से सीख लेवे के। हमने सब के चाहना एक दूसरे के लिहाज करके हर एक के आत्मसम्मान से जिए के और अगर कोई पर जीत हासिल करे चाहबा तो वो लड़ाई से नहीं चाहे करे के बल्कि शांतिपूर्ण तरीका से चाहे इंसान के मन पर जीत हासिल करे के। इस बात पर यूनेस्को बहुत बल देवेला। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से शुरू हो रहा और 1945 के समाप्त हो रहा। इस दौरान हर राष्ट्र लगभग छोटा छोटा ग्रुप में वो लोग विभाजित हो गए रहन से कोई यूके के समर्थन करे कोई यूएसएसआर के समर्थन करे उस समय के कोई यूनाइटेड स्टेट्स इत्यादि जर्मनी इटली जापान जैसन देश कुचल के रह गए रहल। ये लड़ाई मुख्य रूप से यूरोप रूस उत्तरी अफ्रीका और एशिया में चलल। ये लड़ाई में लगभग 55 मिलियन जना के जान गल। 70 मिलियन जना वर्ल्ड वॉर टू में भाग ले रहन सा। सोवियत यूनियन इमें 7.5 मिलियन सैनिक के बलि देलक। यूएस 400,000, चीन 2.2 मिलियन, जर्मनी में 3.5 मिलियन सैनिक और जापान में 1.2 मिलियन सैनिक इमें भाग लेलक। इस युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र के गठन होल और एकर प्रमुख मकसद रहल सब राष्ट्र के बीच आपसी मैत्रीपूर्ण भावना और शांति कायम करेगे। संयुक्त राष्ट्र ई बात के ख्याल रखे के कोशिश करेला कि देश देश के बीच के अनबन के घटावल जाए और अंतर्राष्ट्रीय शांति के भंग नहीं होई देवल जाए। संयुक्त राष्ट्र के महासभा मई 2010 के वर्ल्ड वॉर टू के 65वां वर्षगांठ पर ओकर महासचिव ई बुल्ले रलन कि ई युद्ध में कितना जानी नुकसान होलबा ओकर अंदाजा नहीं सकब से लगावे। 40 मिलियन नागरिक के मौत और 25 मिलियन सैनिक के मौत जेकर में से आधा खाली सोवियत यूनियन में रहल। हमने के चाहिए हर हाल में ऐसा स्थिति फिर से कब्बो नहीं उत्पन्न हुई ई बात के ध्यान रखे के। कार्यक्रम के ध्यान से सुनला बहुत धन्यवाद। नमस्ते।
0: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
2: तो चलिए श्रोताओं, एक भोजपुरी गीत आपके नाम हम करेंगे। कुछ ही घड़ी में 9 बजने वाले हैं, समाचार पढ़े जाएंगे। समाचारों के उस पार आपके लिए आज की चर्चा कार्यक्रम नीतूषा की प्रस्तुति में। 10 बजे हम फिल्म में रहे हैं भक्तिधारा कार्यक्रम को लेकर। आप सभी को हम कहेंगे शुभ दिन।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिलाते चलिए, सुबह के ठीक 9 बजे हैं। सुद्या संक्षिप्त समाचार आपसे गीता, नमस्कार आपको।
2: नमस्कार नितुषा, सभी को हमारा नमस्कार। खबरों में आपका स्वागत है। ये एक ऐसा आयोजन है जिसकी घोषणा केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो और उनके फ्रांसीसी समकक्ष इमानुएल माको ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के दौरान की थी। 2 साल बाद अब 30 से ज़्यादा अफ्रीकी देशों के राष्ट्र नेता और सरकार प्रमुख इस सोमवार से केन्या की राजधानी नैरोबी में आयोजित होने वाले अफ्रीका फॉरवर्ड समिट 2026 में एकत्र होंगे। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम भी इसमें शामिल होंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री विशेष रूप से 12 मई के कार्यक्रम में भाग लेंगे, जब सभी नेता विभिन्न गोलमेज बैठकों में हिस्सा लेंगे। इसके दौरान ठोस प्रतिबद्धताएं की जाएंगी ताकि समानता पर आधारित एक नई फ्रांस अफ्रीका साझेदारी को मजबूत रूप दिया जा सके। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम कल रात नैरोबी पहुंचे। वे अफ्रीका फॉरवर्ड शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, जो अफ्रीका और फ्रांस के बीच साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से एक रणनीतिक मंच है। जोमो केन्याता हवाई अड्डे पर पहुंचने पर केन्या के स्वास्थ्य मंत्री अडेन डुआले ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने राष्ट्रसंघ महासचिव अंटोनियो गुटेरेस से भी संक्षिप्त मुलाकात की, जो स्वयं भी केन्या में मौजूद हैं। पुर्तगाली राजनयिक ने इस अवसर पर मॉरिशस की सराहना करते हुए उसे एक आदर्श और उत्कृष्ट देश बताया। अपनी ओर से डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने अंटोनियो गुटेरेस के साथ अपनी मित्रता को याद किया और हमेशा मॉरिशस की मदद के लिए तैयार रहते हैं, उन्होंने ऐसा कहा। डॉक्टर नवीन राम गुलाम की देश में अनुपस्थिति के दौरान कल शाम से आर्या नावामागी कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पद संभाल रही हैं। ये मॉरिशस के इतिहास में पहली बार हुआ है। और विदेशी खबरों में फ्रांस के प्रधानमंत्री ने कहा है कि एमवी होंजियस के 5 यात्रियों को अगली सूचना तक पेरिस में क्वारंटीन में रखा जाएगा। ये फ्रांसीसी नागरिक उन 90 से ज़्यादा पर्यटकों में शामिल हैं जिन्हें रविवार को डच जहाज से घर वापस लाया गया। ये जहाज सुबह होने से पहले कनारी द्वीपों के तट पर लंगर डाले हुए थे। इस जहाज पर यात्रा करने वाले 3 यात्रियों की मृत्यु की पुष्टि हुई है, जिनमें से 2 के वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
0: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: आज की चर्चा।
1: आज की चर्चा कार्यक्रम में आप सब लोगन के स्वागत बाटे। प्रणाम नमस्ते सब कोई के। लंदी के दिन हाथ अच्छा एक घंटा के इस सफरवा में आप सब के शानदार स्वागत बाटे। और हमेशा नियन लंदी के दिन हमनी चर्चा करी ला जा खेती बाड़ी के बारे में। और आज हो हमनी यही पर चर्चा करब जा बायो फार्मिंग। कभी सुन ले हुआ बायो कुंची हाँ हमेशा प्रताप जी आज नए आल हवन बल्कि एगो दूसर मेहमान आल हवन एक्सटेंशन ऑफिसर हवन फागे दने से संजय शंभू। तो चला आज यही टॉपिकवा पर हमने चर्चा करब जा। सबसे पहले इनका स्वागत करी ला जा। संजय जी तुहर स्वागत बा। नमस्ते।
2: नमस्ते निशा। जितना कोई हमने संगे जुड़ा लवन सा उन लोग के बीच नमस्ते।
1: तो चला आज ये जो टॉपिकवा है बायो फार्मिंग एकर से आगे तनी सुन। हमने जब देखा था जब दुनिया में कौन चीज हुआ था वॉ होता लागेर हुआ था दूसर दूसर जो देश बा वो लोग लागेर करत हवन सा लेकिन भरती जो दुनिया बाते संसार बाते वो सूफिया करे था। तो जब ऐसा सिचुएशन आ जाला तो हमने छोटा देश है सा और हमने के जो नेपाक ऊहू हमने महसूस करी ला जा। जब बायो फार्मिंग के बात करे थे जब बायो माने कि जैविक माने कोनो रासायनिक पदार्थ नहीं तो ऐसन में हमने सबसे आगे आगे हमने बढ़ब जा बायो फार्मिंग के जो लाभोताज बाते। लेकिन अभी जो सिचुएशन बाते दुनिया में एकर से खेतीहर लोग के कौन मुश्किल हुआ था।
2: तो जैसे बोला बाहर में जो अभी वेस्टर्न एशिया में जो अभी समस्या बाते तो आज देखो हमने के ज़्यादातर जो कृषि हमने यहाँ पर मॉरिशस में करी ला जा तो ओकर में ढेर ऐसा रासायनिक पदार्थ के प्रयोग होला।
1: काहे कि हमने ऑटो सफ्यूजा तो नहीं है सर हमने ढेर चीज मंगाए ला जा बाहर से।
2: हाँ लेकिन हमने जैसे बोला सर फ्रेश वेजिटेबल्स लेकिन फ्रे में
1: ओकर
2: में
1: ऑटो सफ्यूजा
2: है सर। हाँ लेकिन एक वो चीज़ है जैसे ग्रास एक ऑफ सीजन में आलू प्याज वगैरह और एक वो फ्रोजन चीज बा वो मंगाए ला सर। मैं जो जो प्रश्न पहले वो पूछला तो हमने के जो कृषि यहाँ पर होला ज़्यादा तक ओकर में रासायनिक पदार्थ के प्रयोग होला
1: जी
2: जैसे कि फर्टिलाइजर बाते रासायनिक खाद बाते पेस्टिसाइड्स बाते और बहुत ऐसा बीज के प्रयोग कैला सा जो ओके हमने पोते कैला जाता है। जब तीन को चीज़ देखब बीज खाद और पेस्टिसाइड्स देखब तो हमने के कृषि एक पर बहुत निर्भर करेला।
1: तो तुहर से अभी पूछती जब पेस्टिसाइड्स बोली ला जा जब फर्टिलाइजर्स बोली ला जा कौन डिफरेंस भाई में।
2: फर्टिलाइजर यानी कि वो खाद है। खाद में ओकर में एलिमेंट न्यूट्रिटिव रहेला
1: जी
2: कैसे

0: NPK, potassium phosphate,
1: nitrogen,
0: nutrients, mineral nutrients lah mm-hmm. kami. Ta u diwala mati me sakila mati utna badhiya nahi hui.
1: Ji.
0: Ta okay supplement kare khatin dal dala okay jame jod mili hai khai ke mili.
1: Ji.
0: Ta okay ise ganchi badhi. Pesticides ke prayog u kira kitanu vagaira se lipte khatin hola.
1: Ji.
0: Ta go bimari hol ta fungicide ke prayog hoi ego ego agar ego maru pilwa bate ta ego insecticide ke prayog hoi maru ghas la ta herbicide ke prayog hola sakala research jo kare lekin
1: जस्ती सबसे हाँ जी जी तो जितना जना हमने के देखा था वा जा लाइव है जा रेडियो पर टीवी पर फेसबुक पर भी तो कोई प्रश्न रही हमारे सामने से संपर्क या किया जा 402-8-4-02-8-8-5 पर फोन करिया हमने के आज के मेहमान हो श्रीमान संजय शंभू और हमने बताया था जा बायो फार्मिंग तो बायो फार्मिंग कौन सी है
0: अच्छा आज एगो कृषि कौन एगो कृषि लेप्स खेती बाड़ी लिप्स तो ऐसे एक सोच कर कि हाँ खेती बाड़ी में एक को रासायनिक पदार्थ के प्रयोग नहीं करत हो
1: जी
0: तब हम बोला जे ये बायो फार्मिंग हो गल क्योंकि रासायनिक नहीं बाय करमे
1: तो ये संभव है
0: बिल्कुल संभव है तो एगो एगो एगो खेती बाड़ी करब घरे अपने से इस पापन अपन खेत में अपने से बीज निकल ले और बीज के ओके रासायनिक पदार्थ से ट्रीटमेंट निकल ले हो एगो दूसरा चीज कंपोस्ट या फिमिया के प्रयोग कर ले हो अपन खेती करे खातिर तो वही से माटी के बढ़ियार कर ले हो तो खाए के तो मिल गल
1: जी
0: अब बातें समस्या आज हुई पिलुआ के या बीमारी के तो तब भी एक आध गो चीज बातें जैसे लाथाप सा कब सा करिए जैसे आजकल ढेर ऐसा पेस्टिसाइड बातें ओके बोला सब बायो पेस्टिसाइड
1: जी
0: ओकर भी प्रयोग सकल लाए करे और नेचुरल फार्मिंग में एगो खासियत बात है कि चाहे ला तोहरा अपन जो पर्यावरण बा ओकर भी तैयारी करे के एगो बायोडायवर्सिटी से
1: जी
0: तो आज अनेक प्रकार के जब पेड़ पौधा जब लगेबा जो फुलाला और मनुकिल्छे नहीं करब एगो जीवैसिते के रोपाई करब तो अपने से बीमारी जो कीड़ा रहेला ओकर ओकर जो फ्रेशो रहेला कम हो जाला
1: अच्छा
0: तो लिपटे के आसान रहेला तो इस प्रकार से जैसे हम थोड़ा उदाहरण देनी एक में हम रासायनिक पदार्थ के प्रयोग नहीं करनी तो खेती बाड़ी हो जाला हम ऐसा अनेक अनेक खेती हर लोग के जानी ला
1: जी
0: जो रासायनिक पदार्थ के प्रयोग बिल्कुल नहीं कैलन जा नेचुरल फार्मिंग कैलन जा उसी से गुजारा सब हो जाला
1: संजय जी आजकल हमने बायो फार्मिंग की बात करे थे जैविक खेती की बात हमने करे थे जा और ढेर जना एकरा अपना ले हवन पर हबी ले कई जना खेतीहर हवन जा जो ढेर पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते आवत हवन बोला था ना चाहेला इस्तेमाल करके हमेशा प्रताप जी जब आवेलन बोलेलन जो पेस्टिसाइड बातें जो रासायनिक पदार्थ है वो चाहेला लॉस्ट ऑप्शन रहे कि जब कोई ऑप्शन नए रहेला तब ऐसा सिचुएशन जो आगे रहर और हबी जो बातें सुन ओकर बारे में बताओ
0: जना तो संसार जैसे चलेला एगो फैसिलिटी के जब फैसिलिटी मिलला तो सबको गन्ला हवे में चलते जाला
1: जी
0: कैसे तोहर तोहर घर में आजकल टीवी बातें लगल बा लिविंग रूम में लड़का लोग के टैबलेट सब मिलता मोबाइल फोन मिलता तो कहाँ जाके बाहर खेले के खेल कूद करे के तो बैठल वहाँ सोफा में टीवी देखा लाता या फिर टैबलेट मोबाइल पर हवन जाता एगो एगो फैसिलिटी है लावी में जब एगो फैसिलिटी पर जला तो हवे जब पकड़ ला सा नहीं खुजला सा छोड़े के तो ऐसे ही हम इतिहास में जाता है
1: जी
0: जब शुरू में हमने के पूर्वज जो कैसे खेती बाड़ी का तलन जा तब रहल रासायनिक पदार्थ नहीं रहल होता हल ना तो होता हल तो एक में कौन चीज हो जब बड़का बड़का जो लैबोरेटरी लोग बा कंपनी लोग बा आइलैंड सब बोलन सा दिखा तोहर खेत में है जो कीड़ा कीटाणु भाते तोहर तोहर सब्जी के ओके
1: ओके चला मोय के
0: हां तोहर सब्जी के गाते करता उतना तोहर पैदावार ने बाते तो चला है प्रयोग कर तब देख पा सब चीज निमन से जैसे बोलन सा जोली जोली खूबसूरत रहेला तो ऐसे ही शुरू हो जैसे कि दूध के

0: ता दूध के आए दूध जब प्रयोग करते हैं फ्रेश मिल्क
1: जी
0: तो कर बाद मार्केटिंग से आल के देखा पाउडर मिल्क बातें सक बचा अनेक हफ्ते व महीना तक रखे तो कहाँ जाए बस फ्रेश मिल्क रखे
1: जी
0: हाउ के प्रयोग कर तो हयो के पा सेम थिंग पा गई हो जब ई आल तो जब किसान लोग जब एक प्रयोग कर लन स्पष्ट बात है कि जब दल्ले हो जब पेस्टिसाइड्स तो जितना पिलवा रहा तो सब में तो मरले चल गए ना तो अब हमने के जो सब्जी लोग कहता तो बहुत
1: बढ़िया
0: बढ़िया बढ़िया नहीं बोलब चूली लोग कहता ऐसे बोलब खूबसूरत लोग कहता एक बार बाद में फिर से अब भाई बढ़िया बात है कि नहीं तो ऐसे ही शुरुआत हो तब ऐसे जब एगो फैसिलिटी में जब अपनी पड़ गल तो कहाँ हो लताब डाले के कहाँ अनेक तरह के रुपाई करे के कहाँ बायोडायवर्सिटी देखे के ये सब गते गते मरे लगल
1: जी
0: क्योंकि हमने हमने बहुत है जब रासायनिक पदार्थ बातें ओकर पर निर्भर करे लगनी सब तक हमने बोला जैसे बाकी दोषी बाकी नहीं दोषी बा सबको एक हमें दोषी बा हम यो दोषी हैं सर क्योंकि हम यो बोलने से देखा
1: प्रयोग कर सुविधा देख लग
0: लेकिन अब ऐसा नहीं को सिचुएशन में आ रहे सर स्थिति में आ रहे सर कि अब हमने के लौकेला कि जो आगे बोलते नहीं जा निमन बातें आजकल है नया जहाँ जो रिसर्च होता था बुलाता एक में देखा समस्या बातें एक आध गो पेस्टिसाइड बाकर में जानी ला सा से कैंसर हो
1: जी
0: एक आध गो पेस्टिसाइड बा जो नानी ला जब प्रयोग होला तो जन पानी में जला तो पानी में जाके जो जीव जंतु पानी में रहला तो ओके समस्या होला एक आध गो पेस्टिसाइड में माटी में जाके माटी के बंजर बना हुआ था तो ये सब गते गते आवा था तो अब एगो जागृति होता कि देखा है जो रासायनिक पदार्थ बातें एगो क्वेश्चन मार्क बातें उतना से खिलानी मन नहीं हुई तो वो खातिन रासायनिक पदार्थ के ये जानते हुए कि कितना नाशकारी है तो हमने के चला एक प्रयोग अंत में जब जितना हमने योजना बनैली है सर वो योजना
1: नए
0: काम कर लग तब तो एक आदमी के साथ शुरू से वो किसान के चला ओकर माटी के बढ़िया रखे के माटी के बढ़िया रखे खातिर वो खाद से नहीं होला रासायनिक खाद से नहीं होला वो कंपोस्ट फीमिया से होला सबसे अच्छा हमने के गौ माता के फीमिया
1: तो आजकल जो गौ माता के फीमिया की बात करे थे इतना चना के आगे जैसे रहल दादा दादी लोग पोसत रहन जा गाय अब तो कमती बात है अब वो लोग की कहाँ से मिली बुलाई बोल बा तनी सुन कमती वो बात है ढेर चना नहीं करी लन
0: हाई अच्छा बोला तो आगे की तरह के उतना गाय के पोषण नहीं होला तो अब सकम सा गला कंपोस्ट के बोला जिसके निकाले एगो हमने के कैसे बोला एस एम ईज है चला देखे कि खाली गला हमने किसान के ट्रेनिंग कैला सा बोला सा किसान लोग जा आए थोड़ा अपन अपन अपन खेत में कंपोस्ट बनाओ प्रयोग कर जहाँ दूसर दूसर तरह से सोचे कि किसान के खाली गो ओकर ओकर ओकर ओकर एगो वो कर में अकेले नायक नहीं बातें सकेला का मैं हमने के एसएमई पीएमई लोग सब भी उठे जन कंपोस्ट बनाए और एगो चीज बोलती सकेला आज एगो ऐसा स्थिति में आ गए नहीं सर कि है जो फीमिया के ओकर प्रोजेक्शन बात है सकेला को सेवी से सौशलो में गिर जाए आगे जाके क्या पता सरकार बोली देखा हम हमने के चाहला था फीमिया चाहला को उत्पादन करते रहे के तो हमने के चाहला चाहे ऐसा स्टाशन डाले के जहाँ कम से कम थोड़ा तो मिली ना
1: तो जब आसीज वो सब होला ला एग्रीकल्चर के तो ये सब जितना खेती हर वन जा स्टेक होल्डर जैसे बोला था वो लोग आके इस सब के बारे में वर्कशॉप करी लें जब ब्रेन स्टोमिंग होला कैसे
0: हो रहा आसीज तो ये बड़ी सुन रहा शुरू में साल के शुरू में लेकिन आसीज से पहले जैसे बोला सब प्री आसीज के आसीज से आगे प्री कंसल्टेटिव प्रोसेस वो बढ़िया से हो रहा
1: जी
0: अनेक वर्कशॉप हो रहा जहाँ पर 400 से भी ज़्यादा स्टेक होल्डर्स बन लोग आला लंजा और अनेक प्रकार के चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज और सुझाव भी दे लंजा और हम मांग करती कि जितना कोई आज हमने के सुना था तो हमने के कृषि मंत्रालय के ओकर वेबसाइट में सकबा प्रयासिस के गापो डाउनलोड करके पढ़े ओकर में देखबा कितना चीज़ों का मैं बात है
1: तो हाउ जब आसीज वन उ सब होला वर्कशॉप उ सब होला तो जो खेतीहर हवन जा जो किसान उ लोग हवन जा जो आगे से हबी ले काम कर हवन सा और जो फैसे फैचिलीज इस्तेमाल कर लें जब पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर उ लोग के माइंडसेट बदले खातिर कोनो चीज़ करल जाला उ लोग कैसे सोचे लन जा कैसे रेजोने करे लन सा हम एग्रीकल्चर रेजोने की बात करे ला जा तो वो लोग कैसे रेजोने करे लन सा
0: हम एक उल्टा चीज बोला सकेला कोई नाराज भी हो जाए पहला माइंडसेट चला हमने अपने आप के बदले के, सच्चे के भुला जा,
1: सच्चे के
0: अपने आप कैसे बुलाते हैं हम आज फाय के प्रतिनिधि है, तो सबसे पहला माइंडसेट चला हम अपन माइंडसेट बदले के कि देखा हमने ऐसा कब आगे की तरह जाके आए किसान लोग के शिपो दे कि ऐसे करा है रासायनिक पदार्थ डाला वगैरह वगैरह, तो सबसे पहला माइंडसेट अपन के चला बदले के ओकर साथ एगो कलेक्टिव हम है ऑफिशे तो हमारे अनेक जन कोलेग लोग बाँचे सबके कलेक्टिव यानी कि ऐसी चीज़ों के अब माइंडसेट बदल गए तब जाके किसान लोग किसान बोले ना तो एक में अकेले ये हम कह सकते हैं बोले कि हमने कि नहीं चला खाली किसान अकेले ओकरे चला ये मार्ग लेके कि तरह तोरा चला ऐसे करे के नहीं, किसान के साथ साथ हमियों के बीच चला ओकरा साथ चले के देखे कि कैसे कौन सुविधा देब सा कौन बटल नेक पाते कौन समस्या पाते ओके सुधार आने के सकेला पॉलिसी में हो सकेला लॉ में हो सकेला कुछ में हो तो साथ साथ चला जा लेके चले ताकि हो खेती बाड़ी के जो बोलब सा फार्म टू फोक कैसे लासीज में देखें सा फार्म टू फोक लेके कहाँ कहाँ कुंची कुंची हमने के लोग ताकि चला समस्या के समाधान के हो सब चला करके साथ साथ।
1: ये सच्ची बात बोले हो क्योंकि काय की जितना हमने चीज खाए ला सा खेत से निकल कर हमने के लाकू जिन में आवला माने कि हम सब को सुमाते हैं ऐसा तो एगो साइकिल जिन बातें हमेशा हमने बात कर ले जा है वो जिन साइकिल वो बातें घूमते रहे ला हैजा से शुरू हो के लाकू जिन में आके फिर से तो चाहे ला जैसे बोले हवा नहीं खातिर खाली नहीं जिन खेती हर हवन जा किसान लोग हवन जा सब कोई चाहे ला हाथ में हाथ डाल के आगे बढ़ के तो हमने के साथ जुड़ल हवा यह आज के चर्चा कार्यक्रम हमने बायो फार्मिंग पर बतियात है जैसे कुछ हो पूछे के बातें फिक्र न करिए 402 84 82 8085 पर हमने के फोन करिया।

0: आज की चर्चा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद हमने संगे जुड़ल हो आज की चर्चा कार्यक्रम में। और हमने बात कर रहे थे जा बायो फार्मिंग तो देख ला उकर इतिहास कैसे रहा। आज हमने 2026 में है जा और बायो फार्मिंग के जब हमने चर्चा करी ला जा ढेर जन किसान हवन जा ढेर हमने कोसुमाते है जा हमने सब एकर से कोसैने है जा। और एक पर चर्चा करे खातिर हमने संगे हवन प्रिंसिपल बल्कि एक्सटेंशन ऑफिसर फागिद अनेसे श्रीमान संजय शंभू। तो शंभू जी हमने बात कर रहे थे जा फूड सिक्योरिटी के बारे में। अभी जन फॉरेस्ट वेस्ट में अभी जन लड़ाई सब हुआ था ओगर से भर्ती संसार जैसे बोली वो सब हमने अफेक्टिव हुआ था ऐसा पर है जो लागे जो हुआ था अभी हमने के कौन लाभ होता है। हमने एगो छोटा देश है जा हमने कहाँ दूर है ऐसा पर एकर प्रभाव पड़ेला कौन लाभ होता है हमने के।
2: हाँ आश्चर्य के बात बात है कि हाँ लाभ होता है।
1: हाँ जहाँ लोग लड़ाई करत हवन सब पर हमने के कौन लाभ होता है कैसे।
2: तो ऐसा स्थिति में तब हमने के पड़ेला जागे के जागृत हो के कि देखा जैसे करत नहीं सब त सकेला निमन से जन सीमा ले लें ऐसा जन रास्ता ले लें ऐसा नहीं छा बातें आप चलना कोई दूसरा रास्ता अपनाए के कैसे कि जैसे शुरू में बोले लेने चलना कि हमने के जन खेती बाड़ी बातें ज़्यादा तक रासायनिक पदार्थ पर निर्भर करेला तब केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स और हाइब्रिड सीड्स जो बातें होकर आयात करेला सब तो आज देखब जा हमने के मन बा अपन पैर पर खड़ा हो के हमने बोला सा शुरू में बोला ऑटोसुफिशियंस बोला तो ऐसे ही नहीं बोला हमने के मन में हम बोला रेजिलियंस हमने के मन में रेजिलियंट हो के तो हमने के चाहला हाई सब पर निर्भर नहीं करे के
1: जी।
2: तो अब कैसे निर्भर नहीं करब सब तो केमिकल फर्टिलाइजर चल हमने के ओके ओके कम प्रयोग करे के पेस्टिसाइड्स कम प्रयोग करे के बाहर से बीज कम प्रयोग करे के तो यहाँ पर ही हमने के चला अपन जो बीज बातें लोकल लोकल बीज जो बातें
1: खुद
2: खोजा करे के हमने के यहाँ पर जैसे कंपोस्ट रही फिमिया रही तो हमने उतना केमिकल फर्टिलाइजर नहीं प्रयोग करब जा। और जैसे बोली अनेक तरह के तरीका बातें योजना बातें जैसे लाथाप या अपन से कुछ पत्ता वगैरह जीवन मित्रम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग द्वारा सकब जा अपने तैयारी करे ताकि सकब जा पिलुआ सब के सामना करे। तो इस प्रकार से हम अपन पैर पर जस्ती खड़ा हो सा और बाहर से बाहर पर निर्भर नहीं करब सा।
1: तो हैजा जब बात कर रहे थे तो हम के फिरों से याद आ गल कोविड जिसने जब आ रहा तो हमने कौन सी नई सीखले हैं ऐसा कैसे अपन जो घरे कैसे खेती बाड़ी होला छोटा छोटा जो चीज रहल हमने ओकर वाले माटी के मोल जैसे हमने बोली रहा सा ना ओकर जो वाले हुआ वा हमने जनली जा सीख ली जा। तो हयो हबी जन सिचुएशन आल बाटी भर्ती संसार में एगो सकेला एगो मौका हमने के फिरों से मिलल हमने भूल गए रही सा हमने के सकल सकब सब बोले कि हाँ कोविड चल गल सब कुछ निमन से हो गल अब जन सिचुएशन वहाँ फिर फिरों से आ गल बा हमने नहीं जाने थले नहीं जानब सा आगे कौन चीज हुई काल कौन चीज हुई नहीं जाने थे सा। तो अभी चाहे ला फिर से हमने के अपन गोर पर खरा ठरा हो कि जैसे कि बोलत हुआ और जब हमने गत महीना एक दो महीना हो गल बात हमने माटी के मोल कार्यक्रम कर लीला ऐसा माधिगुन माने कि फ्री आप के बारे में प्रताप जी एगो किस्सा बोले रलन कि जब एगो छोकरा एगो छोकरी के बाप जात ललन छोकरा लगे ओकर से पूछे तुर लगे माधिगुन बातें वो बोलक का है बोलक कि जे बात और लगे

0: कोई आपे तो हमर बेटी वो भूखा नहीं मरी तो एगो एगो एगो एग्जाम्प है पर जब सोचबा तो इस सच्ची बात है आगे को जुन जुन चीज रहल आज तक डेवलपमेंट हुआ था टेक्नोलॉजी के बात हमने करा था ऐसा तो सब कुछ जब बदलते जात बातें पर नहीं चाहेला भुलाए के कि ये सब जो न फूड सिक्योरिटी जो चेन बातें चाहेला वापस रिस्टोर करे के
1: बिल्कुल बिल्कुल ता कोविड में जैसे बोला बहुत चीज कोविड से मिला सीखे के और बहुत कुछ कर लीजा के खेती नहीं करता अचानक देखे के नहीं करता
0: जी
1: ऐसे अचानक देखे के
0: बड़का बड़का जिन आदमी ऑफिस में ब्यूरो में काम कर रहा था ललन जा वो लोग कबो माटी के नहीं छोड़े ललन सा आज देखा अपन काम करे था काम करत हवन सा ब्यूरो में अपन माटी के संभालत हवन चाहे जिन माटी के मोरवा बा चाहेला हमेशा याद रखे के
1: फिर कुछ बोल हवे जन आगे में बोलनी फैसिलिटी तो एगो फैसिलिटी में जब पढ़नी सा तो मैं गिर गई नहीं सा ऐसे बोला गिर गई नहीं सा जब गिर गई नहीं सा तब मैं देखा था तब मिला था कुछ चीज आप करी ऐसे बोला ना तब भुला गई नहीं सा तभी मौका मिला लबा वेस्टर्न एशिया में जो आई समस्या बातें तो आज ये भी भुला गई नहीं सा तक आगे जाके गन लगे गो थोड़ा गया मोजाल हो या फिर एक दूसर परिस्थिति आए तब कुछ करब जा तो यही मौका बातें कोविड के हमने के जो एक्सपीरियंस मिला अनुभव जो करनी जा और आज जो होता तो हम बोलती थे मौका ने गवाए के चाहे हमने के पैर पर खड़ा हो के फुयापा के बात बोला हम ओकर से एगो थोड़ा एगो जैसी दूर के चीज बोलला शुरू में बोला ओतो से विश्वास आलिम होते तो एक आध गो चीज हमने जो आयात कैला सा ओकर में बातें हमने के गेहूँ आटा तो इसे हमने के इम्पोर्ट बिल भी ज़्यादा रहेला तो फुयापा से सकप से हमने आटा बनाए
0: अब तो बना हुआ जाता
1: हाँ लेकिन उतना क्वांटिटी में नहीं मैं बनाता हूँ फुयापा से सकप सा बनाए बतात से बना सकप बनाए मान्योक से सकप सा बनाए
0: जी
1: हमारे देखे में सकप जा जो व्यूलेट बिला सा उकर से भी बनाए अब देखा आज हमने एक प्रोडक्शन आज एगो कंचने में करती सा हमने के देश में एगो कारखाना चलत जो एक प्रोडक्शन बड़ा मात्रा में करत तो ये हमने के जो हमने गेहूँ आए के आयात के लासा ओके कम कर दे
0: जी
1: सब नए चला 20% ही करती जा
0: तो हमने यही आशा कर रखा है सर कि अभी जितना जाना सकेला सुनत होवन आगे हमने मोरिंगा यानी कि मुगुंग के बारे में हमने खाली बुयो पकार बनावत रही सा छोंकत रही सा आज देखा मोरिंगा के लापूत बनता चाय बनता ढेर चीज बनावल जाता तो जैसे बोले हवा भाई संजय तो काहे न सकेला ढेर अभी जो इंडस्ट्रियलिस्ट होवन जा ढेर जना होवन जा सोचत होवन जा कौन चीज चाहेला करे के जो आगे के बारे में हमने सोचब जा तो हाँ अभी आज तक मान्योग के बारे में गत हला हमने बचैली सब मान्योग के आटा बनाता फुयापे के आटा बनाता बेतराव के हमने बतात के पाँच छः गो वॉइते हमने देख ली सब कौन ची नहीं बनावा जाता तो ई मार्ग पर जे हमने हबी नहीं सोचब चा तो हमने पीछे रह जाब सा
1: ना बिल्कुल बिल्कुल चाहेला और एक में एगो एगो एगो एगो समय रहल कैसे जब एगो आदमी बोला मान्योग खा बतात खा
0: जी
1: तब सकेला ओकर में तनी सुन शर्म जुड़ल रहल तो हम एगो छोटा आदमी है बतात खा मान्योग खा हम आज जो स्थिति में है सा जो जो साल में है सा 2026 में तो सर जितना रिसर्च बा कहूँ कोनो नजरिया से देखब सा तो देखब सा कि जो बतात बा जो ज्वेलित बा जो फुयापे बा एक में जितना एलिमेंट न्यूट्रिचिव बात है एक एक खाब सा तो हमने सौ वाला जस्ती निमन से हमने के सेहत वो भी रही
0: हमने के पूर्वज हमने के दादा दादी लोग यही खात रहलन जा और कितना हेल्दी स्वस्थ रहलत रहन जा आज तो हमने ये सब चीज कमती हुए खात है ऐसा जितना जंक फूड बा हव के पीछे जैसे बोले तो वह फैसिलिटी जोन फैसिलिटी मिले तो हमने खात है ऐसा पर यही जो न फूड जोन बातें बातात बातें जो न मान्योग बातें ये सब खाब सा एगो चटनी मिल जाए तटका मिल जाए वी करके खाब सा तेने सो दूध में डालब सा तो चाहे ना हव जोन कुलचौवा बातें हाँ। फिर से हाँ, चाहे
1: लेकिन लेकिन एक में फिर से हो जब माइंडसेट तो माइंडसेट तो हमेशा बदलाव आने की तो हम थोड़े से मांग करती शायद अगले सप्ताह पता नहीं कब सकबा दादा शायद कोई के बुलाए यहाँ पर ही जो एक न्यूट्रिशनिस्ट हो सकेला वो यहाँ पर ही चर्चा करी फुयापा में

0: बतात में मानयुग में
1: कुंची कुंची
0: बातें ऐसे हमने के जो नागरिक लोग बातें सब सुनी ग्राहक लोग बात सुनी तो हाई जन सा खरीदे
1: तो हम यही आशा कर रहे थे और ढेर जना जाने लन आजकल तो ऐतरन बातें जो चीज खोजबा ओकर बारे में तू जान जाएबा ढेर जना जाने लन सफर इन्यो हो तनी सुन हो जालन जा ना ई के खाए अभी दूसर खाईवा के मिलता फैसिलिटी जैसे हमनी
0: बार बार
1: फास्ट फूड मिलता जंक फूड मिलता सब कुछ लेता नई बातें नहीं चाहेला लेता निकाले के और इस सब के बारे में चाहेला और वहाँ जो नवा जेनेरेशन हुआ हुआ था उन लोग के चाहेला सिखाए के
0: चला तो ये विधि जैसे चलेला जितना चीज में गो श्रम रहला एगो जेफो पया डाले के हवे हमनी के जो बुद्धि बातें उन्ना ही खुश रहला बस यानी कि बुद्धि आलसी रहला समझा तो जितना चीज मारू रहला जैसे फास्ट फूड जंक रहला वो हमनी के बुद्धि बोला जैसे बा चला हाई खरीद के खाए तो ई सब में चला एगो बदलाव आने के
1: चला बुद्धि के ब्रश न करैया हम एगो जना हवन उनका से हमनी बचाए ला जा हेलो हेलो
2: टाइम के अंदर
3: जी नमस्कार
1: नमस्ते जी
3: मैं हम पहुंचे थे यदि मान्यु तो सब यदि खा लेता है मांगूस की कौन सी खा लेता तो कैसे बने
1: नमस्ते चाची तो चाची बोले हवन ओ मान्योक प्लांटले हवन जो काजिनी के चूहा मंगूस सब कुछ खाते
0: हैं बंदर
1: बंदर कहाँ से हवा चाची
3: सेवास्तोपोल
1: सेवास्तोपोल से
0: चाची नमस्ते
3: नमस्ते
0: सबसे पहला तो जानना चाहने के कि समस्या कहाँ या होता मंगूस या होता कि बंदर से होता
3: नहीं बंदर नहीं नीचे कोड़ के खाता
0: नीचे कोड़ के खाता
3: मांगूस वे होई मको
0: अच्छा तो अभी हम के है ई जन मंच में है हम कठिन रही बोले के हम तोरा बलती सेवास्तोपोल के एरिया के ओकर एक्सटेंशन ऑफिसर फ्लैक में बात है ओकर दफ्तर हां
3: फ्लैक
0: हां एको जाके वहां पर ही ओकर से ओके जनैया
3: एको कोन
0: सही म नहीं ओ सीवी करी तोर खाते हां
3: हां
0: निश्चिंत रहिया ओ सीवी करी जाके वहां पर ओके जनैया
3: आले
1: अच्छा
3: धन्यवाद
1: अच्छा जी बहुत बहुत धन्यवाद जी कुछ और पूछे की बातें हमने के फोन करिया 402-80-85 402-80-85 तो भाई संजय हमने के बतावा जब बायो फार्मिंग की हमने बात कर रहे थे जा एक स्टेप्स कौन सी है
0: सबसे पहला हम बोलती चला नकल नहीं करेंगे एगो एगो खेतीहर जो दक्षिण में बातें तू उत्तर में हो तो तू गला दक्षिण में वो खेती बाड़ी करता नेचुरल फार्मिंग के तो वहाँ से नकल करके नहीं आनिया
1: तो जब नकल करके बोला था तब बायो फार्मिंग हुआ तो वही है अब ओकरा देख के धरला हमार वाजह बातें वो करता बायो फार्मिंग अब हमरो मन बा तो ओकरा देख के तो हम करब
0: नहीं पड़ोसी और दूर में जे बा ओकर में अंतर बातें ओकर में आयला नेचुरल फार्मिंग ज्यादा तक निर्भर कहला तोहर पर्यावरण पर तोहर बायोडाइवर्सिटी में कुंची बा तोहर इलाका में हुआ पड़ी सकेला कुछ प्रकार के अच्छा जीव जंतु बातें जैसे कोक्सिनेल बातें लेकिन कोक्सिनेल तो अनेक प्रकार के
1: बातें
0: ओकर बात नहीं लेकिन हर हर इलाका में कैसे उत्तर दक्षिण या प्लाटू में है तो वहाँ पर ही जन क्लीमा बातें वो अति ने
1: बान
0: क्लीमा बातें साउथ में साउथ में गाना तू उत्तर में रहला तो नकल कर वहाँ के ओकर क्लीमा खातिन ओकर नेचुरल फार्मिंग योजना जन बातें ओकर खातिन अडाप्टे बातें
1: अच्छा
0: तू नॉर्थ में हुआ तुहर दूसर समस्या बातें दूसर चैलेंज बातें तोहर तोहर बायोडाइवर्सिटी जन जन पेड़ पौधा सकेला जन उगेला ओकर ओकर अलग
1: में दूसर दूसर हाँ
0: तोरा चला अपन बाज बनाए के
1: अच्छा
0: सबसे पहला चला अपन बाज बनाए के फोंडाशों करे के पहला है सबसे पहला अपन माटी के बरियार करे के ये सगरो दक्षिण में भी उत्तर में भी कहूँ पे रबे चला ई पारे रहे
1: चाहे वो खुला मैदान में रही शेल्टर फार्मिंग वो में रही
0: शेल्टर फार्मिंग लेकिन माटी में जो होता है
1: जी
0: हाइड्रोपोनिक के बचाते हैं तो सबसे पहला है माटी के चला बरियार करे के और माटी के बरियार करे खातिर 50 गो सोल्यूशन है
1: जी
0: एक गो है चला माटी में माचे ओगानिक आने के
1: जी
0: माचे ओगानिक के जो लाशु

0: look at source bate, the bate compost, the segi compost, ya fimia, ubi, gai ki fimia sabse.
1: Best part.
0: Best part.
1: तो हबी तो हसे पूछती जब बायोफॉर्मिंग जो माटी के बरियार की बरियार बरा बुलत हुआ तो धरला हम आगे इस्तेमाल करत हली पेस्टिसाइड अब हमार मन बदल गल बाते अब हम करब बायोफॉर्मिंग तो कौन चीज चाहेला करे के माटिया के कितना बरिस कितना महीना चाहेला स्प्रे करे के मटिया के प्रिपारे करे के जमे बायोफॉर्मिंग हम करब
0: हम इस सब झमेला में नहीं पड़ती देखा तू अपन खेती बाड़ी में परिवर्तन खोजता लाई के ये सब जाना तो जन जाना तीन बरिस आए के तीन बरिस के इंतजार करे के वगैरह ये सब जन लोग सर्टिफिकेशन करते हैं सर तो वो लोग खाते ना चाहते और जे सर्टिफिकेशन भी करता था एक चीज के नाम है ट्रांजिशन
1: जी
0: एक ट्रांजिशन पर एक चीज सर्टिफिकेट मिलेगा तो हाँ वो बातें हम ये सब झमेला में नहीं पड़ती हम बोलते देखा नेचुरल फार्मिंग करा तो कि नहीं कहूँ पर शुरू करता शुरू करा
1: जी
0: सबसे पहला अपन माटी के बरियार करा जो आगे करता वो तब आगे करता ना तब बीत गल ना कुछ सब अपन बदले कुछ नहीं जन जन जन जन अब बा ओकर पर ध्यान करा तब माटी बरियार करा मनोकिलचिया के छोड़ा अनेक तरह के रोपाई करा कैसे हम हमेशा बोला ए बी सी डी ई
1: मतलब
0: ये है मैथनल में सीखा था ए बी सी डी तो लेकिन जब नेचुरल फार्मिंग करब तो लगभग पाँच गो
1: बाईते
0: सब्जी के रुपाई करा तब ए बी सी डी कहाँ वेला कर में तो खाली एगो एगो एगो पौसिल बा ओकर में खाली ए नहीं रोपा तब बी तो एगो छोटा सुन पौसिल बनाओ ए करा तब बी करा तब सी करा तब डी करा तब ई करा तब फिर से ए बी सी डी
1: तो खेत में
0: एगो डाइवर्सिटी होगा ओकर साथ साथ तोरा चला जाने के तोहर इलाका में कैसन पेड़ पौधा होला
1: जी
0: ओकर रोपाई करे के बोझ बनाए के ताकि जन अच्छा ऐसे बातें वो आए जैसे कि कोक्सिनियल बातें वगैरह वगैरह अनेक प्रकार सीएफ बातें अनेक प्रकार के ऐसे
1: बातें
0: सब वगैरह आए तो बायोडाइवर्सिटी के साथ एगो डाइवर्सिटी जन अच्छा बातें वो भी आए खेती बाड़ी जब शुरू कर ले हुआ नेचुरल फार्मिंग के तो अपन लाथाप नहीं भूलिया अब लाथाप अनेक प्रकार की है एक वो है जन सकेला कैसे उदाहरण के उदाहरण दे बताए मुझ डेफुई के हुई
1: जी
0: तो एगो लाथाप डलबा मुझ जो मेलों के तो ओकर फेरोमोन के प्रयोग करवा तो वो आके पकड़ाए दूसर मुझ डेफुई के दूसर लाथाप लेकिन एगो दूसर तरह के लाथाप वो जीवित रहेला जैसे कि हमने के जन पौधा बाते एक आध गो फूल जन रोप तो वो हम फूलवा मारू ऐसे के बुलाई
1: तो
0: हाँ जैसे
1: फ्रिप्सोकर
0: में गेंदा के फूल में ओकर में आए तो तुहर खेत में नहीं जाए तो एक आध गो दूसर के तेरा जैसे आरोमाचिक बातें वो गे पूछे करेला तो आज ओकरो रोप तो अब वो तो गे पूछे करे तो कारो में नहीं आए तो ये सब चाहेला हमने के प्रयोग करता उसकी जो पहला सौ गो जो पांच बातें वो पहला पढ़ी तब ओके हो लागे कि जब ट्रांजिशन सके करे तब वहाँ से कन्वेंशनल से निकल के कौन कौन स्टेप चला करे के जाए के नेचुरल फार्मिंग की ओर गिदाहिकुल सकबर में देख के करे
1: अच्छा
0: गिदाहिकुल एगो एगो पुस्तक नहीं है जो नेचुरल फार्मिंग खातिर है लेकिन सकबा ओके प्रयोग करे नेचुरल फार्मिंग की ओर जाए
1: खातिर अच्छा तो हमने बात करे थे जैसे जो स्टेप्स बातें बायो फार्मिंग के अभी बोला माटी के चाहेला बढ़िया बनाए के
0: बढ़िया
1: और दूसर जो स्टेप
0: अच्छा घर पे जब रहेला तो घर साफ सुथरा रही निमन निमन जन भोजन बा ऊ खाइबा फास्ट फूड नहीं
1: जी
0: जन निमन खाना बा ऊ खाइबा तो तू तंदुरुस्त रह
1: जी
0: तोहरा भी बीमारी नहीं हुई आयल रही तो घर निमन से ठंडा शीतल हवा में गुजरता वगैरह तो अच्छा लगी रहे कि तू तंदुरुस्त रह खेती बाड़ी
1: ऊ
0: भी एगो चीज हम हमेशा बोला हमारे जन जितना मित्र लोग बातें खेती हर लोग हों।

0: माइंडसेट बदली हाँ, और लोग जानियन सा कि एकर इस्तेमाल चाहे वो पेस्टिसाइड हो, बियो फर्टिलाइजर्स हो, एकर कमती हुए इस्तेमाल हो।
1: कठिन रही, क्योंकि जैसे बोला हमने के ट्रॉपिकल क्लाइमेट हमेशा तो
0: जी
1: हमने के जो क्लीमा बातें जो मौसम रहेला गर्मी के मौसम वो जो मारू पिलवा रहेला ओके ओके अच्छा एकन में ओकर ओकर ई ओकर गनला ओकर क्लीमा प्रेफर गया,
0: जी
1: लेकिन असंभव ने बातें जैसे बोली जब सुविधा मिलला तो हमने के बुद्धि जो नेला आलसी हो जाला, कठिनाई में हमने तब पहला श्रम करे के लेकिन सकब सा निकले, लेकिन शुरू में बोल रही अकेले किसान ही नहीं सके करे ना,
0: जी
1: हमने के चला साथ साथ चले के संगे एक एक गो विजो रही सब कोई ओकर में चली तब हाई संभव रही। एगो शुरू में एगो बोलेला हॉग प्लम
0: जी
1: बीटल के नाम ले रहा, तो देखे मैं ऐसे ही उड़ के आ रहा हमारे देखे मैं उड़ के नहीं आलवा ना,
0: जी
1: बहुत ऐसे बीमारी जन रहेला जन पिलवा होला उड़ के ना होला उस अकेला कोई इलीगल में कुछ आलत हुई तो कर में
0: जी
1: हुई
0: हो हाँ
1: अब नहीं डिटेक्टे हुए तब चला तब अब हमनी के जन खेती बाड़ी रहला तब ओके आफिक ओके ओके ओके हानि पहुँचा
0: जी
1: होला,
0: जी जी
1: तब ई सब जब बोला साथ साथ चले के तब ई सब भी चला देखे कि कौन फौजवी भीतर मॉरिशस में आवता कैसे हो के स्क्रीनिंग करते हैं जा एक इस सब एक होलिस्टिक अप्रोच चला रहे के
0: तेरे कंट्रोल होला मिनिस्टर देने से फारी देने से कंट्रोल होला।
1: पुलिस बातें लेकिन चोरी तो चला ना, तो क्योंकि पुलिस चारों ओर नहीं सकेला रहे तो कंट्रोल होला, लेकिन ऐसे होला कि एक आध गो चीज इतना निमन से ओके छुपावल कर पाते कि नहीं लोकल हुई
0: जी जी
1: होला
0: जी
1: ऐसे।
0: जी जी तो बहुत ही जो इ टॉपिक पर बातें बहुत ही इंटरेस्टिंग वो बातें बायो फार्मिंग। और कई जना तोहरा अभी सुनत होवन, कई जना खेतीहर नहीं होवन जा, पर अपन घरे जैसे आजकल हमने जब बात करें कंटेनर गार्डनिंग,
1: गार्डनिंग
0: किचन गार्डनिंग हमने कर ली सा, इतना प्रोग्राम हमने वो सब बचाई ली जा, सिखाई ली जा कि कैसे चाहेला करे के, मान कि रास्ता बा एगो जिक्शो बा, बस चाहेला ओकरा अपनाए के।
1: एक और चीज बोले रहा हम बोलिए बत्याप्स बनने बतैली हाई
0: जी
1: में जोड़ देला
0: जी
1: तू बोले रहा सब्जी बढ़िया बात है
0: जी बढ़िया बात है हाँ
1: बढ़िया बात है, तो जब खूबसूरत एगो सब्जी दिखिला जा
0: जी
1: ओकर अर्थात नहीं है कि वो बढ़िया बातें कालिते के बातें
0: जी
1: सकेला हमने बोलते हैं ओकर में बातें में सकेला ओकर में इतना ले सकेला ओकर में पेस्टिसाइड के प्रयोग कर लेबा उका तीन तरह खूबसूरत लगता। दूसरा चीज एगो एगो चीज जब खूबसूरत इलाके से टमाटर ले लेला जा
0: जी जी
1: एगो टमाटर जो इडोपोनिक में गन्ना बियो ही है
0: हाँ
1: बियो नहीं इडोपोनिक में बियो नहीं है क्योंकि ओकर में रासायनिक फर्टिलाइजर के प्रयोग होता लेकिन गन्ना ओकर में पेस्टिसाइड के प्रयोग नहीं हो पाते, लेकिन एगो टमाटर जो इडोपोनिक में से निकले ला और एगो टमाटर जो बाहर में खेती बाड़ी हो
0: जी
1: बा
0: जी
1: दोनों से आगे उगाए बनेबा तो ओकर में टेस्ट में अंतर नहीं बाते ओकर स्वाद में अंतर नहीं बाते
0: जी
1: बहुत अंतर बाते। तो तोरा सचमुच आज जितना चीज जन हम बोला जितना चीज जन बियो से होला नेचुरल फार्मिंग से उत्पादन होला तो ओकर में को मिठास रहेला
0: जी
1: है कैसे सुसु लेबा काहुत लेबा कोनो चीज लेबा
0: सच्चे के
1: हाँ गोभी लेबा ओकर में
0: और जो
1: ओकर एगो
0: फ्रेशनेस हुआ
1: हाँ एगो
0: बातें वो
1: मिठास रहेला
0: हाँ
1: सकबा ढेर दिन तक ओके रखे काते नहीं होला। एगो एगो एगो मित्र बात है हमारे एगो एगो लाबों के ब्रांच के ओकर मैनेजर वन था हमारे से एक दिन बोलते हैं जैसे देखा हम गए एगो मार्केट में एगो सुफले खरीद ली तो लेके हम मोटर में रख दिली तब गए मगाजे वगैरह घूमे तो जब अली जब दरवाज़ा खोलनी तो हमके पेस्टिसाइड मौका था देखा तो आज हम जितना कोई घरे हवन सा घर पे बाकी और फार्मिंग जैसे बोला सा आज सुनत हुआ जा तो हम
0: जी
1: बोला जी आज तोरा मन रही जाने के कि एगो फौजी जन बियो और जन जिनमें रासायनिक पदार्थ के प्रयोग हो बात तोरा मन हुई ओकर जिफियोस जाने के तो घर ही में भी सक बचा ओकर
0: जी
1: टेस्टे करे कैसे ओकर रुपाई करा जा
0: जी
1: आज जगह नहीं हुई माटी नहीं हुई तो जैसे बोला कंटेनर में माटी भरिया या फिर कंपोस्ट खरीदिया
0: जी
1: टेंशन माटी में ओके
0: मिला से
1: मिलाजी
0: करके
1: कर दिया तब ओकर में सब बचा छोटा छोटा चीज रुपये से जीता
0: जी
1: बातें jaisé laki joyon bate, jaisé celery bate, sakba ja lechi rupe, tab jake ka swad liya, tab apne bolya je jon kharida to oka sange kaise kon antar bate,
0: satisfaction bate,
1: jaha jala kine,
0: ji,
1: ta sakba ja bole nai ham ke chala aisa nai sanchij.
0: तो जो चीज होला उस शुरुआत होला हमनी से हमनी के घरे से
1: हमनी के घरे से होई
0: तो चला आज के चर्चा कार्यक्रम है जे परि समाप्त होला हमनी के मन बातें और ढेर चीज पर बचाए के पर हमनी आगे दूसरा कार्यक्रम में हमनी बतियाब जा बहुत बहुत धन्यवाद हमनी के साथ देला जा और जैसे बोले होवा भाई संजय माइंडसेट चाहेला बदले के तभी हमने आगे बढ़ब जा
1: बिल्कुल
0: तो चला बायो फार्मिंग के अपना इते चला बहुत बहुत धन्यवाद भाई संजय शंभू फागे दानी से और हमने के मिलते रहिया सुनते रहिया नमस्ते शुभ दिन.

0: सुगीता जी नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, सभी को हमारा नमस्कार। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम कल रात नैरोबी पहुंचे। वे अफ्रीका फॉरवर्ड शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जो अफ्रीका और फ्रांस के बीच साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से एक रणनीतिक मंच है। जोमो केन्याटा हवाई अड्डे पर पहुंचने पर केन्या के स्वास्थ्य मंत्री अडेन डुआले ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से भी संक्षिप्त मुलाकात की, जो स्वयं भी केन्या में मौजूद हैं। पुर्तगाली राजनयिक ने इस अवसर पर मॉरिशस की सराहना करते हुए उसे एक आदर्श और उत्कृष्ट देश बताया। अपनी ओर से डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने एंटोनियो गुटेरेस के साथ अपनी मित्रता को याद किया और हमेशा मॉरिशस की मदद के लिए तैयार रहते हैं। डॉक्टर नवीन राम गुलाम की देश में अनुपस्थिति के दौरान कल शाम से आगया नवा मागी कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पद संभाल रही हैं। ये मॉरिशस के इतिहास में पहली बार हुआ है। और कल शिखर सम्मेलन से पहले स्टैटमो यूनिवर्सिटी में नागरिक समाज ने विचार विमर्श और बहस के पहले चरण की शुरुआत की। इसके केंद्र में एक मुख्य विचार था, आज अफ्रीका में लोकतांत्रिक विमर्श किस प्रकार निर्मित हो रहा है, इस पर सवाल उठाना। ये पहल फाउंडेशन फॉर डेमोक्रेसी इनोवेशन द्वारा आयोजित की गई सोशल क्रिएशन एंड इनोवेशन पवियन में लगभग 50 संगठनों से जुड़े शोधकर्ताओं, कलाकारों और परियोजना संचालकों को एक साथ लाया गया, ताकि वे अपने अनुभवों और प्रस्तावों का आदान प्रदान कर सके। और विदेशी खबरों में फ्रांस के प्रधानमंत्री ने कहा है कि एमवी होंजस के 5 यात्रियों को अगली सूचना तक पेरिस में क्वारंटीन में रखा जाएगा। ये फ्रांसीसी नागरिक 90 से ज़्यादा पर्यटकों में शामिल हैं, जिन्हें रविवार को डच जहाज से घर वापस लाया गया। ये जहाज सुबह होने से पहले कनारी द्वीपों के तट पर लंगर डाले हुआ था। इस जहाज पर यात्रा करने वाले 3 यात्रियों की मृत्यु हो चुकी है, जिनमें से 2 के वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार सुन सकेंगे। रॉयल रोड से चैम्बिल ट्रियोली में 88 साल की 88 ईयर ओल्ड की श्रीमती रुकमिन रामसोहोई, पैदाइश नाम राम गुलाम और जो सुभावती से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनके घर रॉयल रोड से चैम्बिल ट्रियोली से उठाकर बामाशों तेरूज की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
3: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: सभी सुनने वालों को हमारा सादर प्रणाम। स्टूडियो की घड़ी में 10:04 हुए हैं। समय हुआ है भक्ति धारा कार्यक्रम का। सभी सुनने वालों का हम हार्दिक अभिवादन करते हैं। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के अंतर्गत चंद भक्ति गीत आपकी सेवा में, साथ ही साथ आप सुन सकेंगे मानस मंथन कार्यक्रम। ये कार्यक्रम डॉक्टर वीरूण जी की प्रस्तुति में आप सुन सकेंगे।

श्रोताओं, जब हम बात करते हैं उस शक्ति की जो इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है, वो है भक्ति और आस्था की। भक्ति केवल शब्द नहीं बल्कि आत्मा की भावना है। जब जीवन में अंधकार छा जाता है तब आस्था ही प्रकाश बनती है। तो चलिए, इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं भगवान गणेश जी का नाम लेकर।

श्रोताओं, रेडियो मॉरिशस पे हम चला रहे हैं कार्यक्रम भक्ति धारा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और अब आपकी सेवा में प्रस्तुत है मानस मंथन। ये कार्यक्रम आप डॉक्टर वीरुण अरुण जी की प्रस्तुति में सुन पाएंगे।

रामायण सेंटर की ओर से प्रस्तुत मानस मंथन कार्यक्रम में मैं वीनू अरुण आप सबका सादर वंदन और अभिनंदन करती हूँ। रामचरित मानस के बाल कांड के दोहा 245 यानी 245 के नीचे की चौपाइयाँ आज मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। प्रसंग आपको याद है कि राम जी और लक्ष्मण जी को और साथ ही उनके गुरु विश्वामित्र जी को राजा जनक ने बहुत ही सम्मान के साथ एक बहुत बड़े बहुत ही ऊंचे मंच पर आसन दिया, उनका स्वागत किया, उनका सत्कार किया और उस ऊंचे मंच पर बैठे हुए राम और लक्ष्मण जी ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो छोटे छोटे तारों के बीच में पूर्णिमा का चंद्रमा। और उनकी शोभा को देखकर, उनके तेज, उनके बल, उनके प्रताप, उनके पराक्रम को देखकर जितने भी वहाँ राजा बैठे हुए थे, जो राजा

केवल इस कामना और आशा से आए थे कि वे सीता जी से विवाह करेंगे। अलग अलग अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। जो धर्मात्मा राजा हैं, जो अच्छे राजा हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो वास्तविकता को समझ पा रहे हैं, उन्होंने तो अपने मन में ये सोच लिया कि राम जी ही सीता जी को ब्याहेंगे, क्योंकि राम जी ही धनुष तोड़ पाएंगे, इसलिए सीता जी का विवाह राम जी से ही होगा। लेकिन दूसरी ओर ऐसे अहंकारी और अभिमानी राजा भी थे जो अपने को ही सर्वश्रेष्ठ मानते थे। उन्हें ऐसा लगा कि नहीं, वे ही सीता जी से विवाह करेंगे, और यदि वे धनुष नहीं उठा पाए तो वे काल से भी लड़ लेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पे वो सीता जी से ही विवाह करेंगे। व्यर्थ मरहु जनिगाल बजाई, मन मोद कहीं की भूख बुताई, सिख हमारी सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। तो जो अच्छे वाले राजा हैं, जो श्रेष्ठ राजा हैं, उन्होंने पहले कहा कि राम जी ही राजाओं का गर्व दूर करके सीता जी से विवाह करेंगे, और युद्ध में तो कोई राम जी को हरा ही नहीं सकता, इसलिए जो तुम्हारे मन में ये व्यर्थ के विचार आ रहे हैं उन्हें अपने मन से निकाल दो। तो कहते हैं व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई, गाल बजाकर व्यर्थ ही मत करो, और मन मोद कन्हे की भूख बुताई, मन के लड्डुओं से कहीं भूख मिटती है क्या? हमारी परम पवित्र सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो, और उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा और लालसा छोड़ दो। वे समझाते हैं उन अहंकारी राजाओं को, बेकार में तुम लोग ऊट पटांग बोल रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम लोग सीता जी को प्राप्त कर लोगे, ये तुम्हारी दुराशा है, ये केवल तुम्हारे मन का विचार है, ऐसा कभी होगा ही नहीं, क्योंकि जो तुम्हारे मन में लड्डू फूट रहे हैं तो मन के लड्डू से भूख नहीं मिटती, भूख मिटाने के लिए तो साक्षात लड्डू का होना जरूरी है। इसलिए अभी तो तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या होगा, और तुम लोग बेकार में अपने मन में तरह तरह के सपने संजो रहे हो। सिख हमारी सुनि परम पुनीता, हमारी निष्कपट सीख को, शिक्षा को सुनकर सीता जी को जगत जननी समझो, क्योंकि ये श्रेष्ठ राजा हैं, इसलिए वे राम जी के वास्तविक स्वरूप को पहचान गए हैं, और वे सीता जी को भी जगत जननी के रूप में देख रहे हैं, और वे जानते हैं कि भगवान राम का विवाह लक्ष्मी स्वरूपा सीता जी के साथ ही होगा। इसलिए वे उन्हें समझा रहे हैं कि अपने मन में सीता जी को जगत जननी समझो, पत्नी बनाने का विचार त्याग दो, नहीं तो और ज़्यादा निराशा हाथ में आएगी, और उन्हें जगत जननी समझो, और इस प्रकार जो भी तुम्हारे मन में व्यर्थ की कामनाएं उठ रही हैं उन्हें विराम दो, उन्हें लगाम दो। जगत पिता रघुपति ही बिचारी, भरी लोचन छबिले हुनिहारी, सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दौ बंधु शंभु उर्वासी। और रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवि देख लो, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं, यानी स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छुपा करके रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। ये जो हरि भक्त राजा हैं, यानी जो बुद्धिमान राजा हैं, जो बहुत समझदार राजा हैं, वे समझ गए हैं कि राम जी का वास्तविक स्वरूप क्या है, और वे अन्य राजाओं को भी ये सच्चाई, ये वास्तविकता बता रहे हैं और कह रहे हैं कि रघुनाथ जी क्या हैं, यानी सीता जी के बारे में पहले ही बता दिया कि वे साक्षात जगत जननी हैं, जो सारे संसार की जननी हैं, सारे संसार की माँ हैं, जगदम्बा हैं, उन्हें भला पत्नी रूप में स्वीकार करने की बात
कैसे सोच सकते हो? और राम जी कौन है? तो बोल रहे हैं, राम जी जगत के पिता हैं। और ऐसा विचार करके तुम्हें क्या करना चाहिए कि अपने भाग्य की सराहना करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भगवान किसी को दिखाई नहीं देते वे आज हम सबके समक्ष प्रकट हो गए हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य क्या है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है कि जी भर के उनकी छवि को देखो और नेत्रों से अपने मन में उस छवि को सदा सदा के लिए बसा लो। तभी हमारा भाग्य श्रेष्ठ होगा, तभी हमारा जीवन सार्थक बनेगा, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। न जाने हमने कितने पुण्य किए कि हम यहाँ एकत्रित हुए और हमें ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हम जगत के पिता परमेश्वर को अपने नेत्रों से देख पा रहे हैं। सुंदर, सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। वे राजा बता रहे हैं अन्य राजाओं को कि कैसे हैं ये राम और लक्ष्मण। तो जो शिव जी हैं, जिनका ये धनुष है, जिस धनुष को प्रत्यंचा चढ़ानी है, उन शिव जी के मन में राम जी लक्ष्मण जी निवास करते हैं। यानी शिव जी भी राम जी को ही अपना आराध्य मानते हैं और अपने मन में उनको ही बिठा रखा है। ऐसे हैं ये भगवान राम। तो स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा अपने हृदय में बिठा के रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। इसलिए उन्हें निहारो, उन्हें देखो, उनके रूप की प्रशंसा करो और उन्हें अपने मन में बसाने का प्रयत्न करो। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जल निरखि मरहु कत धाई, करहु जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। वे राजा लोग कहते हैं कि समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी जी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। बहुत सुंदर तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि ये राम जी जो भगवान हैं और जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, हमें उन्हें देखने का सौभाग्य मिल रहा है, वो कैसे हैं? अमृत के समुद्र की तरह हैं। यानी राम जी कैसे हैं? अमृत के समुद्र की तरह हैं। और उन्हें छोड़ करके तुम उस मृग जल को पाना चाहते हो जो है ही नहीं। आइए इसे समझें। मृग जल क्या है? यानी जब रेगिस्तान में हिरण को बहुत तेज प्यास लगती है, लेकिन आपको मालूम है रेगिस्तान में केवल बालू है, वर्षा नहीं होती और सूखा पड़ा होता है, तो जो ये बालू है, बालू के जो सफ़ेद सफ़ेद कण हैं, वे दूर से कैसे दिखाई देते हैं? मानो जल है। तो हिरण को ये लगता है कि वो दूर जल है, पानी है, और हिरण दौड़ता है उस पानी को पीने के लिए। वो भागता जाता है बेतहाशा, और जैसे जैसे भागता है जो पानी उसको समीप दिख रहा था वो दूर होता जाता है, क्योंकि पानी तो है ही नहीं है। तो उसे मृग मरीचिका कहा जाता है। मृग मैंने हिरण और मरीचिका मैंने छलावा, और इस तरह दौड़ते दौड़ते प्यास से व्याकुल होकर के हिरण अपने प्राण गंवा देता है। तो ये जो चतुर राजा हैं, जो बुद्धिमान राजा हैं, जो हरि भक्त हैं, जो राम जी के वास्तविक स्वरूप को पहचान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वे उन अहंकारी राजाओं को ये सत्य समझाने का प्रयास करते हैं कि राम जी तो अमृत के समुद्र की तरह हैं, और जानकी जी को पाने की जो तुम्हारी आशा है वो क्या है? मृग मरीचिका की तरह है, इसलिए वो कभी भी पूरी नहीं होगी। हमने तो आज राम जी का दर्शन करके
अपने जन्म लेने का फल पा लिया, यानी अपने जीवन को हमने सफल बना लिया। हमारे तो नेत्र

केवल उनकी ही रूप छवि का पान करने में लगे हुए हैं। हम एकटक उन्हें निहार रहे हैं और उनकी छवि को अपने हृदय में बसा रहे हैं। अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे, देखहिं सुरनभ चढ़े बिमाना, बरसहिं सुमन करहिं कलगाना। ऐसा कहकर जो अच्छे राजा हैं, जो तेजस्वी राजा हैं, जो बुद्धिमान राजा हैं, प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। तो ये जो अच्छे राजा हैं, श्रेष्ठ राजा हैं, उन्हें लगा कि ये जो अहंकारी राजा हैं, उनके मन में जो भ्रम है उसे दूर करें, उन्हें वास्तविकता का परिचय कराएं। और जो श्रेष्ठ लोग हैं वो यही समझते हैं कि जिसके भी मन में अज्ञान है उसे दूर किया जाए, इसीलिए ये राजा जो अहंकारी राजा हैं उनके मन के भ्रम को दूर करने का प्रयत्न करते हैं और स्वयं राम जी के रूप में मग्न हो जाते हैं। उनका मन मानो भौरा बन करके राम जी के मुख कमल का पान करने में लगे हुए हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या, मनुष्य जितने भी लोग बैठे हैं वे सब राम जी के रूप को निहार रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्यों की तो बात ही क्या, मनुष्यों के लिए तो ये दुर्लभ दृश्य है ही कि उनके नेत्रों के समक्ष राम और लक्ष्मण बैठे हुए हैं, लेकिन देवता लोग भी अपने लोभ का संवरण नहीं कर पा रहे हैं। देवता लोग भी श्री राम का रूप निहारना चाहते हैं, राम जी को देखना चाहते हैं, इसलिए वे आकाश से विमानों पर बैठ करके राम जी का दर्शन कर रहे हैं। यानी देवता लोग भी आ गए हैं अपना अपना विमान सजा करके और राम जी को ऊपर से निहार रहे हैं और सुंदर गीत गा रहे हैं कि कितना सुंदर ये दृश्य है। आज राम जी धनुष तोड़ेंगे, सीता जी के साथ उनका विवाह होगा और फूलों की वे सब राम जी पर वर्षा कर रहे हैं। जानिसु अवसरु सीय तब पठई जनक बुलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। अब जनक जी को लगा कि सब राजा आ गए हैं, सारी तैयारी हो गई है, सब अपने अपने आसनों पर विराजमान हो गए हैं और सब अब उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब सीता जी उस रंगशाला में, यज्ञशाला में प्रवेश करेंगी, क्योंकि उन्हीं का तो विवाह है, उन्हीं का वरण करना है। यानी जो धनुष तोड़ेगा वो सीता जी को वरमाला पहनाएगा, तो इसलिए अब सीता जी की उपस्थिति अनिवार्य हो गई है। जब सब लोग बैठ गए, जैसे हमारे यहाँ भी जब विवाह होते हैं तो पहले वर पक्ष आता है, पहले दूल्हे को बुलाते हैं और जब दूल्हे का जितने भी अनुष्ठान हैं वो पूरे हो जाते हैं तब वधू को बुलाते हैं। तो ये परंपरा तो हमारी शास्त्रोक्त है, जो शास्त्रों में नियम बनाए गए हैं उन्हीं के अनुरूप आज भी विवाह होते हैं और उसकी एक झलक हमें यहाँ देखने को मिल रही है कि जब सारे राजा अपनी अपनी जगह बैठ गए, सारी व्यवस्था हो गई, उस समय अब राजा जनक ने किसी को भेजा कि जाओ अब सीता जी को ले आओ, सीता जी के आने का अब समय हो गया है। और ये समाचार पाकर जितनी चतुर और सुंदर सखियां हैं वे आदर पूर्वक सीता जी को लेकर के आती हैं, क्योंकि सीता जी अकेले तो आएंगी नहीं, उनको अभी भी हम देखते हैं जब वधू को लाते हैं तो वधू की भाभी, बहन या सखियां ही उनको मंच पर लाती हैं, तो सीता जी को भी उनकी सहेलियां लेकर के आ रही हैं। सी अशोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी, उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। और अब जब सीता जी वहाँ प्रवेश करती हैं तो सीता जी कितनी सुंदर हैं,
सीता जी की रूप छटा कैसी है, उनकी आभा कैसी है, उनकी शोभा कैसी है, उसका बहुत ही विस्तार से तुलसीदास जी आगे की चौपाइयों में वर्णन करते हैं और उस वर्णन को, उन चौपाइयों को अगले कार्यक्रम में हम प्रस्तुत करेंगे। आइए एक भजन सुने और उसी के साथ आज के कार्यक्रम को हम विराम दें। धन्यवाद। नमस्कार।

10:33 हो चुके हैं इस स्टूडियो की घड़ी में। श्रोताओं, भक्ति धारा कार्यक्रम को हम चला रहे हैं इस समय रेडियो मॉरिशस पे। चलिए इस समय से लेकर दिन के 11 बजे तक आपके लिए चैन भक्ति गीत चलाने वाले हैं। सोमवार का दिन है आज और सोमवार का दिन समर्पित है देवों के देव महादेव को। और आपको पता है आज का दिन बहुत सारे लोग जो है भक्तगण महादेव की पूजा अर्चना करते हैं, व्रत धारण करते हैं, उनके अभिषेक करते हैं, अनेकों प्रकार से उपाय करके उनको हम प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। भगवान शिव को सृष्टि का संहारक और कल्याणकारी देव माना जाता है। वे सरलता, शक्ति, तपस्या और दया के प्रतीक है। शिव का शांत स्वरूप हमें धैर्य और प्रेम का संदेश देता है। उनका रौद्र रूप अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा देता है। तो चलिए आपके चंद प्यारे प्यारे गीत भगवान शिव पर आधारित इस समय से लेकर दिन के 11 बजे तक।

श्रोताओं, शिव केवल देव नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली शक्ति है। महादेव का शांत स्वरूप सिखाता है कि सच्ची ताकत धैर्य और संयम में होती है। भोलेनाथ अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं, इसलिए उनका नाम ही मन को सुकून दे जाता है। शिव की जटाओं से बहती गंगा पवित्रता और जीवन की निर्मल धारा का प्रतीक भी है।

श्रोताओं, महाकाल का नाम ही इतनी शक्तिशाली है कि डर भी दूर हो जाती है। भोलेनाथ सादगी में रहने वाले देव है, वे दिखावे नहीं सच्चे भाव देखते हैं। शिव हमें सिखाते हैं कि क्रोध पर नियंत्रण रखना और मन में करुणा रखना ही सच्ची साधना है। तो चलिए भक्ति धारा कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे।

श्रुत्याओ, महादेव का डमरू बताता है कि जीवन में हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। जो शिव का हो जाता है उसे दुनिया की परेशानियां छोटी लगने लगती है। शिव की भक्ति मन को स्थिर करती है और आत्मा को शांति देती है। 10:55 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में। कार्यक्रम का समापन जो है हम करने वाले हैं एक आरती के साथ। श्रोताओं, सुबह सवेरे 6 बजे से इस समय तक आप लोगों का साथ रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ही घड़ी में 11 बजने वाले हैं, समाचार पढ़े जाएंगे और इसके बाद आप उर्दू कार्यक्रम सायदा के साथ सुन पाएंगे। हमारी तरफ से आप सभी को हम कहेंगे शुभ दिन।

0: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। एक बार फिर आपसे गीता जी नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमनीष, सभी को हमारा नमस्कार। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम कल शाम नैरोबी पहुंचे। वे अफ्रीका फॉरवर्ड समिट में भाग लेने के लिए एक सार्वजनिक निजी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। इस शिखर सम्मेलन का सह आयोजन केन्या और फ्रांस द्वारा किया जा रहा है। अपने आगमन पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री का जोमो केन्याटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर केन्या के स्वास्थ्य मंत्री अडेन डुआले ने स्वागत किया। नैरोबी के जोमो केन्याटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कल शाम प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के बीच अत्यंत सौहार्दपूर्ण मुलाकात हुई। दोनों नेता लगभग एक ही समय पर केन्याई धरती पर पहुंचे और उन्होंने हवाई अड्डे के स्टेट लाउंज में मुलाकात करने का फैसला लिया। लगभग 10 मिनट तक चली इस बातचीत के दौरान दोनों हस्तियों ने अपने उत्कृष्ट संबंधों की समीक्षा की। ये अवसर मॉरिशस से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का भी रहा, जिनमें जलवायु परिवर्तन, बहुपक्षवाद और वैश्विक वित्तीय प्रणाली में सुधार शामिल थे। इस मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने एमबीसी को साक्षात्कार भी दिया। एंटोनियो गुटेरेस ने सुशासन और लोकतंत्र के क्षेत्र में मॉरिशस को एक शानदार उदाहरण बताया, जबकि डॉ. नवीन राम गुलाम ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा मॉरिशस को हमेशा मिलने वाले सहयोग का उल्लेख किया, विशेष रूप से हाल ही में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के संदर्भ में। रॉबर्टसन रिपोर्ट के प्रकाशित होने के 13 वर्ष बाद भी ये मॉरिशस में मीडिया के भविष्य को लेकर चर्चा और विचार विमर्श का केंद्र बनी हुई हैं। प्रेस की स्वतंत्रता, पत्रकारों की जिम्मेदारी, नैतिकता, मीडिया पेशेवरों की सुरक्षा और जनता के लिए सुलभ शिकायत विवरण व्यवस्था। इस रिपोर्ट की कई सिफारिशों का इस सप्ताह फिर से उल्लेख किया गया, जब मीडिया ट्रस्ट द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शांतिपूर्ण भविष्य के लिए जिम्मेदार और स्वतंत्र मीडिया विषय पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और विदेशी खबरों में उत्तर भारत के कई राज्यों में आंधी और बारिश से गर्मी से राहत मिलने की संभावना है, जबकि राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का असर बना रहा। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पहाड़ी राज्यों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं दक्षिणी भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। रॉयल रोड पिची त्रिवियनो में 58 साल की श्रीमती किस्नावती मोइकू, पैदाश नाम गोकुल और जो रानी से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। वे एवेन्यू बेलिल बॉम्बू की रहने वाली हैं। अर्थी आज दिन के 1:30 बजे रॉयल रोड पिची त्रिवियनो की ला शापेल अदान दे मुरा से उठाकर गांधी पाल्मा काथोबोन की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM। रॉयल रोड सिचेमिल थ्रियोले में 88 साल की 88 ईयर ओल्ड की श्रीमती रुक्मिन रामसोहोई, पैदाश नाम राम गुलाम और जो सुभावती से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनके घर रॉयल रोड सिचेमिल थ्रियोले से उठाकर बामा शांते रूज की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
2: ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
3: शम्मे फरोजा।

0: आऊज़ु बिल्लाही मिन अश्शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो ज़िंदगी गुज़र गई उस पर तेरा शुक्र अदा करते हैं, जो ज़िंदगी रह गई उस पर तेरी रहमत के तलबगार हैं। हम सब पर अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे या रब्बुल आलमीन। मौज़े सामीन, इसी नेक तमन्ना के साथ शुरुआत करते हैं। उम्मीद है आप फ़ज़ल खुदा खैर आफियत से होंगे। इस वक्त आप समाअत फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात शम फरोज़ा रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ। आज की इस उर्दू नशरियात में आप समाअत फरमाएंगे तिलावते कुरान पाक, हम बयान नात सलाम और आपके पैगाम। 5251-7005 के ज़रिए आप व्हाट्सएप या नॉर्मल मैसेजेस के ज़रिए हमें अपने पैगाम भेज सकते हैं। तो आइए ताखीर ना करते हुए आगाज़ करते हैं सूरह अर्रहमान की तिलावत से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
1: बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।

sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sahabi rasul hazrat abdullah bin abbas radhiyallahu ta'ala anhu farmate hain, mahbub e zisha makki madani sultan sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ki khidmat mein sawal hua, ya rasul allah sallallahu alayhi wa sallam, quran kareem ki kaun si ayat aap par bahut shiddat wali thi? फरमाए एक मरतबा हज का मौसम था, अरब के मुशरिकीन मक्का में जमा थे, मैं मीना में मौजूद था। उस वक्त हज़रत जिब्रील अमीन अली सलातुसलाम आए और ये आयत उतरी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक इलैक मिन रब्बिक। तर्जमा कुरान कंज़ुल इरफान, ए रसूल जो कुछ आपकी तरफ आपके रब की जानिब से नाजिल किया गया उसकी तबलीग फरमा दें। पारा नंबर 6 सूरह माईदा आयत नंबर 67। बस ये हुक्म इलाही सुनकर मैं खड़ा हो गया, मैंने लोगों को पुकार कर कहा, ए लोगों, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह पाक का रसूल हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो और निजात पा जाओ, अगर तुम ये करो तो तुम्हारे लिए जन्नत है। बस ये सुनना था कि क्या बच्चे क्या जवान क्या ख़वातीन सब मुझ पर चपट पड़े, किसी ने मुझ पर मिट्टी डाली, कोई पत्थर मारना शुरू हो गया। इसी दौरान किसी ने मुझे कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप नबी हैं तो इनके ख़िलाफ़ ऐसे ही हलाकत की दुआ फरमाइए जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने की थी। अल्लाह अल्लाह, महबूब ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत व मेहरबानी का आलम देखिए, कोई पत्थर बरसा रहा है, कोई मिट्टी डाल रहा है, लोग माज़ल्ला गुस्ताखी भरे जुमले कस रहे हैं। इस आलम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ क्या दुआ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, ए अल्लाह पाक, मेरी कौम को हिदायत अता फरमा, बेशक ये नहीं जानते। सलाम उस पर के इसरारे महब्बत जिसने सिखाए, सलाम उस पर के जिसने ज़ख्म खाकर फूल बरसाए, सलाम उस पर के जिसने खून के प्यासों को कबाएँ दीं, सलाम उस पर के जिसने गालियाँ सुनकर दुआएँ दीं। प्यारे प्यारे मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, ये था इस्लाम का इब्तदाई मरहला, जब इस्लाम ने उठान लेना शुरू की थी। एक आज का ज़माना है कि हम जब कोई हज के लिए रवाना होने लगता है तो उसे मुबारकबादियाँ पेश की जाती हैं, दूर दूर से रिश्तेदार मिलने के लिए आते हैं, फूल के हार पहनाए जाते हैं, दुआओं के लिए दरख्वास्तें पेश की जाती हैं, आशिक रसूल तमन्ना कर रहे हैं होते हैं कि इस खुशनसीब मुसाफिर हरम के कदमों पर जान निसार हो जाए। दूसरी तरफ इस्लाम का वो इब्तदाई मरहला था, इन्हें इन्हीं मकामात हज पर काबा शरीफ के करीब हरम पाक में सफ़ा मरवा की जगह मीना अरफात और मुजदलफा में सब हाजियों के सरदार तमाम जहानों के मालिक व मुख्तार महबूब रब गफ़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेकी की दावत देते और गैर मुस्लिम आप पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ा करते थे। इससे अंदाज़ा लगाइए कि महबूब ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन का काम कितनी मुश्किल झेल कर किया है, हक की राह में पत्थर खाए, खून में नहाए ताइफ में, दीन का कितनी मेहनत से काम आपने ए सुल्तान किया। प्यारे प्यारे मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, हज के अय्याम में लोग दूर दूर से सफ़र करके मक्का पाक पहुंचा करते हैं। दौरे जाहिलियत में भी यहाँ बड़े बड़े बाजार लगा करते थे, लोग बड़े ज़ोक व शौक़ के साथ यहाँ शिरकत किया करते थे, क्योंकि उस वक्त लोगों की बड़ी तादाद जमा होती थी। लिहाजा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौके का फ़ायदा उठाते और नेकी की दावत की खूब कसरत फरमाया करते थे। रिवायत में के ऐलान नबुव्वत के बाद पहले 3 साल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुफिया तौर पर इस्लाम की दावत पेश की, फिर आपने ऐलानिया दावत का आगाज़ फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल तक मुसलसल लोगों को नेकी की दावत देते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक था कि हर साल हज के मौसम में हर हर कबीले के पास तशरीफ़ ले जाते, उन्हें इस्लाम की दावत देते, फरमाया करते, तुम इस्लाम कबूल कर लो, मैं तुम्हें जन्नत की खुशखबरी देता हूँ। मगर अफसोस, कोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दावत पर लब्बैक नहीं कहता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैमों के सामने गुजरते, बुलंद आवाज़ से कहते जाते, या अय्युहन नास قولوا لا إله إلا الله تفلحوا, ए लोगो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, फला पा जाओगे, अगर ये दावत कबूल करो तो अरब के मालिक हो जाओगे, अजम तुम्हारे महातहत हो जाएंगे और तुम्हें जन्नत में बुलंद मकाम नसीब होंगे। अबू लहाब बदबख्त आपके पीछे पीछे होता, आप दावत इस्लाम देते, वो ऊंची आवाज़ से कहता जाता, ए लोगो, इनकी बात मत सुनना, ये झूठे हैं, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। हज़रत तारिक बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हज के दिनों में जुल
मजाज नामी बाज़ार में था। इतने में वहाँ से एक साहब गुज़रे, उनकी मुबारक पिंडलियों से खून बह रहा था। वो फरमाते जा रहे थे, ए लोगों कलमा पढ़ो फला पा जाओगे। एक शख्स उनके पीछे पीछे था, उन पर पत्थर बरसा रहा था। मैंने पूछा ये कौन है? बताया गया कि ये हाशमी हैं, नबूवत का दावा करते हैं और इनके पीछे इनका चचा अबू लहब है। अल्लाह अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ज़रा तसव्वुर तो बांधिए कितनी दर्द भरी बात है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नालेन शरीफ यानी मुबारक जूतों से लगने वाली मुकद्दस खाक पर हम जैसे करोड़ों की जानें कुर्बान हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए जाते जिसमें पाक से खून बहता, तकलीफ़ें बर्दाश्त फरमाते हैं, इसके बावजूद नेकी की दावत का अजीम काम जारी रखते हैं। एक मरतबा का वाकया है, महबूब अज़ीज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते, आपका जिस्म पाक लहू लहान था। इतने में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या माजरा है? फरमाए, इन अहले मक्का ने जुल्म ढाया है। अब हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के ने दिल पाक को तसल्ली देने के लिए अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने दरख्त देख रहे हैं, उसे अपनी तरफ बुलाइए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त को बुलाया तो दरख्त फौरन हाजिर खिदमत हो गया। फिर वापस जाने का फरमाया तो दरख्त वापस चला गया। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, जिब्रील मेरे दिल की तसल्ली के लिए इतना काफ़ी है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये महबूब ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आपकी तवज्जो मुबारक इस तरफ करवाना चाह रहे थे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो दरख्तों को बुलाएं तो वो भी इताअत करते हैं। इसमें इशारा है कि आपकी नेकी की दावत में कमी नहीं है, कसूर उन गैर मुस्लिमों के अंधे दिलों का है जो समझने और मानने से कासिर हैं। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ये हमारे आका व मौला मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये वही बुलंद मर्तबा हस्ती हैं जिनके सदक़े ज़मीन व आसमान बनाए गए। ये वही हस्ती हैं जिनको तमाम नबियों का सरदार बनाया गया। ये वही हैं जो आसमान की जानिब आँख उठा लें तो अल्लाह पाक क़िबला तब्दील फरमा देता है। उंगली से इशारा फरमाए तो चाँद दो टुकड़े हो जाता है, डूबा सूरज पलट आता है। ये वही हैं मौलाना हसन रज़ा ख़साब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जो बात लबे हज़रत ईसा ने दिखाई वो काम यहाँ जुम्बिशे दामा से निकला। ये हकीकत है कि जिनका एक इशारा आफतों बलाओं को टाल दिया करता है, उन महबूब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के पाक में 10 साल का अरसा यूं गुजारा कि मक्के के गैर मुस्लिम तकलीफ़ें देते, जिसमें मुकद्दस से खून बह निकलता, कोई माजल्ला गालियाँ बकता, कोई मुबारक मुकद्दस उजले उजले चमकदार लिबास शरीफ और मिट्टी डाल देने की जसारत करता। अबू लहब बदबख जैसे तो पत्थर भी बरसाने से बाज ना आते। इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना उनके खिलाफ दुआ फरमाते, ना ही नेकी की दावत का अजीम काम रोकते, बल्कि सब्र व तहम्मुल का गोया पहाड़ बनकर 10 साल तक मुसलसल तकलीफ़ें बर्दाश्त करते चले जाते हैं। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इसमें हमारे लिए सबक है, वो ये कि दीन के काम में मुश्किलात बर्दाश्त करनी ही पड़ती हैं। हमारे यहाँ लोग घबरा जाते हैं, उकता जाते हैं, दिल बर्दाश्ता होकर अलग होकर बैठ जाते हैं। मसलन अमामा शरीफ बांदा घर वालों ने बातें सुनाना शुरू कर दी, ये दिल बर्दाश्ता होकर अमामा शरीफ उतार देते हैं। दाढ़ी सजाई, लोगों ने जुमले कसने शुरू कर दिए, ये माज़ल्ला उकता कर दाढ़ी मुंडा देते हैं। निकी की दावत देने निकले, लोगों ने बदतमीज़ी कर दी, किसी ने गाली दे दी, धक्का दे दिया, जुमले कस दिए, तो बाज़ नादान मुबल्लिग हिम्मत हार जाते हैं। ऐसे मुबल्लिगीन को चाहिए कि महबूब ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तकालीफ को सामने रखा करें। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास सत्तार क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया लिखते हैं, राह खुदा में तकलीफ़ें उठाना भी सुन्नत, इन पर सब्र करना भी सुन्नत, और बावजूद सख्त तरीन मुश्किलात के नेकी की दावत का सिलसिला जारी रखना भी सुन्नत हैं। सुन्नतें आम करें, दीन का हम काम करें, नेक हो जाएं मुसलमान मदीने वाले। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हमें भी नेकी की दावत आम करनी चाहिए। ये नेक काम सुन्नत मुस्तफ़ा भी है, सुन्नत अंबिया भी है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सब के सब और सबसे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने नबी तशरीफ़ लाए हैं, सबकी आमद का असल मकसद नेकी की दावत आम करना ही था। कुरान करीम में है, रसूलम मुबशरीन व मुनज़िरीन लिअल्ला यकून लिन्नास अलल्लाहि हुज्जतुन बादर रुसुल। तर्जमा कुरान कंज़ुल इरफ़ान, हमने रसूल

0: जानते हैं हमें दूसरों तक पहुंचाना चाहिए और जो नहीं जानते हमें सीख कर दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। हर मुसलमान मुबल्लिग है, हमने भी सुना, हर किसी के लिए हुक्म है कि पहुंचा दो मेरी तरफ़ से, अगरचे एक ही आयत हो। कोई सुने ना सुने, हम अपना काम पूरा करें, जिस तरह हमने प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा प्यारा ज़िक्र खैर, ज़िक्र मुबारक सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी तकलीफ़ें उठाईं, तकालीफ़ें उठाईं, लेकिन फिर भी नेकी की दावत आम करते रहे, सलाम की दावत लोगों तक पहुँचाते रहे। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।
1: मौज़ समीन, अभी आप समाअत फरमा रहे थे मुबल्लिग़े दावत इस्लामी क़ारी अब्दुल माजिद अत्तारी साहब की ज़ुबानी एक बहुत ही प्यारा बयान। उम्मीद करते हैं कि इस बयान से आपकी दीनी मालूमात में ज़रूर इजाफ़ा हुआ होगा।

मेरे अल्लाह की तुझ पर इनायत होने वाली है, शहे कौनैन के अंदर की ज़ियारत होने वाली है, बुलावा आ गया है सरवरे कौनैन के दर से, ऐज़ाइर तुम पे नज़रे जाने रहमत होने वाली है, जहाँ की हाज़री पे सारी खलकत नाज़ करती हो, मयस्सर तुझको वो हासिल सआदत होने वाली है, बहारे कुल्त के तुम लौटते रहना मज़े हरदम, बहारे कुल्त के तुम लूटते रहना मज़े हरदम, मदीना शहर में तेरी सुकूनत होने वाली है, कभी जमजम पियोगे तो कभी खाओगे अजवा भी, कभी जमजम पियोगे तो कभी खाओगे अजवा भी, शहे अब्रार की गलियों में दावत होने वाली है, मेरे अल्लाह की तुझ पर इनायत होने वाली है, शहे कौनैन के दर की ज़ियारत होने वाली है।

इस कलाम की फरमाइश हमसे की थी हाफिज़ अम्बावा साहिब ने। इसके अलावा ख़ाला नाज़मून दुआगो हैं ज़ैद और तौहीदा के लिए, जो कि इंशाल्लाह ताला हज पर जा रहे हैं, उनके लिए और तमाम हाजियों के लिए कि अल्लाह पाक तमाम हाजियों के सफ़र में आसानियाँ अता फ़रमाए, वो सात खैरियत के जाएं और सात खैरियत के वापस आएं। दुआगो हैं ख़ाला नाज़मून।

मौजूद सामीन, इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। आप तमाम सामीन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

卡斯朋友，今日咧客家风情花就到诶，同大家告别咧，多谢大家的收听，下次节目我哋再会。

दिन के 2:30 बज चुके हैं और ये है रेडियो मॉरिशस का प्रसारण। मीडियम वाट्स 19 किलोहर्ट्ज पर से रेडियो मॉरिशस का ये प्रसारण जारी हो रहा है। M2 रेडियो पर आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं हूँ रत्ना, आप पहुंची हूँ आपकी पसंद कार्यक्रम को लेकर। सोमवार का दिन है, 11 तारीख मई महीना 2026 का साल और समय बिल्कुल 2:30 बज चुके हैं। अभी से लेकर दिन के 4 बजे तक हम रहेंगे आपका साथ देने के लिए। आप ही के पसंदीदा कार्यक्रम आपकी पसंद, जहां पर आपके पसंदीदा गीतों की फरमाइशों को पूरा किया जाता है। तो बस आपको करना है कि फोन उठाना है, 4028085 नंबर घुमाना है और आपके पसंदीदा गीत की फरमाइश को हम तक पहुंचाना है। काम में बिजी हैं तो मैसेज भी कर सकते हैं, 5251700 नंबर है रेडियो मॉरिशस के मोबाइल का, यानी आम मैसेज या फिर व्हाट्सएप के मैसेज द्वारा आप हम तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम की एक बहुत ही बढ़िया शुरुआत हम करने जा रहे हैं सौदागर फिल्म के इस बहुत ही मशहूर से गाने के साथ। कविता कृष्णमूर्ति, मनर उदास और सुखविंदर की आवाज़ में रखा हुआ ये पहला गीत।

0: आपकी पसंद।
1: आपकी पसंद का ये मशहूर सा गीत, और वैसे इस कार्यक्रम में रखे हुए हर गाने बड़े ही स्पेशल होते हैं क्योंकि ये गाने आप चुनकर लाते हैं। कई बार कुछ ऐसे अनसुने गानों का सिलेक्शन भी हमें बहुत ढूंढना पड़ता है आप लोगों को खुश करने के लिए, पर चलिए ये कोशिश भी लाजवाब रहती है क्योंकि ऐसे ऐसे गाने जो आप चुनकर लाते हैं बहुत ही मज़ेदार इस कार्यक्रम को बना देता है। तो चलिए अगला गीत जो है ये

ये है विजय रामचंद्र जी की ओर से, फिल्म है रूप की रानी चोरों का राजा, पुरानी फिल्म का ये गीत आशा जी और सुबीर सेन की आवाज़ में रखा हुआ गाना। और ये चाचा जी ने चुना है मेलरोज के सभी सीनियर सिटीजन के लिए और कहते हैं एमबीसी स्टाफ के लिए, खासकर ये गाना भी ढूंढ कर लाए हैं, बहुत ही लाजवाब सा गीत है। तो आइए साथ मिलकर एंजॉय करते हैं इस गीत को।

0: की पसंद। चलिए, दिल से खुश करने वाली आवाजें यहाँ पर फोन के माध्यम से हम तक पहुंच रही हैं। बहुत बहुत प्यार आप सभी को। यहाँ मैसेज आ चुका है ज्योति जी का। ज्योति जी, आप बहुत प्यार से शतु बनारस से हमेशा साथ देती हैं और अगला गाना मांगती है अश्नी, रेखा, सुरेखा और सभी माधव परिवार के लिए। और हमारी एक और प्यारी ज्योति जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं यूनियन पार्क से और कहती हैं अगला गाना प्लीज चला दीजिए प्रीति, मयूर, आदर, वेदना और विवेक के लिए। जरूर चला देंगे और प्यार से आप सभी हमारा साथ यूं ही देते रहिएगा। यहाँ पर बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे श्रोता हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। अगला गीत जो है अनीता जी जो त्रियोले से हमारा साथ दे रही हैं, उन्होंने पसंद किया है। और ये गाना जो है आशा जी, उषा मंगेशकर और हेमलता की आवाज़ में ये गाना जाएगा उनकी प्यारी बेटी अंजू। दामाद है वेद, बेटा है सचिन और बहू है पूजा, साथ है उनका नाती कियांश और पोती है सिया। और सभी परिवार का नाम जोड़ते हुए आज के इस कार्यक्रम में चलिए सुनते हैं ये अगला गीत।
1: पापा मैं कहानी सुनाऊं? मामा जी कहानी नहीं, गाना
2: सुनाओ। हाँ भैया गाना सुनाओ।
3: बच्चों एक समय की बात सुनो, अंधियारी थी रात, सुनो दीपक चोरी हो गया, चांद कहीं पर खो गया।
4: फिर क्या हुआ?

0: आपकी पसंद।
1: चलिए आपकी पसंद कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अगला गीत एक और अनसुनासा गीत तीसरी गली फिल्म से लिया हुआ ये गीत शीला जी की मांग पर हम चलाएंगे जो इस वक्त हमारा साथ दे रही हैं दे पीने से।

चलिए हम कहेंगे शीला जी, थोड़ी देर में आपका गीत हम चलाएंगे, बस साथ देते रहिएगा। यहाँ पर डीप रिवर बेलेयर रिवियेरा से जुड़ी हुई हैं शिवरानी जी, और अगला गीत फिल्म खिलौना से लिया हुआ, और ये गीत हम चलाना चाहेंगे आपके लिए। और बिल्कुल इसी गीत को हम आपके बच्चों के नाम भी करना चाहेंगे जो हमेशा हमारा साथ देते हैं ऑस्ट्रेलिया से। तो बस साथ देते रहिए और मॉरिशस के हर गीत के साथ प्यार से जुड़े रहिए। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में फ़िल्म खिलौना का ये गीत।

की पसंद। दो बजकर 55 मिनट, अभी थोड़ी ही देर में हम जुड़ेंगे सुपहर के 3 बजे के समाचारों के साथ, और उसी के साथ चलते चलते ये इस सेगमेंट का बस आखिरी गीत, बट आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे 3 बजे के बाद भी, क्योंकि ये कार्यक्रम जारी रखा जाएगा शाम के 4 बजे तक। तो चलिए रेहाना जी, आपकी पसंद को पूरा करते हैं। यहाँ पर नौतकदाम से आप साथ दे रही हैं माला फाउदा, सुरेखा और आपकी प्यारी भतीजी रायशा बुदू के नाम करेंगे ये अगला गीत। फिल्म है स्वर्ग नर्क से लिया हुआ गीत, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ एक बार फिर।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिला लीजिए, समय सुपहर के ठीक 3 बजे हैं। आइए जुड़ते हैं 3 बजे के समाचारों के साथ।

0: परी सभी को मेरा नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम रविवार रात मॉरिशस समय अनुसार रात 11 बजे केन्या के जम्मू केन्याता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। उनके आगमन पर केन्या के स्वास्थ्य मंत्री अदन दुआले ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री की प्रतिनिधिमंडल में जिनो मंत्री धनेश्वर डामरी और फैब्रिस डेविड, विदेश मामलों के सचिव रॉय बिसुंदुयाल, फ्रांस में मॉरिशस के राजदूत जोएल रॉल्ट तथा अफ्रीकी संघ में हमारे सहायक प्रतिनिधि इंद्रजीत बाबुआ शामिल रहे। हवाई अड्डे के स्टेट लाउंज में प्रमुख अतिथियों में पुस्तिका में डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने मॉरिशस और केन्या के बीच विशेष संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने ये भी बताया कि केन्या उनका पहला विदेशी देश था जहां उन्होंने जीवन में पहली बार यात्रा की थी, जब वे सरसिव सागर रामगुलाम के साथ नैरोबी में केन्याई राष्ट्रपति जोम्मू केन्याता से मिलने गए हुए थे। इसके बाद जोम्मू केन्याता ने मॉरिशस को संविधान तैयार करने में मदद करने के लिए प्रतिभाशाली टॉम एम्बोया को भेजा था। प्रधानमंत्री अफ्रीका फॉरवर्ड समिट 2026 में अपेक्षित लगभग 40 अफ्रीकी नेताओं में शामिल हैं, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल माक्रों भी मौजूद हैं। और मॉरिशस लोकतंत्र और अच्छे शासन का शानदार उदाहरण है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो ग्यूटेरेस ने नैरोबी में कल शाम प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम से मुलाकात के बाद एमबीसी को विशेष रूप से ये बयान दिया। दोनों नेताओं ने जलवायु परिवर्तन, बहुपक्षीय और वैश्विक वित्तीय प्रणाली में सुधार से जुड़े मुद्दों पर बात की। विश्व बैंक की सदस्य संस्था इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने हाल ही में मॉरिशस के पर्यटन पर एक रिपोर्ट जारी की है। ये दस्तावेज विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में इस क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करता है। और रिपोर्ट में पर्यटन क्षेत्र की स्थिरता और लचीलापन सुनिश्चित करने के माध्यम और दीर्घकालीन उपायों की सिफारिश की गई है। इसमें क्लाइमेट रेजिलिएंट टूरिज्म टास्क फोर्स के गठन की सलाह दी गई है, जो जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन परियोजनाओं का समन्वय करेगा। तो ये थी अब तक की खबरें। कुछ ही समय में शोक समाचार। शिवाला रेलवे रोड मोटाई ब्लॉन्च में 69 साल की 69 ईयर्स ओल्ड श्रीमती पारो सिवनोत पैदाशी नाम सुभा और जिन्हें लोग पारो नाम से अधिक जानते थे की मृत्यु हो गई है। की अर्थी कल दिन के 2 बजे इनके पति धनराज सिवनोत के मकान शिवाला रेलवे रोड मोटाई ब्लॉन्च से उठाकर मोटाई ब्लॉन्च की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरा 2 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: Your news on NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस।

घड़ी मिला ली, समय दिन की ठीक 3:05 हो चुके हैं। ये मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का रेडियो मॉरिशस प्रसारण है। पुनः आप सभी को याद दिला दे, अभी से लेकर 4 तक ये सफर जारी है रेडियो मॉरिशस की लहरों पर, और इस पसंदीदा सफर को और भी मनोरंजन से भरपूर बनाते हैं आप ही के पसंदीदा गीत। तो चलिए अगले गीत की फरमाइश जो आई थी शीला जी की ओर से, देपीने से भी हमारा साथ दे रही हैं, और अगला गीत उन्होंने मांगा है बहुत ही अनसुना सा गीत है, तीसरी गली फिल्म से लिया हुआ। तो आइए इस गीत को सुनते हैं।

0: आपकी पसंद।
1: आपकी पसंद, जहां पर आपकी पसंदीदा गीत की फरमाइश को हम पूरा करते हैं। चलिए अगली फरमाइश है फिल्म कलाकार से दिया हुआ ये गीत और ये गाना है विद्या जी की ओर से, जो यूनियन पार्क से हमारा साथ दे रही हैं। चाची कुमारी, बहनें हैं सतीश, सुरेखा और बबीता के नाम, और ये गाना गाया गया है सुरेश वाडकर और अनुराधा पौडवाल जी की आवाज़ में।

0: की पसंद।
1: लाजवाब गीतों का ये सफर और कई बार असली नकली का सामना भी हमें करना पड़ता है। वैसे ये है फिल्म असली नकली का गीत और मानती जी हमारा साथ दे रही है एन वेलफॉन्स से। उनकी सभी प्यारी बहनों के नाम अनंती, आरती और प्यारी कजन अमृता, साथ है चिंता जी और फिल्म है असली नकली। वैसे ये गाना मानती जी कहती हैं ये गाना हमने खास आपके लिए मांगा है रत्ना जी। थैंक यू मानती जी, लोड्स एंड लोड्स ऑफ लव आपको, बहुत बहुत प्यार और मोहम्मद रफ़ी और लता जी की प्यारी सी आवाज़ में। चलिए ये गाने को सुनते हैं।

0: आपकी पसंद।
1: भाई कुछ भी कह लो, रेडियो मॉरिशस का जो परिवार है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और ये बहुत ही बड़ी बात है। चलिए यहाँ पर हमारे साथ प्यार से जुड़ी हुई हैं श्यामा जी, बहुत ही प्यार से वे साथ दे रही हैं, और उनके प्यारे भैया जयप्रकाश, भाभी हैं नम्रता, साथ है केशव और युधीश और उनकी सभी सखियाँ विश्वानी जी और वीना रामफल और हमारी MBC की पूरी टीम। और उन्होंने गाना मांगा है, जब याद किसी की आती है। बिल्कुल, जब याद किसी की आती है तो दिल में उन्हीं की याद बस जाती है। लता जी की प्यारी सी आवाज़ में रखा हुआ ये गाना, और साथ ही साथ नाम जोड़ना चाहेंगे यहाँ पर नोएल फॉन्स से हमारा साथ दे रही हैं गीता बाई। चलिए बहुत ही प्यार से आपको आपका नाम जोड़ते हैं यहाँ पर। उनके प्यारे बेटे हैं शिवाजी, बहू है श्वेता बाई, बेटी है सुधा भाई, साथ है उनकी प्यारी नातिन बिजवी बाई और दिया बाई, और आज मल्हार 5 महीने का हो चुका है। प्यारे से मल्हार को हमारी ओर से ढेर सारी पप्पी और झप्पी, और साथ ही साथ आपकी प्यारी बेटी देवी का भी नाम जोड़ते हैं, जो हमेशा खुश होती है पर कहती है कि आप तो हमारा नाम चलाते ही नहीं। चलिए गीता भाई, आपकी प्यारी एक और बेटी देवी के नाम ये अगला गीत, और आपकी प्यारी सखी गायत्री जी, जो भी हमेशा आपका नाम लेते कभी नहीं चूकती, तो चलिए इस गीत को उनके नाम भी हम करेंगे और इस गीत को प्यार से सुनते हैं लता जी की आवाज में।

आपकी पसंद कार्यक्रम को जारी रखते हुए अगले गीत की फरमाइश को लेते हैं और ये है हरियाली और रास्ता फिल्म से लिया हुआ गीत गीता जी की पसंद पर, जो इस वक्त हमारा साथ दे रही हैं पुंफेया से उनके प्यारे पति रोहित, साथ है उनके नाती आदित्य आरव और प्यारा तनीश, और साथ दे रही हैं उनकी प्यारी परी जानवी, तीन बेटे दो बहुओं के साथ एंजॉय कर रही हैं आपकी पसंद का कार्यक्रम।

0: आपकी पसंद।
1: पसंद और इस अगली पसंद को पसंद किया है बंधु परिवार ने। त्रियोले से अरब का सोना फिल्म है और आवाज़ है नितिन मुकेश साहब की।

0: आपकी पसंद,
1: आपकी पसंद बहुत ही प्यारे प्यारे गीतों से सजाया हुआ ये कार्यक्रम, और बिल्कुल गीत है आप ही के पसंदीदा। तो चलिए इस अगले गीत को लेते हैं, और ये है प्रेमिला बोईजू की ओर से, जो इस वक्त कॉटेज से साथ दे रही हैं, और आज उनके प्यारे पिताजी आत्माराम गुरुवादी का जन्मदिन है, और जो रहते हैं सेंट जूलियन विलाज। उनकी ममा है रत्नावती और बहन है जया, बेबी अनुराधा, सारा, उमा, भाई हैं देविन और राजन, भाभी हैं सावित्री, और सभी नाती पोतों की ओर से ये गीत खास उनके लिए, और ये है फिल्म आपकी परछाइयां से लिया हुआ।

अगला गीत है फिल्म मिस्टर इंडिया से लिया हुआ, और ये गाना जाएगा सुदेवी जी की पसंद पर। वाकवा से साथ दे रही हैं त्रिवोले से ललिता कुशल, भाई आत्माराम, दीदी सुनीता, शोभा, देवीना, मालेंगा से है अनुषा, किरण, केशनी, साथ है कृषय, प्रनीता, सभी राम।

इस गीत के साथ बहुत सारी यादें ताजा हो गई। और चलिए, यादें ताज़ा करने का यही तो माध्यम है जहाँ पर हम अपने ज़माने के गानों को सुनते हैं, आपकी पसंद कार्यक्रम। और यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं विष्णुदेव जी, जो हैं गौबे से, और फिल्म अंदाज का ये गाना उन्होंने मांगा है। वैसे हम आपको ये बता दें, 1949 के दौर की ये फिल्म है, और इस फिल्म में नज़र आए थे दिलीप कुमार साहब, साथ नज़र आई थी नरगिस, और ये गाना वे मांगना चाहते हैं गुडलैंड्स की सती रामफल के लिए, पॉम्पलीमुस से चाचा रामफल के लिए, और मोसेल के बादालू सिस्टर्स के नाम। तो चलिए, ये अनसुना गीत हम करना चाहेंगे बिल्कुल आपके लिए।

जी हैं आज के इस कार्यक्रम के लगभग समाप्ति तक, और यहाँ पर एक क्वायो से मून हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आज उनके पति चांद का जन्मदिन है और उनके सभी बच्चों के ओर से ये प्यारा सा गाना हम करना चाहेंगे उनके लिए। उनकी प्यारी बेटी है अविशा, साथ है दामाद अश्ले, बेटे हैं अविनाश और अभिषेक, दो बहुएं नीलम और जिंसके, साथ है उनके नाती और नातिन निया और निक्षु। वैसे बस हमारे बहुत सारे श्रोता हमसे कहते हैं कि आप तो हमें भूल गए। बिल्कुल नहीं भूले हम आपको। यहाँ पर प्रकाशवती जी बेल्जियम से जुड़ी हैं, नुएल्फोंस से हमारे साथ गायत्री जुड़ी हुई हैं, हरीश भैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं बोबासन से, घोंगुप से सुनीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, विमला, अमृता, वीना उनकी तीन प्यारी बहनें, लीलो जी साथ दे रही हैं बोशेगी से, विश्वानी दुमन हमारे साथ जुड़ी हैं वकवा से, उनकी प्यारी बहनें नीला और प्रतिभा, इंदिरा, शारदा और साथ है गीता गजादर। रिव्या दे क्रियोल से जुड़ी हुई हैं साधना जी, जीवन परिवार के साथ, मोताइलोंग से है शकुंतला और साथ दे रही हैं उनकी प्यारी भाभी नुएल्फोंस से गायत्री जी और बेटा अजय। सरिता जी हम आपको नहीं भूले हैं, आप हैं काटुबोन से इस वक्त हमारा साथ दे रही हैं, बिल्कुल भूले नहीं हैं, पर बस अफसोस यही है कि हम आपकी फरमाइश को पूरा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट हो गई गीतों की। और यहाँ पर इंदिरा लॉटन जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, पेपे, दीक्षा, कृष्णा और गोपी परिवार के साथ और सभी लॉटन परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच, बस साथ देते रहिए। बस आपका नाम ज़रूर शामिल करना चाहेंगे क्योंकि हम गीत की फरमाइश को कई बार पूरा नहीं कर पाते क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट हो जाती है और समय का अभाव रहता है इसीलिए, पर हम ज़रूर आशा करेंगे कि आप हमारी दुविधा को भी समझेंगे। थैंक यू सो मच, बिल्कुल दिल से साथ देने के लिए, बस यूं ही साथ देते रहिए। और ये आखिरी गाना फिल्म सुजाता से लिया गया और ये गाना है आशा जी की आवाज़ में, और इस गीत को हम उन सभी के नाम करना चाहेंगे जो अपना जन्मदिन मना रहे हैं। वैसे आपको याद दिला दें, चार बजे आप सुन पाएंगे कार्यक्रम प्रकाश, और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतिकरण की जाएगी श्रीमती अंजू गर्बरन द्वारा। तो चलिए इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को बस यहीं विराम देते हैं। कल सुबह 6 बजे हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे रेडियो मॉरिशस की लहरों पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुभ संध्या आप सभी को।

0: On the hour, every hour, Radio Marches.
1: हिंदी माथे की बिंदी विश्व भाषा बनी हमारी हिंदी. सुनिए पाक्षिक कार्यक्रम प्रकाश, प्रस्तुति श्रीमती अंजू गर्बरन की.
2: सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं आज के प्रकाश कार्यक्रम में. श्रोताओं, प्रकाश कार्यक्रम में हम बहुत सारी जानकारियां साझा करते हैं. आज जानकारी साझा कर रहे हैं स्थानीय लेखक प्रहलाद राम शरण जी द्वारा लिखी पुस्तक अमर प्रेम. अमर प्रेम वो कहानी है जो कि बेरनार्डे डे सैंपियर द्वारा लिखी गई थी. उसका रूपांतर प्रहलाद राम शरण जी ने किया. बात 1768 की है, जब फ्रांस के एक प्रसिद्ध उपन्यासकार बेरनार्डे डे सैंपियर अपने मित्र मोदाव के साथ मेडागास्कर गया. वहाँ मोदाव खुल्लम खुल्ला दासों का व्यापार करता था. जब सैंपियर ने मानव जाति को भेड़ों के समान बिकते देखा, तब उसे इस प्रथा से बहुत दुख हुआ. उसने तुरंत मोदाव का साथ छोड़ दिया और पास के द्वीप मॉरिशस चला आया. सैंपियर प्रकृति प्रेमी था. बहुत पहले से ही उसे शहरी संस्कृति से चिढ़ थी, इसलिए उसकी रचनाओं में प्रकृति का चित्रण जिस ढंग से किया गया वह अपने आप में बेजोड़ है. अपनी समस्त रचनाओं में उसने शहरी संस्कृति की भत्सना की है और मॉरिशस की प्रकृति तो दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जैसा हम सभी जानते हैं. मॉरिशस आने से पूर्व सैंपियर भारत का भ्रमण कर चुका था. वह भारतीय अध्यात्मवाद से बहुत प्रभावित हुआ, इसलिए उसकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति की झलक भी मिलती है. मॉरिशस में 3 साल रहकर उसने 2 पुस्तकों की रचना की, इल डे फ्रांस की यात्रा और पोले वैशिनी. भारत पर भी उसने 2 पुस्तकें लिखी, भारतीय कुटिया और सूरत का कॉफ़ी हाउस. उसकी चारों रचनाओं में पोले वैशिनी को सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है. शायद इसलिए नेपोलियन बोनापार्ट ने सैंपियर से पत्र लिखकर वह पूछा कि वह पोलो वैशिनी के समान उत्तम पुस्तक कब और कैसे लिखेंगे और पोले वैशिनी में कौन कौन सी घटनाएं ऐतिहासिक हैं और कौन सी काल्पनिक. फ्रांस में जब जन क्रांति अपनी चरम अवस्था पर पहुंची और जब मारी एंटोनेट को गिलोटिन पर चढ़ाया गया, तब उसके कमरे में पोले वैशिनी की एक प्रति देखी गई थी. 19वीं शताब्दी में इस लघु उपन्यास को जितना मान मिला था शायद ही किसी पुस्तक को मिला हो. इसलिए अमेरिका के प्रख्यात लेखक मार्क ट्वेन ने मॉरिशस की यात्रा के बाद लिखा था कि मॉरिशस में बाइबल और पोले वैशिनी के अलावा और कई पुस्तकें नहीं पढ़ी जाती हैं. इस लघु उपन्यास को पढ़कर ही रूस के महान चिंतक और साहित्यकार टॉल्स्टॉय ने 23 कहानियां नामक पुस्तक लिखी. इसी उपन्यास में बंगला अनुवाद पढ़कर बालक रवीन्द्रनाथ ठाकुर बहुत प्रभावित हुए थे. उन्हें यह कहानी बहुत भाई थी. पोले वैशिनी की कहानी बड़ी ही मार्मिक है और इसकी कथा वस्तु रोमियो जूलियट और लैला मजनू के समान दुखांत है. नायिका वर्जिनी का वनवासी जीवन कालिदास की शकुंतला के वनवासी जीवन से मिलता जुलता है, इसीलिए इस पुस्तक को मॉरिशस की शकुंतला भी कह सकते हैं. इस पुस्तक को लिखते समय हमारे स्थानीय लेखक कहते हैं कि एक ओर किशोरों की योग्यता को ध्यान में रखा है तो दूसरी ओर भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों को आँखों से ओझल नहीं होने दिया. इन्हीं दोनों तथ्यों को आधार मानकर पोले वैशिनी कहानी लिखी गई, जिसे नाम दिया उन्होंने अमर प्रेम. पोले वैशिनी में भारतीयता का की अनुपम कड़ी. अबोध बंधु नाम के बंगला मासिक पत्र में फ्रांसीसी कहानी पोले वैशिनी का सरल बंगला अनुवाद पढ़कर मैंने, अर्थात रवीन्द्रनाथ ठाकुर जी ये कह रहे हैं कि मैंने कितने आंसू बहाए हैं उसका ठीक पता नहीं। आह, वह किस सागर का तट था, वह कौन से समुद्र की वायु थी जिसमें नारियल के वन लहराया करते थे, वे किस पहाड़ के ढलाने थी जिनमें भेड़ बकरियां निर्भय होकर चरा करती थी। कलकत्ता शहर के दक्षिण में स्थित अपने बंगले के बरामदे में दोपहर की धूप में बैठे बालक का मन कैसे मधुर स्वप्न में खो जाया करता था। वर्जिनी के माथे पर बंधा रंगीन रुमाल और उस निर्जन द्वीप के धूमिल वन मार्ग एक भारतीय युवक के मन में कैसे प्रेम का अंग प्रस्फुटित कर देता है। ये रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की जीवन स्मृति में से एक अंश मैंने जो आपके साथ साझा किया। आज से कोई 200 साल पहले फ्रांस में जो भयंकर जन क्रांति हुई थी उसका प्रभाव विश्व के सभी देशों पर पड़ा था। वह भयंकर विद्रोह इस बात का प्रमाण था कि तत्कालीन फ्रांस के में जीवन मूल्यों का अवमूल्यन सा हो गया था। उस समय के फ्रांसीसी बुद्धिजीवी अपने देशवासियों की सांस्कृतिक गतिविधियों का लेखा जोखा लेने लगे थे और उनमें अग्रगण्य थे। जिन्होंने प्रथम विश्वकोश की रचना की थी वे थे जिंदोदेरी रूसो, जिन्होंने सामाजिक मानदंड की व्याख्या की थी, और वोल्टेयर, जिन्होंने अपने दार्शनिक विचारों से इस युग को चिंतन से जी जोड़ा था। इन्हीं मनीषियों ने बर्नार्ड दे सेंट पियर भी थे जिन्होंने मॉरिशस की यात्रा, प्रकृति का अध्याय और पोले वर्जिनी जैसे ग्रंथ लिखे। उन्होंने पोले वर्जिनी उपन्यास में एक ओर भारत की बुरी बुरी प्रशंसा की तो दूसरी ओर तत्कालीन फ्रांस के अति कटु आलोचना भी की। इस दृष्टि से 1998 में जन क्रांति और पोल वर्जिनी के प्रकाशन के लिए हमेशा याद किया जाता है। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में फ्रांस के हार्व शहर में एक बुजुर्वा परिवार में बर्नार्ड दे सेंट पियर का जन्म हुआ था और उन्हें वे एक बचपन से ही बहुत मेधावी थे। गणित में उन्हें पुरस्कार भी मिला था और जब वे मेडागास्कर से मॉरिशस आए तो उन्होंने, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मॉरिशस यात्रा, प्रकृति के अध्याय, पोले वर्जिनी के ग्रंथ लिखे। वैसे तो पोले वर्जिनी का प्रकाशन प्रकृति के अध्ययन ग्रंथ में हुआ, इसके छपते ही इसको दुनिया भर में बहुत प्रसिद्धि मिली। फिर तो उनको एक से एक ओहदे भी मिलने लगे, वनस्पति बाग के निर्देशक बने, नैतिक शिक्षा के अध्यापक और फ्रेंच अकादमी के सदस्य भी बने। बर्नार्ड दे सेंट पियर को अपने मित्र मुदाव के साथ मेडागास्कर आए जहाँ खुल्लम खुला दासों का व्यापार होता था। अपने मित्रों को भी इस व्यापार के संलग्न देखकर सेंट पियर को आन गिलानी हुई, पर उन्होंने अपनी इस उपन्यास पोले वर्जिनी में दो पर्यटक महिलाओं की मार्मिक कहानी वर्णित की है। इनमें एक पॉल को और दूसरी वर्जिनी को जन्म देती है। दोनों बच्चों को पिता का स्नेह उपलब्ध नहीं होता, इनकी देखरेख डेमेगो और मारी नाम की दास दासियों द्वारा होती है। दोनों महिलाओं की झोपड़ियां आमने सामने पोर्ट लुई शहर के पीछे की पादरी घाटी में बनी होती हैं। जब तक इन परिवारों के सदस्यों के मन से में धन के प्रति आकर्षण पैदा नहीं होता, इनका जीवन सुखी होता है। किंतु जैसे ही वर्जिनी की माँ को पता चलता है कि उसकी पैतृक संपत्ति का अधिकारिणी वर्जिनी बन सकती है, वह अपनी बेटी को फ्रांस भेज देती है। वहाँ भुआ वर्जिनी की शिक्षा, देखरेख और उसे एक आधुनिक नारी बनाना चाहती है और उसका विवाह किसी संपन्न लॉर्ड से करना चाहती है। इसी बिंदु पर यह कथा दुखात्मक मोड़ ले लेती है। श्रोताओं, वर्जिनी ने ज्यों ही पादरी की घाटी को छोड़ा, सुख और शांति के इस अंचल ने शोक और आंचल धारण कर लिया। चारों ओर उदासी छाई हुई थी। घाटी के पशु पक्षी प्यारी वर्जिनी की खोज में रहते। सभी पक्षी वर्जिनी के हाथ से दाने चुगने के लिए अधीर होते। वर्जिनी को फ्रांस बिल्कुल नहीं भाया। वहाँ के सभ्य समाज से उसे भी मैं अत्यंत गरीब हूँ, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, मेरे कपड़े तक बुआ के खरीदे हुए हैं। और मेरी जन्मभूमि की बातें सुनकर वह कहती कि ऐसे लगता है कि यही देश फ्रांस जंगलियों का देश है, हमारी पवित्र भूमि मॉरिशस नहीं। जब विर्जिनी फ्रांस से सभ्य समाज में घुल मिल नहीं सकी, तब उसे पाषाण हृदय बुआ ने उसे भी अपने पैतृक संपत्ति से वंचित कर दिया। और अभगिनी युवती को ऐसे जहाज़ में ज़बरदस्ती विदा कर दिया जो तूफानी मौसम में मॉरिशस पहुंच सकता था। फिर हुआ क्या, वह जहाज़ मॉरिशस के उत्तर में पहुंचकर एक भीषण तूफान में फंस गया और द्वीप के निकट सैकड़ों लोगों के सामने चट्टानों से टकराकर चकनाचूर हो गया। वर्जिनी की लाश समुद्र तट पर मिली। इस असहाय दृश्य को देखकर लोगों का विश्वास डावाडोल हो गया। दोनों माताएं दाह

0: दर्शाने के लिए। फिर पोले व्याजिनी की कथा तो बहुत चर्चित रही, पर हमारे ही देश की एक लेखिका कल्पना लाल जी ने इसका रूपांतर किया और इसे अमर गीत, उसे काव्य रूप देते हुए अमर गीत की रचना की। उसी की दो पंक्तियों के साथ मैं कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाऊंगी। इस घाटी का क्या कहना, कितनी आकर्षक, कैसी सुंदर, नदियां बहती कर कल कल कल, झरने बहते झर झर झर झर, गुंजायमान निरंतर रहती, जंगली पक्षियों के कलरव कर मन मेरा भी मुग्ध हुआ, ऐसा मनमोहक दृश्य देखकर मन पंछी था डोल रहा, खग कुल कुल कुल सा बोल रहा, संध्या की पावन बेला में हर भेद हृदय का खोल रहा, आशाओं के दीप सजाए नवजात पुष्प था खिल रहा, उन पर प्रेम सुधा बरसाने की नटखट भंवरा भी झूल रहा, दृष्टि पड़ी तब अनायास ही खंडर की खामोशी पर, बूढ़ा एक वहां था बैठा तत्पर वे नीर बहाने पर। ऐसी सुंदर रचनाएं पोले व्याजिनी पर की गई, उसे काव्य रूप भी दिया गया और इस पोले व्याजिनी के उपन्यास के बहुत सारी भाषाओं में, जर्मन, फ्रेंच तो था ही बेनार्ड डे सैपिया द्वारा, पर जर्मन, रूसी, भारत की अनेक भाषाओं में भी इसका अनुवाद हुआ और ये एक चर्चित कहानी है जिसे हमारे देश के छात्रों को तो पढ़ना ही है, पर हमारे स्थानीय कहानीकार ने इसको एक सुंदर रूप दिया है जिसे अमर प्रेम नामक संग्रह है और दूसरा श्रीमती कल्पना नाल जी ने उसे अमर गीत का रूप दिया है। तो लेखक बेनार्ड डे सैंपियर की एक उपन्यास का आज हमने दो रूपों में चर्चा की, जो था अमर प्रेम और दूसरा था अमर गीत। श्रोताओं, हम एक दूसरे के साथ ऐसी कहानियाँ बांटते रहें, ऐसे अनुवाद होते रहें, तो हिंदी का पर्याप्त रूप से जो संधि है, जो पुल बनने चाहिए, वो बन पाएंगे, क्योंकि एक कहानी जो फ्रेंच में लिखी गई उसका अनुवाद दूसरी भाषा में हो और फिर वो अन्य भाषाओं में हो, तो ऐसे ही तो साहित्य एक दूसरे तक पहुंच पाएगा। श्रोताओं, आपने इस कार्यक्रम को ध्यान से सुना, बहुत अच्छा लगा। एक अन्य कार्यक्रम के साथ फिर जुड़ेंगे। प्रकाश कार्यक्रम में आज इतना ही। कवीश ने हमारा सहयोग दिया और आप तक ये कार्यक्रम पहुंचाने में उनके सहयोग के लिए हम आभार प्रकट करते हैं। श्रोताओं, आज के लिए इतना ही। शुभ संध्या।
1: अभी आप सुन रहे थे पाक्षिक कार्यक्रम प्रकाश, श्रीमती अंजू गर्वरन की प्रस्तुति।

0: On the hour, every hour. Radio Marches.
1: बचपन ऐसा मीठा मीठा प्यारा प्यारा बचपन ऐसा मीठा मीठा प्यारा प्यारा MBC रेडियो आपके साथ।

0: बचपन ऐसा मीठा मीठा प्यारा प्यारा।
1: बिल्कुल जी, स्टूडियो की घड़ी में फिलहाल 5:34 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं बचपन ऐसा ऑन रेडियो मॉरिशस। जी हाँ, आज मंडे 11 मई 2024 है और सारे बच्चों का और उनके मम्मी पापा का भी हम, पेरेंट्स का भी हम स्वागत करना चाहेंगे इस खूबसूरत से शो में, जहाँ पे गिनिशा आ गई है आप लोगों का साथ निभाने के लिए। बिल्कुल बच्चे, तो वैसे मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि मौसम बदल रहा है और ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है, इसलिए अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। गर्म कपड़े पहनिए, ठंडा पानी जो है ना कम लीजिए और हेल्दी खाना खाइए। स्वस्थ बचपन ही खुश बचपन होता है। सुनते रहिए बचपन ऐसा सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर, जहाँ पे थोड़े से हम आपको एडवाइस देंगे कि आपको ये विंटर कैसे काटना है और अच्छे अच्छे आदतें पालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो चलिए जी, ये अगला गाना जो है हम खासकर उन सारे बच्चों के लिए और उनके मम्मी पापा और उनके दादा दादी जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं ऑन रेडियो मॉरिशस, उनके लिए डेडिकेट करना चाहेंगे। वैसे खुश रहने को ज़रूरी क्या होता है, हम तो कहेंगे प्यार।

0: बचपन ऐसा मीठा मीठा प्यारा प्यारा।
1: तो चलिए जो चेक होता है, हम स्टूडियो की घड़ी में 5:42 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं बचपन ऐसा। जी हाँ, जहाँ पे इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत गानों को हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए, जैसे कि आपको पता है, हमने याद दिलाया कि मौसम बदल रहा है बच्चों, तो विंटर का मौसम आ गया है। सुबह जल्दी उठकर हल्का एक्सरसाइज करिए, गर्म दूध पीजिए और मोबाइल से थोड़ा दूर रहकर आउटडोर गेम्स जो हैं खेलिए। अच्छी आदतें ही आपको स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बना सकते हैं। जी हाँ, ये जो अच्छी आदतें हैं, अगर आप अभी से ही उसको डेवलप करेंगे तो ऑफ कोर्स आगे जाके आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। ये प्यारी सीख सलाह लेकर हम आए हैं इस खूबसूरत से शो में बचपन ऐसा, जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मॉरिशस।

0: बचपन ऐसा मीठा मीठा प्यारा प्यारा, बचपन ऐसा मीठा मीठा प्यारा प्यारा, एमबीसी रेडियो आपके साथ।
1: बिल्कुल जी, हमेशा आपका साथ यूं ही देते रहेंगे और इन खूबसूरत और खूबसूरत प्यारे गाने जो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे जो साथ दे रहे हैं। बिल्कुल बच्चों, बदलते मौसम में बार बार हाथ धोना, साफ सफाई रखना और टाइम पर सोना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हेल्दी हैबिट से बीमारियाँ दूर रहती हैं, तो मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल हमेशा रखिए, क्योंकि आप सब जो है ना हमारा सुंदर कल है। बिल्कुल ठंडी हवाओं के साथ आ गया है प्यारा विंटर सीजन, लेकिन साथ ही जरूरी है अपनी सेहत का भी ध्यान रखना, यानी कि जंक फूड जो है कम खाना और अगर जितना हो सके कि घर का खाना खा लेना और फ्रूट्स ज़्यादा खा लीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है विटामिन सी जो है प्रोड्यूस करते हैं एंड आप अपने इम्यून सिस्टम जो है उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। और गर्म पानी पीना भूलिएगा मत, हेल्दी बच्चे ही ब्राइट फ्यूचर बनाते हैं। तो ऐसे यूँ ही बस हमारा साथ देते रहना और इन खूबसूरत गानों को आप एंजॉय करते रहना। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए और इन अच्छे अच्छे हैबिट्स को आप प्रैक्टिकल बना लीजिए, अपनी डेली लाइफ की रूटीन में जरूर डालिए। यू आर गोइंग टू सी कि आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी।

बचपन ऐसा मीठा मीठा प्यारा प्यारा, बचपन ऐसा मीठा मीठा प्यारा प्यारा। MBC रेडियो आपके साथ।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: शाम के 6 बजे है। सभी को मेरा नमस्कार। समाचारों में आप सभी का हम स्वागत।

0: बात करते हैं। सबसे पहले चलिए जानते हैं आज की सुर्खियां। मॉरिशस लोकतंत्र और सुप्रशासन का एक सशक्त उदाहरण, ये बात कल रात प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम के साथ मुलाकात के बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने एमबीसी की टीम को दिए गए एक विशेष साक्षात्कार में कही। दोनों महानुभावों ने जलवायु परिवर्तन, बहुपक्षवाद और वैश्विक वित्तीय प्रणाली में सुधार जैसी चुनौतियों पर बात की। नैरोबी में आज एक बिजनेस फोरम भी लगा। विश्व बैंक की सदस्य संस्था इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने मॉरिशस पर्यटन पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जो मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में पर्यटन क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालती है। पर्यटन सेक्टर की स्थिरता और मजबूती सुनिश्चित करने के लिए मध्यम और दीर्घकालीन कदमों की सिफारिश पेश की गई। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत आज लगे एक परामर्श कार्यशाला के दौरान परिवहन मंत्री उस्मान महमूद ने सड़कों पर जिम्मेदार और सुरक्षित व्यवहार प्रोत्साहित करने में शिक्षा के महत्व पर बल दिया। इस महीने से देश की पूर्व प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं में सड़क सुरक्षा सिद्धांत सिखाने के लिए 6,000 से ज्यादा शिक्षकों को प्रशिक्षण दी जाएगी। भारत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लिया। ज्योतिर्लिंग अभिषेक के साथ इस विशेष अवसर पर उन्होंने एक कमेमोरेटिव डाक टिकट और एक सिक्के की लॉन्चिंग की। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम मॉरिशस समय अनुसार कल रात करीब 11 बजे नैरोबी के जोमो केन्याटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे। उनके स्वागत के लिए केन्या के स्वास्थ्य मंत्री अदेन ज्वाले वहां पहुंचे हुए थे। मॉरिशस डेलीगेशन में प्रधानमंत्री ने के साथ जूनियर मंत्री धनेश्वर दामरी और फैब्रिस डेविड, विदेश मामलों के सचिव रॉय बिसुंदियाल, फ्रांस के लिए मॉरिशस के राजदूत जोएल हॉल्ट तथा अफ्रीकी संघ में मॉरिशस के स्थायी प्रतिनिधि इंद्रजीत बाबुआ शामिल रहे। हवाई अड्डे पर स्टेट लाउंज में विशिष्ट अतिथि पुस्तिका में डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने मॉरिशस और केन्या के बीच कायम घनिष्ठ संबंधों का खास उल्लेख किया और कहा कि केन्या वो पहला देश था जहां उन्होंने यात्रा की थी जब वे सरसिव सागर रामगुलाम के साथ नैरोबी में केन्याई राष्ट्रपति जोमो केन्याटा से मुलाकात के लिए गए हुए थे, जिसके बाद केन्या के राष्ट्रपति ने मॉरिशस के संविधान का मसौदा तैयार करने में मदद देने के लिए प्रतिभाशाली न्यायिक सलाहकार टॉम बोया को मॉरिशस भेजा था। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम उन करीब 40 अफ्रीकी राष्ट्र नेताओं में शामिल हैं जो फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल माक्रों के साथ अफ्रीका फॉरवर्ड समिट 2026 में भाग ले रहे हैं। इस उच्च स्तरीय बैठक का उद्घाटन आज केन्या की राजधानी में किया गया। और मॉरिशस लोकतंत्र और सुप्रशासन का एक सशक्त उदाहरण है, ये बात कर रात प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम के साथ मुलाकात के बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने एमबीसी की टीम को दिए गए एक विशेष इंटरव्यू में कही। दोनों महानुभावों ने जलवायु परिवर्तन, बहुपक्षवाद और वैश्विक वित्तीय प्रणाली में सुधार जैसी चुनौतियों पर भी बात की। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मॉरिशस को दिए जाने वाले निरंतर समर्थन के लिए प्रधानमंत्री ने आभार प्रकट किया। अब्दुल बुला की रजनी बिकर।
1: कल रात नैरोबी में जोमो केन्याटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में राष्ट्रसंघ महासचिव अंतोनियो गुटेरेस और प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम के बीच बहुत अच्छी मुलाकात चली। दोनों ही महानुभाव केन्या एक साथ ही पहुंचे और उन्होंने हवाई अड्डे के स्टेट लाउंज में भेंट करने का निर्णय लिया। उनके बीच करीब 10 मिनट तक बातचीत चली, जिसके दौरान मॉरिशस और राष्ट्रसंघ के बीच बेहतरीन संबंधों की चर्चा की गई। मौके पर मॉरिशस के लिए कई अहम दस्तावेजों पर भी चर्चा की गई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जलवायु परिवर्तन, बहुपक्षीय मुद्दों तथा वित्तीय और जियोपॉलिटिकल चुनौतियों की बात शामिल। इस मुलाकात के बाद अंतोनियो गुटेरेस और डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने एमबीसी को एक विशेष भेंटवार्ता दी। राष्ट्रसंघ महासचिव ने उन चुनौतियों का जिक्र किया जिनका सामना छोटे द्वीपीय देशों को वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में करना पड़ रहा है।

0: welcome you. Maybe some words after your meeting with the Prime Minister.
1: Well, Mauritius is for us a fundamental partner. Mauritius is
2: Antonio Guterres ne kaha Mauritius hamare liye ek mahatvapurna partner hai. Mauritius bahupakshiya pehlu को लेकर राष्ट्र संघ के प्रति कटिबद्ध है. मॉरिशस एक छोटा द्वीपीय विकासशील देश है और ये हमारे लिए प्राथमिकता है, चाहे जलवायु को लेकर हो, अडैप्टेशन अनुकूल कदम उठाने के लिए हो, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सुधार प्रणाली को लेकर हो. मध्यम आय वाले देशों के लिए समर्थन की जरूरत है. हमारे बीच घनिष्ठ सहयोग कायम है इन सुधारों के सिलसिले में. लोकतंत्र एवं सुप्रशासन के लिए एक बेहतरीन मिसाल है मॉरिशस, अन्यों के लिए एक सीख.
1: I believe is a lesson for so many others.
2: उधर प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के प्रति कई सहयोग क्षेत्रों में राष्ट्र संघ के निरंतर समर्थन की बात कही, जैसे कि हाल में सड़क सुरक्षा के संबंध में. प्रधानमंत्री ने कहा, लंबे समय से उनके साथ मित्रता कायम है. एंटोनियो गुटेरेस जब से इंटरनेशनल सोशलिस्ट में थे, वे हमेशा से अच्छी सलाह देते रहे हैं. निज गए थे तो वे ही पहले व्यक्ति रहे जो मिलने आए, और उनसे मांग की गई तो उन्होंने श्री टॉड का नाम लिया जो सड़क दुर्घटनाओं के सिलसिले में सहायता प्रदान कर रहे
3: हैं.
2: इस मुलाकात से एक बार फिर से मॉरिशस और राष्ट्र संघ के बीच घनिष्ठ संबंधों की झलक मिलती है, मुख्य रूप से एक ऐसी अवधि में जब विश्व की बड़ी बड़ी चुनौतियों के चलते अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है.
4: खबरों को हम जारी रखते हैं. नैरोबी में आज एक बिजनेस फोरम लगाया गया जिसके तहत जूनियर वित्त मंत्री धनेश्वर दामरी ने एक राउंड टेबल की अध्यक्षता संभाली. इस समय 2000 से ज़्यादा निवेशकों और व्यापारिक ऑपरेटरों ने भाग लिया. मॉरिशस डेलीगेशन में शामिल मॉरिशस निजी से 50 से ज़्यादा प्रतिनिधियों ने इस कार्य सत्र में भाग लिया. विश्व बैंक की सदस्य संस्था इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने मॉरिशस पर्यटन पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जो मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में पर्यटन क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालती है. पर्यटन सेक्टर की स्थिरता और मजबूती सुनिश्चित करने के लिए मध्यम और दीर्घकालीन कदमों की सिफारिश पेश की गई. इस रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन परियोजनाओं के समन्वय के वास्ते एक क्लाइमेट रेजिलियंट टूरिज्म टास्क फोर्स की स्थापना का प्रस्ताव भी दिया गया है.
5: हिंद महासागर से जुड़े
4: खबरों को हम जारी रखते हैं. नई दिल्ली में 7 और 8 मई को बदलती दुनिया में हिंद महासागरीय क्षेत्र विषय पर 10वां इंडियन ओशन डायलॉग का आयोजन किया गया. इसमें मॉरिशस का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री रितेश रामफल ने किया. इस उच्च स्तरीय बैठक का उद्देश्य हिंद महासागर इलाके में महत्वपूर्ण विकास और बदलाव तथा उभरती चुनौतियों पर चर्चा करना रहा. क्लोदेट जोफा, यक्षना मिश्रा.
5: हिंद महासागर से जुड़े देशों के बीच यह संवाद भारत की महासागर विजन से प्रेरित है जिसका उद्देश्य एक शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद महासागर क्षेत्र का निर्माण करना है. समुद्री सुरक्षा चर्चा के केंद्र में रही क्योंकि हिंद महासागर वैश्विक व्यापार का एक महत्वपूर्ण मार्ग है. ये क्षेत्र समुद्री डकैती, अवैध मछली मार और गैरकानूनी तस्करी जैसी लगातार बनी रहने वाली चुनौतियों का भी सामना कर रहा है जिनसे निपटने के लिए समन्वित बहुपक्षीय प्रयासों की आवश्यकता है.
6: In today's uncertain geopolitical environment,
5: भू राजनीतिक स्थिति के चलते आपूर्ति और वितरण प्रणालियां खतरे में हैं. ऐसे में हिंद महासागर का महत्व बढ़ गया है. यहां के देशों को साथ मिलकर काम करना चाहिए, सहयोग मजबूत करना चाहिए.
6: Lies the Indian Ocean, whose growing vulnerability only reinforces its strategic importance.
7: Mauritius was again privileged in 2025 when Sri Narendra Modi.
5: 2025 में अपने मॉरिशस दौरे के तहत श्री नरेंद्र मोदी ने सागर विजन को विकसित कर महासागर की शुरुआत की. ये प्रोग्राम हिंद महासागर से परे दक्षिणी हिस्से में भी समुद्री संरक्षण को ठोस करता है.

0: ब्लू इकोनॉमी, व्यापार और निवेश तथा प्रकोपों के संचालन पर भी चर्चा हुई। तटीय देशों ने यह स्वीकार किया कि समुद्री संसाधनों का सतत प्रबंधन एक बड़े आर्थिक अवसर का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका अभी तक पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाया है।
1: उम्का फाउंडेशन के खिलाफ शिकायतें बढ़ रही हैं। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने फिलहाल पूर्व मरीजों या उनके परिजनों की तरफ से कम 6 शिकायतों पर कार्रवाई कर रहा है। जहां एक तरफ ये जांच चल रही है, वहीं साथ साथ स्वास्थ्य मंत्रालय भी अपनी तरफ से जानकारियां इकट्ठा कर रहा है। इस मामले में उम्का के प्रमुख का कहना है कि वे अपने ऊपर लगाए गए

0: इसी देश की पूर्व प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं में सड़क सुरक्षा सिद्धांत सिखाने के लिए 6,000 से ज्यादा शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। देश में बच्चों को डिजिटल दुनिया के खतरों से सुरक्षित रखने के मकसद से मॉरिशस टेलीकॉम ने आज माइटी प्रोटेक्ट पेरेंटल कंट्रोल सेवा की लॉन्चिंग की। इसके अंतर्गत युवाओं को इंटरनेट और स्क्रीन के इस्तेमाल के बारे में बेहतर मार्गदर्शन दिया जाएगा। ये पहल बढ़ते ऑनलाइन खतरों को लेकर माता पिता की बढ़ती चिंताएं दूर करने का उद्देश्य भी रखती है। और चलिए अब एक नए डिजिटल उपकरण पर बात करते हैं जिसके माध्यम से एकता इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों को बेहतर कनेक्शन उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। कालीटीनेट नामक इस नई सेवा के जरिए एकता इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की प्रतिक्रियाएं प्राप्त कर सकेगी और ऑपरेटरों को नियमबद्ध भी किया जा सकेगा। एबेन में आज इस प्लेटफॉर्म की लॉन्चिंग की गई।
1: अपनी इंटरनेट स्पीड जांचिए ताकि आप अपने कनेक्शन की गुणवत्ता का आकलन कर सके। क्या कुछ वेबसाइट कुछ डाउनलोड करने के लिए सामान्य से अधिक समय ले रहे हैं? क्या ऑपरेटर अपने वादों पर खरा उतर रहे हैं या नहीं? इसके लिए पहले से ही ऑनलाइन टूल्स मौजूद हैं, लेकिन कालीटीनेट प्लेटफॉर्म पर परिणाम सीधे ICTA को भेजे जाते हैं। इससे अधिकारियों को ऑपरेटरों को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने और इस क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी। जनता को खुद इंटरनेट क्षमता जांचने का मौका मिलेगा, एकता स्थिति का जायजा ले पाएगा। सर्वर पर एकता को पता चलेगा कि किस इलाके में कनेक्टिविटी खराब है। हम ऑपरेटरों के साथ इस पर काम कर पाएंगे। तीन लाख 56,000 घरों के इंटरनेट से जुड़े होने और 10 लाख से अधिक मोबाइल उपयोगकर्ताओं के साथ ये टूल डिजिटल परिदृश्य में बड़ा बदलाव ला रहा है। ये उपभोक्ताओं को अधिक अधिकार देता है।
2: La vision pour Maurice, c'est pour nous faire nous pays vivre un régional leader dans AI.
1: हम मॉरिशस को AI में एक इलाकाई लीडर के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। AI के साथ नेटवर्क पर दबाव बढ़ रहा है। हम ढांचों को ठोस बनाना चाहते हैं। गवर्नमेंट प्रोग्राम ब्लूप्रिंट और AI स्ट्रेटेजी के अनुकूल हम नेट की गुणवत्ता बढ़ा रहे हैं। ICTA ने आश्वासन दिया है कि एकत्र डेटा पूरी तरह से गुमनाम रहेंगे। इस लॉन्च के दौरान ऑपरेटरों को भी इस टूल से परिचित कराया गया। अब उनके नेटवर्क के प्रदर्शन पर नियामक अधिकारियों की कड़ी नजर रहेगी।
0: विदेश में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लिया। ज्योतिर्लिंग अभिषेक के साथ साथ इस विशेष अवसर पर उन्होंने एक कमेमोरेटिव डाक टिकट और एक सिक्के की लॉन्चिंग की।
3: गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है। संरक्षण के बाद मंदिर को नया स्वरूप दिया गया। इसकी 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेकर वहां अभिषेक पूजा की। इस विशेष कुंभ अभिषेक के लिए भारत के 11 पवित्र तीर्थ स्थलों से जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाया गया। इसके साथ ही मंदिर के प्रांगण में धर्मध्वज फहराया गया। इस अमृत महोत्सव के लिए सोमनाथ मंदिर को विशेष रूप से फूलों से सजाया गया। हेलीकॉप्टर द्वारा आकाश से पुष्प भी बरसाए गए। इस खास मौके के लिए मोदी जी ने इस मंदिर के चित्र का एक कमेमोरेटिव डाक टिकट और एक सिक्के की लॉन्चिंग की। सोमनाथ की समृद्ध विरासत मनाने का ये माध्यम रहा।
4: 75 साल पहले आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना, ये कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था।
3: मोदी जी ने अपने संदेश में कहा कि सोमनाथ मंदिर

0: मंदिर का संरक्षण भारतीय इतिहास और धरोहर को सुरक्षित रखने की कोशिश दर्शाता है।
1: और कठिन वैश्विक परिस्थितियों के बीच हैदराबाद में लगे एकजुटाव के दौरान मोदी जी ने भारतीय जनता से एकजुट होकर प्रयास करने की मांग की। उन्होंने लोगों से ईंधन की बचत करने का भी आग्रह किया।
0: जहां मध्य पूर्व का संकट दुनिया भर को प्रभावित कर रहा है, वहीं भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को ऐसे कठिन समय में एकजुटता का सबूत देने की मांग की। उन्होंने समस्त जनता से संयुक्त रूप से विशेष कोशिश करने का आग्रह किया, जिससे भारत वैश्विक अस्थिरता के समय मजबूत खड़ा रह सके और इन्फ्लेशन का सामना कर सके। उन्होंने जनता से ईंधन का इस्तेमाल घटाने की मांग की।
2: हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना।
0: भारतीय प्रधानमंत्री ने साथ ही मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए सोने की खरीद से बचने की मांग की, जो सीधे विदेशी पूंजी प्रवाह पर असर करता है।
2: हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है।
0: मोदी जी ने कहा कि भारत को मजबूत रखने में जनता सबसे बड़ी भूमिका निभाती है।
1: विवरण अदिति अवतार का रहा। एक बार फिर हम लौटते हैं स्थानीय खबरों की ओर। बुलेटिन की शुरुआत में हम इसकी चर्चा कर रहे थे, वर्तमान में तैयार की जा रही राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा स्ट्रैटेजी 2026-2030 का उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र के 10 सालों की कार्य योजना के अनुरूप अगले 2030 तक सड़क हादसों में मृत्यु और गंभीरताओं में 50% तक की कमी लाना। आज एक परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां पर परिवहन मंत्री उस्मान मोहम्मद ने सड़कों पर जिम्मेदार और सुरक्षित व्यवहार प्रोत्साहित करने में शिक्षा के महत्व पर बल दिया। चलिए माधवी जागरनाथ की रिपोर्ट पर सुनते हैं याचना मिश्रा को।
3: सड़क सुरक्षा राष्ट्रीय प्राथमिकता बनी हुई है। मुख्य रूप से रोज हमारी सड़कों पर 7,40,000 से अधिक वाहनों के चलती। इसके मद्देनजर 2026-2030 राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा स्ट्रेटेजी की तैयारी चल रही है। सप्ताह की शुरुआत में रेजवी में आयोजित एक परामर्श कार्यशाला के दौरान कई पार्टनर जुटे हुए थे। इस दस्तावेज के तहत पूर्व प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल में शिक्षा की अहमियत पर जोर दिया गया। गृह मंत्रालय के कम्युनिकेशन ऑफिसर सरीना रामसरन ने कहा, पूर्व प्राथमिक कक्षा से सड़क सुरक्षा के बारे में सिखाना शुरू कर रही है। इसकी शुरुआत में ही हम अध्यापकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। पूर्व प्राथमिक के करीब 2,500 अध्यापक रोड सेफ्टी एजुकेशन के बारे में सिखा पाएंगे। बाद में संबंधित सामान भी विकसित किए जाएंगे, साथ में माध्यमिक स्तर के लिए कार्य कर रहे हैं। डे ओ और तैयार हैं, अंतर्राष्ट्रीय कंसल्टेंसी की मांग कर रहे हैं। परिवहन मंत्री उस्मान मोहम्मद ने कहा कि इस नई राष्ट्रीय स्ट्रैटेजी का मकसद है देश को राष्ट्र संघ के डिकेड ऑफ एक्शन के अनुकूल लाना। इसी उद्देश्य के साथ कि 2030 तक मृत्यु और गंभीर चोटों की संख्या 50% से घटे। उन्होंने कहा, लोगों के सोचने के ढंग की बात कर रही है, संस्कृति बदलने की बात कर रही है। शिक्षा महत्वपूर्ण है, चाहे कितने भी अच्छे कानून लाए, कानून का पालन न करवाए जाए और लोगों के सोचने के ढंग को न बदलें तो कुछ खास नहीं किया जा सकता है। ख्याल रखना चाहिए कि जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा हो उसकी सुरक्षा हो और सड़क का इस्तेमाल करने वाले अन्य लोगों की भी सुरक्षा हो, खतरा न हो, न उसके लिए और न अन्यों के लिए। मॉरिशस विश्वविद्यालय इस दस्तावेज की तैयारी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये सड़क सुरक्षा के नेशनल ऑब्जर्वेटरी के लिए भी जिम्मेदार है। इसके प्रो वाइस चांसलर अकादेमिया के प्रोफेसर पोनादुरई रामासामी ने कहा, मॉरिशस विश्वविद्यालय में विद्यार्थी अपने फाइनल ईयर में अपनी परियोजना पेश करते हैं।

0: हैं, पीएचडी के विद्यार्थी भी हैं, साथ ही रिसर्च अफसर भी रोड सेफ्टी से संबंधित प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। इस नई नेशनल रोड सेफ्टी स्ट्रेटेजी के अंतर्गत मूल ढांचे में सुधार लाए जाएंगे और फैसला लेते वक्त टेक्नोलॉजी और नवाचार को भी ध्यान में रखा जाएगा।
1: विवरण रजनी भिकर का रहा। और अब मौसम का हाल। हमारे इलाके पर अस्थिर हवाएं बह रही हैं और अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, रात को मौसम काफ़ी अच्छा रहेगा, सिवाय देश के पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लाटू पर बादल कुछ घिर आएंगे और हल्की वर्षा होगी। हवा पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। दक्षिणी समुद्र में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। जनता से दूर समुद्र में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान, सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 17 से 19, अधिकतम 23 से 25, साहली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 से 24, अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय कल सुबह 6:30 बजे।

0: 6:24 हुए हैं। देश विदेश तथा मौसम के हाल के साथ ही ये बुलेटिन यहाँ पर समाप्त हो चला। हम तकनीकी सहायक फैजान को धन्यवाद देते हैं, साथ में पूरा समाचार विभाग को भी। कुछ ही समय में हम बढ़ेंगे शोक समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.

भुजुलेन पायुत काठोबोन में, भुजुलेन पायुत काठोबोन में 72 साल की 72 years old श्री भानुदत्त भतु, श्री भानुदत्त भतु जिन्हें लोग आनंद भतु नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थ है कल दिन के दो बजे इनके मकान भुजुलेन पायुत काठोबोन से उठाकर थामा मेर की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 2 PM। रेलवे रोड केवल नगर बैरिव में 84 साल की 84 years old श्रीमती बसंती भागीरथी, श्रीमती बसंती भागीरथी पैदाशी नाम तुकाई और जिन्हें लोग संता नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थ है कल दिन के एक बजे इनके बेटे धीरज भागीरथी के मकान रेलवे रोड केवल नगर बैरिव से उठाकर ओलिविया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 1 PM। नंबर 82 रॉयल रोड पायुत काठोबोन में 93 साल के 93 years old श्री हीरामन अनूप जिन्हें लोग जगदेव नाम से भी जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थ ही कल सुबह 10 बजे इनके मकान नंबर 82 रॉयल रोड पायुत काठोबोन से उठाकर बालों सुल्फेरिनो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10 AM। शिवाला रेलवे रोड मोताई ब्लांश में 69 साल की 69 years old श्रीमती पारो सिवनुत पैदाशी नाम सुभा और जिन्हें लोग पारो नाम से अधिक जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के दो बजे इनके पति धनराज सिवनुत के मकान शिवाला रेलवे रोड मोताई ब्लांश से उठाकर मोताई ब्लांश की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 2 PM। रामलोल स्ट्रीट कंकारोल रिविया दे क्रेओल में 70 साल की 70 years old श्रीमती सुमित बना पैदाशी नाम लद्रू और जिन्हें लोग सरोज नाम से भी जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के डेढ़ बजे इनके पति किसुन बना के मकान रामलोल स्ट्रीट कंकारोल रिविया दे क्रेओल से उठाकर तोबुलेन मेबग की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 1:30 PM। नंबर 4 जॉर्ज विक्टोर केवेन पोर्टली समय 69 साल के 69 years old श्री जयन कुमार फूलबोसिया जिन्हें लोग जयन नाम से अधिक जानते थे कि मृत्यु हो गई है। वे पहले कालीमाइकासी के अध्यक्ष थे। इनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे इनके मकान नंबर 4 रोज विक्टो कावेन पोर्टलिस से उठाकर ले सालीन की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 12 PM। और रॉयल रोड लाल माटी में 72 साल की 72 years old श्री सच्चिदानंद रामास्वामी जिन्हें लोग सत्यानंद कोठाकिया नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थ है कल दिन के 11 बजे इनकी पत्नी मनीता रामास्वामी के मकान रॉयल रोड लाल माटी से उठाकर मेजिन कौदमास की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 11 AM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।

0: आज की सूचनाएं।
1: हनुमान जयंती के अवसर पर स्वामी श्रीनिवासाचार्य बद्रिका आश्रमम द्वारा विशेष श्री पंचमुखी हनुमान प्रार्थना का आयोजन किया जाएगा। ये प्रार्थना 12 मई 2026 को शाम 5:30 बजे से रात्रि के 8:30 बजे तक फॉरेस्ट साइड सीजे मिल स्थित मंदिर परिसर में होगी। सभी भक्तों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर आशीर्वाद प्राप्त करें।
2: MBC Radio, 24 hours a day.
3: सीबी की तरफ से एक विज्ञप्ति सुनिए। सीबी पिछित हफ्ते के रहने वालों को सूचित किया जाता है। मॉर्सेश मो मस्कल रेनियो मोरेल कैप मालेरेux अंसलारे कालोडिन सैं फ्रांसवा और ग्रांगोप के लाहुत कोचिया को सूचित किया जाता है कि मंगलवार 12 मई को सुबह के 8:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक मरम्मत कार्यों के कारण बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। सीबी अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है।
4: On the hour, every hour, Radio Marches. This is Radio Marches.
5: 您好
6: ，Assalamu alaikum.
7: Welcome to Mauritius.
8: Namaskar.
9: Shodharandiri ki hrudaya purvaka namaskaram.
10: Ungal anaivarukkum vanakkam.
11: Radio Mauritius par dil se swagat hai aap sabhi ka.
12: 听众朋友，凡尔歌曲选赏节目差唔多接近尾声，要我同各位听众朋友告别咧。我等人在下次同一节目时间再见。
13: 听众朋友，大家好，我是毛里求斯人民广播电台886频道，我是今本日嘅节目主持人兼，欢迎大家来到毛里求斯人民广播电台。今本日我为大家准备嘅一首优美动听嘅歌曲，好，下面。让我们一起来收听第一首。

如果那两个字没有颤抖，我不会发现我难受，怎么说出口？

0: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।
1: बजले प्रभु का नाम, समस्त श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। जहां से भी आप हमें सुन रहे हैं, हमारा सादर प्रणाम। श्रोताओं, प्रभु का साथ हो तो जीवन का हर पल सुंदर लगता है। प्रभु का नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। तो चलिए इसी शुभ विचारों के साथ कार्यक्रम की

श्रोताओं, प्रभु केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हर उस दिल में बसते हैं जहाँ प्रेम, दया और सच्चाई होती है। जब जीवन की राह कठिन लगती है, मन को नई शक्ति देता है।

कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं। वैसे श्रोताओं, प्रभु हमें सिखाते हैं कि धैर्य और विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हर सुख और दुख में उनका आशीर्वाद छिपा होता है।

श्रोताओं, जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रभु का नाम लेता है उनके जीवन में शांति और सकारात्मकता बनी रहती है। प्रेम ऐसा दीपक है जो अंधेरे समय में भी उम्मीद लेकर जरूर आता है।

तो चलिए श्रोताओ, भजरे प्रभु का नाम इस कार्यक्रम का समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं। साथ निभाने के लिए धन्यवाद। हमारे तकनीकी सहायक यूसुफ को हम धन्यवाद देंगे। आप सभी को हम कहेंगे शुभ रात्रि।

हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स इस्लाम में अच्छा तरीक़ा निकालता है उसको उसका सवाब और उसके बाद जो उस तरीक़े पर अमल करेंगे उन सब का सवाब मिलेगा और अमल करने वालों का सवाब भी कम नहीं किया जाता। और जो शख्स इस्लाम में किसी बुरे तरीक़े की बुनियाद डालता है उसकी गर्दन पर उसका गुनाह और उन तमाम लोगों का गुनाह होता है जो उसके बाद उस तरीक़े पर अमल करेंगे, और अमल करने वालों के ज़िम्मे जो गुनाह हैं उनकी भी कुछ कमी नहीं आती। बहावाला इब्ने माजा शरीफ।

इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। आप तमाम सामईन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। मिसेस अंजू ने टेक्निक में हमारा साथ दिया, हम इनके तआवुन के लिए भी इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयद आसुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: घड़ी मिलाला ये बगत रात के ठीक 9 बजे बात सुनो तो रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस और प्रस्तुत बात हर पसंदीदा प्रोग्राम भोजपुरी टरका
1: 7 days a week, 24 hours a day. My, this is Radio Mauritius.
2: Continuous music. RM3.
3: भोजपुरी तड़का
4: भोजपुरी तड़का
3: भोजपुरी तड़का तोहर जीवन में स्वाद आने खाती
4: गमन जलसा हंगामा
5: एक से एक जोली भोजपुरी की प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो गमन धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो
0: रात के 9:01 हुआ था आज लिंदी की रात लिंदी 11 मई 2026 सबको क्या जय प्रताप सिंह से तालुक की ओर से प्यार भरा नमस्ते और सलाम भोजपुरी तड़का कार्यक्रम अभी से लेकर रात के 11 बजे लिए नाच गाना म्यूजिक धूम धड़ाका तलों के साथ और आशा करते हैं कि तलोक भी हमने के साथ दे बजा मन करता को नवी भोजपुरी गीत सुने की था नंबर वॉक मैया का जगदेव जगोविद साइक 402-808-0085 और जब हमने आया था तो गमट ही गमट होला तो लोग जाने ना सर बोले कि नहीं चेहला चलो सुनने जा ये पहल का गाना नीरज गुप मधु की आवाज़ में मोनिका 2 है ये चलाते से सब रेडियो मॉरिशस सब और सब रेडियो मनोरंजन के श्रोता लोग के नाम

आजकल तो अंदाजा लगा हुआ तो है कि धीरे धीरे तापमान में गिरावट आवत है, यानी कि धीरे धीरे हमने सर्दी के मौसम में जाते ही सा विंटर सीजन और सर्दी मौसम में सर्दी जुकाम खांसी से बचे करते चहला ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी वाला फल खाए के, जैसे कि कौन कौन फल है जिकर में विटामिन सी बा, जोरोंस नारंगी जिकर में विटामिन सी बा, लेमन नींबू इकड़ो चाह खाए के, फिर है गुआवा गुयाव, आमला, स्ट्रॉबेरी, कीवी, पपाय, पाइनएप्पल, आम, अमरा, और जब अमरा के बात करते हैं सर तो अमरा के कुछ हैं या अमरा के अचार बहुत अच्छा विटामिन सी भरल बैकर में, और विटामिन सी लेबत सर्दी खांसी जुकाम से दूर रह बजा। चला भी अगला गीत सुनब जाए, लाली लाली कान पर आती मिराई में मकई, संजय बिहारी गीत तोहर खाती रूप तोहर पत्नी सुरेखा, बेटा कुशल, बहू, बेटी रिंकू, दामाद और सब बिहारी परिवार के नाम है। गीत संगीता अमीरन की ओर से, रीता सतालुच के नाम है। गीत लाली लाली कान पर आती

लाली लाली कान पलाते मिराई में मकई हाँ तू भी तो लगे माटी के कोई टुकड़ा हुई तो कोनो ना कोनो चीज पलौते रहिए कह के आगे दिन काम आई दुनिया में दिखत ही सके से युद्ध हुआ था ना तो चेहरा खिजाली मौते से बच्चे कहते चेहरा कोनो ना कोनो चीज पलौते के पारिस नहीं करिए आलसी नहीं बनिया समय रही तो जरूर कुछ ना कुछ पलौते ताकि तोहरा तोहर लड़का लोग के मिली खाई की। रात के 9:13 भोजपुरी तड़का प्रोग्राम आओ जय प्रताप सिंह के साथ रात के 11 बजे संगत है अक्सर हमने की रास्ता पर सुननी रास्ता रेडियो टीवी पर सोशल मीडिया पर के एक्सीडेंट होते रहेगा एगो कारण है एक्सीडेंट के मोबाइल फोन के यूज़ कर ला जब ड्राइव करा था तभी को लालवा निकल बा नियम निकल बा कि जो आदमी पोताब ड्राइव करा था पोताब से भी करता है लापोली थोड़ा पकड़ लेते तो और लिसेंस अकेला छीन जाए और ढेर पर परी रामान पे ही करे कि तो ये कौन चला जब ड्राइव करी रहा सर तो हमने के जो न ब्रेक लगाए के या ऑब्स्टेकल देखे के देरी हो जाला एक्सीडेंट के रिस्क बढ़े रहा कहे कि हमने एगो हाथ में पोताब ले से एगो हाथ में बोलो बा अब SMS करते ऐसा या कोई से बच्चा थे तो कंसंट्रेशन थोड़ा गड़बड़ा जाला जब तू टेलीफोन ही करते हुआ ड्राइव करते हुआ तो तू अपन जान डाले तो खतरा में और जितना पासाजे बा उकड़ो जान और जितना पदयात्री लोग चला

0: डाल दिया या आपके टैंक कर दिया पोता वाकई। ज़रूरी कॉल हुई तो साथ में गाड़ी रोक के तब बात करिया। नेविगेशन पहले सेट कर ला, मैसेज के रिप्लाई करिया बाद में। सबसे ज़रूरी है तो हर जान और जितना पसाजे की जान बा वो ज़रूरी है। पोता में चाहे कितना भी कॉल आए जब तू ड्राइव करते हुआ तो कॉल ना लिया, पोता बाकी साइलेंट मोड में डाल दिया या तय कर दिया, इसी दुर्घटना से कब्जा बचे। और अगला गीत माम जिलिया मीरा मोहन ग्यावल गीत है, गीत सुहासिनी की ओर से चलावत देखते अगर घरों इलाका तेर सुहासिनी की ओर से घरों इलाका दुगो बेटा और सब परिवार खातिर चाची प्रभावती लोल रह नोबेल फॉन्स गीत और खातिर चाचा आत्माराम गीत और खातिर चली संजय हरिचंद गीत तोहर खातिर आप हन पिता से पत्नी संध्या बेटी हुविश कर सब हरिचंद परिवार के लिए है गीत चलावती उन सब संगतियालो के नाम जो अभी नाइट शिफ्ट में काम करते हुए सर माम जेलिया
1: माम जेलिया

जैसे जैसे हमने के उम्र बढ़ते जाला, जैसे 30-40 साल हो जाला, तो सब कोई के शरीर में कोनो न कोनो प्रकार के दर्द शुरू हो जाला। कबो गोर में दर्द, कबो हाथ में दर्द, कबो कमर में दर्द, कबो ठेवनी में। तो इस सब दर्द से बचे खातिर कुछ ना करे के रोज के चला कसरत करे के स्ट्रेचिंग करिया। हर दिन 20-30 मिनट तक जइया मौस मौस से लामौस करिया, हल्का एक्सरसाइज करिया। स्ट्रेचिंग से मसल्स फ्लेक्सिबल रहेला और बॉडी स्टिफनेस कम होला। बहुत देर तक एक ही पोजिशन में नहीं बैठिया और कुछ यूजफुल एक्सरसाइज है वॉकिंग, योगा, स्ट्रेचिंग। और जब सेज में तू बैठबा तो सही पोस्चर में बैठिया, या गाड़ी में बैठा लवा तो ऐसे स्ट्रेट बैठिया, नहीं कि वैसे के झुक के नहीं बैठिया, सीधा बैठना और खड़ी रहना सीखिया। लैपटॉप या मोबाइल यूज़ करते समय गर्दन झुका के ज़्यादा दर्द नहीं बैठे, जब गर्दन थोड़ा झुका रहेला तो गला में सकेला दर्द हो जाए। वेट उठाते वक्त कमर से नहीं घुटनों के मोड़ के उठाइया। और देखा तो कि वो बबनगाज नहीं सकता उठा, अकेले में उठावे तो कोई से उठवा दिया, कोई के पे करके उठवा दिया। काशवा देखा तो नहीं सकते वह सॉरी करे तो कोई के पे करके कमा करा दिया। कहे कि धरती उम्र के साथ साथ हमने के जितना हमने के जो हड्डी है वो कमज़ोर होला। ये खातिर अगर तू देखा तो 40-50 साल हो गए बा नहीं सकते वह बबन गाज उठाए या भारी चीज़ उठाए तो कोई के पे कर दिया ताकि थोड़ा प्रॉब्लम नहीं हुई। और दर्द से बच्चे खातिर रोज के चार 7-8 घंटा अच्छा नींद में सुते के कैसे मसल्स रिकवर होला। अगर तुहर तो मातला इजी हो गल बा तो मातला वा के बिक दिया, कोई नवा मातला खरीद के ओकर में सुतिया जा। और बॉडी की स्ट्रांग बनाए खातिर चहला प्रोटीन खाए के, जैसे कि दाल, अंडा, दूध, पनीर। अगर में प्रोटीन बा, दूध दही और तिल के उपयोग करिया। एकर में कैल्शियम बा और धूप और पोषक भोजन करिया जकर में वाइटामिन डी बा। और शरीर के स्वस्थ रखे खातिर पानी पिया, डिहाइड्रेशन से ही बचावे तो शरीर की। और शरीर में दर्द तब भी होला जब स्ट्रेस हो बा, तो स्ट्रेस कम करिए। जब स्ट्रेस कम रही तो दर्द भी कम रही। और जैसे बोलिए अगर तू अपन शरीर के अच्छी तरह से देखभाल करबा तो उतना दर्द नहीं हो पाई, दर्द वहाँ रहेला। जैसे 40-50 साल हो जाला तो डॉक्टर लोग बोलेगा कि धीरे धीरे हमने की मसल्स हमने की हड्डी ईजी होला, एक खातिर दर्द होला। जैसे जैसे तो लाश बढ़ ले जाए कहाँ तो सैकों तो सस होता तो स्वाभाविक बात है कि दर्द हो भी करी। तो हमने बोली सर कौन कौन चीज़ ऐना करे कि ताकि दर्द वहाँ कम हो। अभी सुनब जा बीजमावती संपत्ति गावल गीत। गीत गवाई में चले की बाह गीत चलावत ऐसा रतन निहाल के नाम रहेला। गाँव भी पत्नी करुणा, पापा विजय और सब निहाल परिवार के नाम। राज मन्ना जी है गीत और करी सब मन्ना परिवार खातिर। और है गीत चली सुदेश जसवा की रसक माँ राजकुमारी जिमी दुखिया और सब दुखिया परिवार के नाम। कभी दुखिया के जन्मदिन रहल कौन दिन ते मना प्यार आशीर्वाद और पत्नी और बेटी और सब और दुखिया परिवार की ओर से थे माना प्यार और आशीर्वाद। और जिदा को क्या जन्मदिन पर था जन्मदिन मुबारक है। गीत और नाम गीत गवाई में चले की बात चलोगे चंदा।

संगत यहाँ लोग अंग्रेजी में कहावत है माइंड योर ओन बिजनेस, एक मतलब है कि जन चीज तुहरा नहीं कौन से नहीं करेगा ओकर में पर नाक नहीं डालिया। देर को कुशल सर के जाफे में नाक डाले की थी बड़ा बुरा बात है। जब तुहरा को जाफे नहीं कौन से नहीं करा था तो का ही तू जलाला मेद मको जी, छोड़ दे भैया है ठीक बा, अपन काम से मतलब रखिया। कह के जब दूसरे के काम में तू टांग अड़ाई बा तब प्रॉब्लम होला। समझदार की इशारा काफी बा, माइंड योर ओन बिजनेस। रात के 9:26 अगला गीत है काम चोर, कृषि मोनिक गैले वन, और जबरदस्त गीत है शोभा के नाम, शोभा हवन पॉम्पलमुस से, रिहाना हसनाली होन फिनिक्स से, और ये गीत जरावती से कविता के नाम, कविता है लिस्कारी से, आफेज सैबिया से सुना था जा गीत धरो नाम, अनिता जी फ्री कॉम्फ्लैक्स से, कमला दिनू माताबा से, और ये गीत दीपा दुखित रहेलन कनाडा, अगर पति केविन अगर बेटा और सब दुखित परिवार के नाम है गीत चली। चाची ललिता कुशल थ्रियोले से है गीत धरो नाम।

हाँ तो तू कामचोर नहीं बन गया है, तू मेहनती बन गया, तू कमासूद बन गया, मेहनत से लगन से काम करिया, अपन परिवार के पालन पोषण करिया। हम देखी ना ढेर जिनिस लोग हैं काम नहीं खोजन सा करे कि बाप रे बाप, खाली खोजन सा घर में बैठ के समय में खाए के घूमे के नाचे के बरका बरका रिबान पहने के बरका बरका मोटरसाइकिल गाड़ी चलाए के, ये सब अच्छा है हम नहीं बोलते नहीं, पर काम करिया पैसा कमाइए तब न सब करे। अब माँ बाप के बोझ पर कितना करब, एगो लाश हिला माँ बाप लोग के पर निकालो के पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिए सर, तब जिस भी बहनता बहन सको थो रह गए तब अब लड़का नहीं हुआ ना, एगो आजुल तो गल माजे हो गल तो चेहरा काम करे के काम करवा बनिया, काम चोर नहीं बनिया। हे हे हे, रात के 9:35 तक लगी गीत दिन ता नाना दिन ता, और एक गीत मैं बिन की ओर से चला दी सर जान भी खातिर आप रहेलन वाकवा मैं बिन। क्या बात है, क्या बात है।

गीतराज सब मालों के नाम कहे कि मई महीना के अंत में दैनीय वीकेंड दैनीय दिमाग के अपनी मनाओ सब मदर्स डे मातृ दिवस और माता माँ रहेला माँ देवी के रूप है माँ जननी है चाहे कुछ भी हो जाए तो हर माँ तो हर माँ ही रही और माँ के मान सम्मान करिया माँ के आदर करिया माँ के पैरों तले जन्नत बा स्वर्ग बा तो मातृ दिवस की शुभकामनाएं अभी से ही सब MBC रेडियो के सुनने वाले श्रोतालों के नाम वैसे तो रोज़ मदर्स डे बा तो हर माँ बीमार रही तो कभी दवाई खरीदिया कौन चीज़ माँ की मन करी खाए की तक खरीद लिया यही तो मदर्स डे कहाला मदर्स डे एक दिन नहीं मदर्स डे 365 दिन होला रात की पौने 10 बजे तक तू सुनते हो रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन प्रोग्राम हो चुरी तड़का ये प्रोग्राम रोज चलेला लेंदी से लेकर दिमाग से MBC रेडियो पर रात के 9 से 11 बजे केवल MBC रेडियो पर अगला गीत मधुबाला आए है सब हसीनालों के नाम जो नाम बा मधुबाला गीत तेरो खतेर भवंती जुदन गीत गैले वन और है गीत चलावत ईसा वीना कुबुस्वामी के नाम रहेलन मेबग फिर सुलमा दुखेत मेबग रहेलन हन्ना और नबीहा कर घरोला कर सासुमा और सब दुखी परिवार के नाम और है गीत शालिनी हीरू की ओर से ओकर घरोला विशाल फिर बेटी हर्षिता वर्षिता जोशिता वर्षिता और सब हीरू परिवार जो रहेलन लाफ्लोरा मधुबाला

आज की जो हमने युग में जिया था इससे ओके टेक्नोलॉजी एज बोला सा, और आज के युग में इंटरनेट के बोलबाल हर एक क्षेत्र में इंटरनेट ने दुनिया के बदलते लगभग का नज़रिया और इंटरनेट के ढेर महत्व बा जानकारी के स्रोत है। और इंटरनेट पर जेबत पढ़ाई सेहत टेक्नोलॉजी न्यूज़ सब कुछ चला सकेरा मेरे संचार में क्रांति वीडियो कॉल ईमेल सोशल मीडिया के माध्यम से लोग दुनिया के किसी भी कोने में सकल जला जाए। और जब हमने इंटरनेट की बात कही सर तो इंटरनेट के जरिए हमने के अक्से मिलेला व्हाट्सएप इंस्टाग्राम जूम पर ऑनलाइन शिक्षा भी होला। स्टूडेंट्स घर बैठे सकी ऑनलाइन क्लासेस करें इंटरनेट के जरिए। डिजिटल लर्निंग भी होला। रोजगार और बिजनेस में इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन शॉपिंग सकल जला करे। डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसिंग वर्क फ्रॉम होम ये सब होला। मनोरंजन के साधन भी होला इंटरनेट के जरिए। यूट्यूब पर सकबा फिल्म देखे गीत सुने गेम खेले और वीडियो देखे और सकबा जा नेटफ्लिक्स यूट्यूब पर भी जाए। और इंटरनेट पर दूसरी ओर इंटरनेट के नुकसान इंटरनेट से नुकसान भी होला हमने के मोबाइल और इंटरनेट की लत लग जाला। फेक न्यूज साइबर क्राइम समय की बर्बादी और प्राइवेसी के खतरा। इंटरनेट एगो शक्तिशाली साधन है अगर एक तू अच्छी तरह से इस्तेमाल करबा तो अच्छा रहेला योगदान आने ला जिंदगी में। और अगर बुरा तरह से इस्तेमाल करबा तो ये तोरा बर्बाद करके रख दे। अब ये दीपान होला कि तू इंटरनेट की कैसे यूज़ करत हो। रात की 9:50 अगला गीत सुंदर परी गिरीश रूपचंद गीतवा गैले हवन और है गीत छरावती स आशा जानू के नाम रहेलन को तेज। बहुत बहुत प्यार के साथ सब परिवार खातिर सुंदर परी।

0: भोजपुरी तड़का,
1: भोजपुरी तड़का,
2: भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खाती
1: गमन जलसा हंगामा।
3: एक से एक जोली भोजपुरी की प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो गमन धमाल और मस्ती प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो
4: रात की 10:11 हुआ था। टू सुना तो रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन प्रोग्राम भोजपुरी तड़का रात के 11 बजे ली। अभी गीत सुना मोरिशिया मोरिशिया मोरिशिया, जहाँ हमने के देश से जुना बहुत ही खूबसूरत देश है, दुनिया भर में कोई छोटा सा टापू हिंद महासागर में, पर हिंद महासागर के सितारा है। और बोली जा सकी हमने की देश इतना सुंदर बा और उतना ही सुंदर हमने की भाषा, हमने के लोग, हमने की धर्म, हमने की संस्कृति और सबको एक साथ मिलकर हमने सब त्यौहार मनाए ला सौ, चाहे कावड़ी हो, चाहे होली हो, ईद उल फित्र हो, कोनो भी त्यौहार हो, तो सबको मिलजुल के हमने ये सब त्यौहार मनावी ला सा। अगला गीत रेशम के साड़ी, जी हाँ गीतवा चलावती सा खासम खास ये सब श्रोतालो खातिर। गीत चली अनिता जी के नाम जो नवन फ्री कॉम्प्लेक्स से और सब परिवार खातिर है गीत चलाव सा। ओके अगला गीत चलाव सा राजेश भाई की ओर से सब पकड़ परिवार खातिर। और फिर है ये चीज है गीत जन चली रेशम की साड़ी उस सब महिला लोग खातिर जो खुशी रह रहे हैं सर तरह तरह के साड़ी पहने के रेशम की साड़ी।

हमने की देश में हर एगो लुकाशों के सारी रहेला। अब जैसे टेलीविजन में देख बता टीवी से तुलसी में तुलसी के साड़ी अनुपमा के साड़ी हर प्रकार के साड़ी बा और साड़ी तो सब जोड़ी जोड़ी रहेला। तो जितना कोई खुशी रहेगा साड़ी पहनने के गीत तो लोग रात के 10:18 और जान सकी ठंडा करता ठंडा गिरता था। बेशक अगर नाइट शिफ्ट में हो तो अपन एगो ट्रिको अपन साथ ले दिया बहुत अच्छा क्या कि ये ठंड से बचे खातिर। और अगला गीत है बेल बेल दे, हाँ बेल बेल दे मौसी और बहुत ही व्यासन गीत सबको खातिर जिदा कोई अभी हमने के साथ देवता रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर। तो चले एक साथ सुनाए गीत बेल बेल दे मौसी।

जब से दुनिया बनल बा तब से हर कोई खुशी रहा, सुंदर दिखे के, जोली दिखे के, लाजवाब दिखे के, और सब कोई खुशी रहा, कोई ना कोई पर कॉम्प्रीमा करी। ऐसे शादी में कोनो महिला गर्ल कोनो पुरुष बोलक कितना खूबसूरत दिखता हुआ था कि इसे खुश हो जाला, या कोई पुरुष बात कोई कॉम्प्रीमा कर दिलक था वो खुशी हो रहा था, सब कोई हमनी खुशी रही रहा, सब कोई हमनी की तारीफ करी था, ठेक वाले का फूल जाए रहा सा। तो अपन ख्याल रखे, अपन आपके सुंदर बनी आजकल ब्यूटी पार्लर बा, मैनिक्योर पेडिक्योर और हेयर स्टाइलिंग ये सब होला, और बेशक अपन आपके खूबसूरत बनाई है। जब अपन आपके खूबसूरत बनाई बा तो देख बस सब कोई तोहर आगे पीछे घूमी, अब अपन कदर नहीं करबा तो कोई तोहर कदर ना करी। तो चल अभी को गुद सिनबजा, कभी कभी आगे पीछे बसंत से बोल गीत एल्बम हर जमाना, ये तो हमने चाहो तो इस विपन के नाम, विपन के और से कर माता जी पिताजी सब परिवार लोग खातिर, शास्त्री बने माली जी है गीत तोहर खातिर, ड्राइवर दोस्त समझा वो सब ड्राइवर दोस्त और पैसेंजर लोग खातिर गीत चली, और है गीत हमने चलाओ तो इस वैभव के नाम जन्म की साथ देवतवन, और है गीत सैतो एस एस एस कॉलेज के सब स्टूडेंट्स और अध्यापक दोस्तों के नाम, कभी कभी आगे पीछे

ऐसे निकल जमाना रहल कि कब कब खाली छोकरा लोग के पढ़ावतलन सर छोकरी लोग के जब पढ़ाई के समय आवत तो छोकरी बोल सर छोकरी से का हो तो शादी करके दूसर घर में चल जाए पर शिक्षा के साथ समय के साथ जब शिक्षा आल तो उसे मातारिते में थोड़ा बदलाव आल और आजकल तो छोकरा छोकरी दोनों पढ़ाई करेला प्री प्राइमरी से लेकर टर्शरी लेवल तक हर एक क्षेत्र में लड़का लड़की दोनों पढ़ाई करे रहा तो जहाँ ले सकब लड़का लोग के चेहरा पढ़ाई की जी हाँ और सरकार की ओर से हर सुविधा देवल जाता हर मदद देवल जाता लड़का लोग के पढ़े के और चेहरा लड़का लोग के पढ़ाई के लड़का लोग के पढ़ाई बह तो हमने की समाज आगे बढ़ी हमने की दुनिया हमने की देश आगे बढ़ी तो कबो भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करिए छोकरा छोकरी में तो हर जगह बेटा हो चाहे बेटी हो सब कोई के पढ़ाइया बीए एमए पीएचडी पोस्ट पीएचडी तक पढ़ाइया लड़का लोग के पढ़े बह लिखे बह लड़का लोग बड़ा आदमी बनी जब लड़का लोग बड़ा आदमी बनी तो तुह सुख कर बजा ये नहीं कि लड़का के खड़ी फॉर्म संग एच एस सी करा दे तो बस आजकल को फॉर्म संग एच एस सी बस नहीं बा चाहे ला लड़का लोग के आर पढ़े के और पढ़े के कोनो उम्र नहीं रह रहा है कोनो सीमा नहीं रह रहा पढ़ाई लिखाई की तू चाहे 50 साल के हवा कब लिखोल नहीं गलो अभियो से तू खुद पढ़े के सकब प्राइवेट ट्यूशन लेके पढ़े सकब अपन फॉर्म संग करे हाँ चेसी करे जी हाँ अच्छी तरह सुना तो वह चाहे सैकौता थोड़ा तो सासौता हो जाए तो हर मन बा स्ट्रॉन्ग विल पावर बा एगो मोटिवेशन बा आगे बढ़े कि थोड़ा मन में एगो सचिका पाए के तकबर प्राइवेट ट्यूशन लेके आगे बढ़े और कोनो न कोनो काम करे जी हाँ ये पढ़ाई लिखाई जो है बहुत जरूरी है पढ़ाई एगो वरदान है तो चहला हमने की देश में अगर सब कोई पढ़ल लिखल रही तो ये दुनिया ये देश कितना सुंदर हो जाए तो हमेशा हमारे बात याद रखिए हमेशा लड़का लोग की अंकुआसी करिए प्रोत्साहित करिए आगे पढ़े के बड़ा से बड़ा क्लास करे के तमी जमी लड़का लोग की गुनी मन काम मिली लड़का लोग अच्छी तरह से समाज में रही। अगला गीत हेलो हेलो राजकमल चिंतामणि गीत के लिए बहुत ही जोशीला गीत है हेलो हेलो और हेलो हेलो करके का बोला था और एक साथ सुनब जा हाँ गीत चलावती सर रोशनी की ओर से और घरोला को दिन को बेटी और सब परिवार के नाम और है गीत चली अपाया जी के नाम और रोसाई रसोल के नाम और वेंकटेश गीत और खतीर बहुत बहुत प्यार के साथ हेलो हेलो

0: से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर। गमक धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर।
1: एमबीसी रेडियो पर हमने किया तलो के नाता अभी से नए कई साल से 25 साल से बाद जब एमबीसी फॉरेस्ट साइट में रहा तब से हमने किया तलो के दोस्त चल याद बना तब रहल वन वर्ल्ड एफएम ताल एफएम शुगर एफएम की शुरुआत तब से आज रहे थे लोग हम के साथ दिल्ली आला और आज भी उनके साथ देवा तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एगो ऐसा दौर आल जब फॉर साइड में एमबीसी जब वहाँ बंद हो तब यहाँ एमबीसी मौका में खुलल और बेशक और यहाँ पर आल बेस्ट एफएम रेडियो मनोरंजन रेडियो मस्ती और ऐसा सुंदर से प्रोग्राम सब कुछ चलाई लग जा कि सबके मन लुप्त हो गल आज भी कल भी आज भी हमेशा एमबीसी रेडियो हमेशा नंबर वन रहल हमेशा नंबर वन रही और बरकरार रखी। और जब गमत की बात होला तर एगो बहाना चला गमत करे के कोई किरानी भी ऐसे रहेला शादी रहेला फ्योसाए रहेला या कोनो खास संगतिया तो हर लग गया कई साल बाद तक गमतवा हो भी करी बढ़िया बढ़िया पकवान नाच गाना म्यूजिक धूम धड़ाका क्या बात है। जब गमत की बात करब से जब तोहर जेब में पैसा बा भैया तो रोज की गमत बा जब जेब में न कौड़ी न पैसा तो कैसन गमत हो कि नहीं ई खातिर बोल जा कि जब ली जेब में पैसा बा तक गमत ही गमत होला आज के गमत को जी हाँ जल ललिता गजादर बोला तो गमत करे के तो हम भी ललिता से मिला ललिता चला तोहर संगे हमू कमरवा डुलाइला तो जितना कोई के मन बा गमत करे के भी रात के तो लोग के नींद नहीं लगता तो चला गमत करे संगे संगे स्वीटी और स्वीटी उनके साथ देव तो अन्ना और फिर थी वन भाई लाफ्लोरा से भाई धनी है वन उनके साथ देव तो लाफ्लोरा से भाई धनी सोनन चितंग की यह गीत तोहरो नाम किशन गुड़ियाप और किशन गुड़िया आपको सब परिवार हम के साथ देवत हो जा और जितना कोई की नींद ना लगता तो गीत लोग के नाम कोई कोई के बारे में सोचा था तो बस गीत लोग के नाम आज की गमट

जब से दुनिया बनल बा छोकरा छोकरी एक दूसरे से मिलेला, दोस्ती होला, प्यार होला, फिर शादी, शादी के बाद परिवार, परिवार के बाद बच्चे। सदियों से इसे होल और होते होते रहेला। और यहाँ गुजोली छोकरी बात जगह से गुजोला जोली छोकरा प्यार करेला। ये तो आजकल बड़ी पॉपुलर बा कुणाल हिरेलाल के गावल गीत। और रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस के श्रोता लोग गीत की जितना मांग करे रहन सर रोज के बाप रे बाप। एक जोली छोकरी से प्यार करीला जेकर खातिर हम रोज जीला, कैसे बतला बोके कैसे समझा बोके, तो चला कैसे समझे बापन दिल के। चला गीतवा सुने जोली छोकरी से प्यार करीला।

से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संग एमपीसी रेडियो पर। कमक, धमाल और मस्ती प्रताप सिंह के संग एमपीसी।

संगतिया लोग आज के गमटक को जलसा लाल बा किशोर खिमिया के गावल हेगे के संगे भोज भीतर का प्रोग्राम यही पर समाप्त हुआ था। रात के 9 बजे से अभी भी हमके साथ रह जाता लोग फोन को और SMS के लिए शुक्रिया। ठीक 11 बजे सुनबर जहाँ सुनहरी पल कार्यक्रम और बाद रात के 12 बजे से कल फजर के 5 बजे ले नॉन स्टॉप फिल्मी तराने हमने की तो मुलाकात हुई अब बुधवार के रात के 9 से 11 बजे इसी चैनल पर रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर। तब तक हमने की इजाजत दा और जी प्रताप सिंह से तालु की ओर से सबको की प्यार भरा नमस्ते सलाम शुभ रात्रि बाय लव यू ऑल गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स।

सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: जाने मन, दिल ना दुखाओ है जाने मन।
1: नमस्कार श्रोताओं, सभी का स्वागत। मैं विकास आपके साथ कार्यक्रम सुनहरे पल AM2 रेडियो मॉरिशस पर। और बड़ी खुशी होती है जब इन पुराने गाने या फिर कहें कि एवरग्रीन गोल्डन हिट्स को लेकर इस एक घंटे के सफर में हम शामिल होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उस ओर से आप भी तो हमारा साथ दे रहे हैं। तो चलिए हर एक लम्हे में म्यूजिक भरते हुए आगे चलते हैं सफर में सुनहरे पल।

0: मोहब्बत का नगमा जुबां पर
1: हर नई सुबह जिंदगी की भागा दौड़ी फिर से शुरू हो जाती है। वैसे मुस्कुराना भी एक कला है जो हर किसी को नहीं आती। कई लोग दर्द छुपाकर भी दूसरों की खुशी बन जाते हैं और वही लोग असल में सबसे मजबूत होते हैं। मुस्कुराइए, साथ में जिंदगी मुस्कुराएगी और ये मुस्कुराहट ये खुशियाँ आपका पता लगा ही लेगी।

ये जो आपका हमारा रिश्ता है ना म्यूजिक के जरिए, ये बेमिसाल है। वैसे रिश्तों में अगर अहंकार आ जाए तो बातें कम और दूरियां ज्यादा हो जाती हैं। थोड़ा झुक जाना सीखिए, क्योंकि हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, कुछ रिश्ते बचाना ज्यादा जरूरी होता है।

कुछ लोग हमारी जिंदगी में, हमारी कहानी में गीतों की तरह, जहाँ जैसे गाने हैं उसकी तरह आते हैं, थोड़ी देर ठहरते हैं और फिर याद बन जाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ दिल में हमेशा गूंजती रहती है। तो चलिए इन गानों के लिए प्यार एक बार फिर से लेकर मैं आपके साथ जुड़ने वाला हूँ। जल्द ही कार्यक्रम चलते रहेंगे AM2 पर, MBC रेडियो हमेशा आपके लिए। ध्यान रखिए, म्यूजिक का साथ देते जाइए। जल्दी मिलते हैं, नमस्कार।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: NBC रेडियो हर पल आपके साथ।

काळ जात घुमशान खोल जाऊ

0: गजरा।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

क्यों खाएगा? मिट्ठू मियाँ मिर्ची खाएगा? बड़ा नटखट है, बहुत सताता है।